है। मेरी उम्र 215.05 मीटर अर्थात 1355 किलोहर्ट्ज पर FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर आज शक संवत 1948 के श्रावण माह की 13वीं तिथि तदनुसार दिनांक 4 अगस्त 2026 वार मंगलवार सुबह के 5:57 मिनट होने को हैं। हमारे आज के कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

0: आकाशवाणी बीकानेर का ये ठोल मारू चैनल है। मेरे लिए 215.05 मीटर अर्थात 1355 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के 6 बजने को हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुनेंगी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि पार्टी 3 विधानसभा उपचुनाव में मिले जनादेश को स्वीकार करती है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता पर भाजपा पर विश्वास बनाए रखने का आभार व्यक्त किया। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी बांकीपुर और दतिया में के चुनाव परिणामों का गहन विश्लेषण करेगी। भाजपा के सत्येंद्र पटेल ने वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट पर जीत हासिल की है, जबकि जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत कुमार ने बिहार की बांकीपुर और कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव से बातचीत की। दोनों मंत्रियों ने ऊर्जा, अवसंरचना, व्यापार, रक्षा, शिक्षा और संस्कृति पर विशेष ध्यान देते हुए रणनीतिक साझेदारी की विस्तृत समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि उन्होंने प्रमुख क्षेत्रीय चुनौतियों पर भी चर्चा की और भारत उज्बेकिस्तान बहुपक्षीय सहयोग के विस्तार पर विचार विमर्श किया। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में एक समान विचार है। ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों की भागीदारी होगी। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने, सीमा पार भ्रष्टाचार

0: से निपटने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर भी विचार विमर्श करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक कल शुरू हुई। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा बुधवार को नीति वक्तव्य जारी कर सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं के चलते आरबीआई के सतर्क रुख अपनाते हुए ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने की संभावना है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने कल नई दिल्ली में मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने के संबंध में मुलाकात की। बैठक के बाद भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुगरबर्ग को इसके लिए माफी मांगने को कहा है। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनसे धारा 79 के अंतर्गत दी गई सेफ हार्बर प्रोटेक्शन वापस लिया जाना चाहिए। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि इस तरह का लेबल लगाना कानून के खिलाफ है। प्राधिकरण ने सोशल मीडिया पर सूचित किया है कि इन उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। अमेरिका के 25 राज्यों ने ट्रंप प्रशासन पर नए सीमा शुल्क को लेकर मुकदमा दायर किया है। राज्यों ने इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा फरवरी में रद्द किए गए आयात शुल्कों की जगह नए शुल्क लगाने का बहाना बताया है। पिछले महीने अमेरिका ने 59 देशों और यूरोपीय संघ पर दोहरे अंकों का शुल्क यह आरोप लगाते हुए लगाया था कि उन्होंने जबरन श्रम से उत्पादित आयात पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए थे। जम्मू कश्मीर सरकार प्रवासी परिवारों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से लगभग 50,000 प्रवासी परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के डेटाबेस में एकीकृत कर रही है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि सरकार प्रवासी राशन कार्ड को साधारण खाद्य पात्रता कार्ड की जगह व्यापक सामाजिक कल्याण लाभ के तौर पर परिवर्तित कर रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। 6:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे आज का विचार। विषय है अपनी चेतना को बिखरने नहीं दे। आलेख और वाचक स्वर होंगे श्री प्रमोद कुमार शर्मा के।
2: मनुष्य एक चेतन और चिंतनशील प्राणी है। उसके पास भाषा है जिसके माध्यम से वो अपनी चेतना को बाहर प्रसारित कर सकता है, लेकिन समुचित रूप से वही मनुष्य इसमें सफल हो सकता है जो अपनी चेतना को एकाग्रता से रख पाता है। अन्य सब मनुष्य तो अपनी भाषा को व्यर्थ ही जीते हैं। एक मनुष्य भाषा को प्रवाहित करने के तरीकों की खोज कर सकता है और अपनी अभिव्यक्ति से लाखों लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन वही एक व्यक्ति, एक विखंडित चेतना का व्यक्ति अपने सामने खड़े हर एक व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर पाता। यानी उसने अपनी चेतना को खंड खंड करके टुकड़ों में बांट रखा है। देखा जाए तो चेतना ही सब कुछ है जो पूरी एकाग्रता की मांग करती है। क्या कारण हो सकते हैं दोनों प्रकार के मनुष्यों की चेतना में अंतर का? जाहिर है पहले मनुष्य ने अपनी चेतना को खंडित होने से बचाया संपूर्ण एकाग्रता का प्रयोग करते हुए, भाषाई करिश्मे से लोगों के दिल जीते और सफल हुआ। वह दूसरे व्यक्ति से अपनी चेतना संलग्न हुई और भाषा के संकोचन में उसकी अभिव्यक्ति को मार डाला, अंतर वो असफल हुआ। तो मित्रों, जरूरत है चेतना की समग्र अखंडता की, और ये कोई मुश्किल नहीं है। सब में एक आत्मा का वास है। आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप है। तो जो मनुष्य सत्य के साथ चेतना का प्रयोग करता हुआ आनंद की रचना करता है, वह सबका प्यारा हो उठता है और अपने जीवन को सफल बना लेता है। क्या करना होगा एक समग्र और केंद्रीयभूत चेतना के निर्माण के लिए? तो साफ साफ दिखता है कि इसके लिए उसको अपने लिए ऐसे काम और व्यक्ति चुनने पड़ेंगे जो विखंडित न हो, मानव मूल्य में आस्था रखते हो, जिनमें परोपकार की भावना हो, जो परस्पर सहयोग करने को तत्पर रहे। तो यह व्यक्ति

साधकर असंभव से असंभव और दुर्लभ से दुर्लभ काम कर सकता है। पवित्र कोशिश करें कि आपकी चेतना समग्रता को प्राप्त कर सके, न कि झूठ बेईमानी कूट कपट करते हुए अपनी चेतना को विखंडित कर ले और एक मूल्यहीन जीवन जीने की रचना करते रहे। आप निश्चित ही विखंडित चेतना को प्राप्त हो जाएंगे और सबकी नजर से नकारा घोषित कर दिए जाएंगे। बिखरी हुई चेतना वाला व्यक्ति एक सामाजिक संकट बनकर रह जाता है। वह घर में भी कलह करता है, बाहर भी। बात बात में वह असंतोष से भर उठता है, क्रोध से भर उठता है और हर घड़ी में गलत निर्णय करता रहेगा। अगर आपको लगता है कि आप विखंडित चेतना के शिकार हो रहे हैं तो मनोरोग चिकित्सक की सहायता लें तथा ऐसे काम चुने जिनमें अखंडता हो। टूटे फूटे आधे अधूरे काम आपकी समस्या को बढ़ा देंगे। इस प्रकार से हमने

आपने सुना आज का विचार। विषय था अपनी चेतना को बिखरने दे। आलेख और वाचक स्वर थे श्री प्रमोद कुमार शर्मा के। आकाशवाणी बिखरने का ये ठोला मानव चैनल है। अब आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर की आवाज में गुरु वंदना के साथ।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। सुबह के 6:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे रामचरित मानस गान।

अयोध्या नगरी के बाहर जनकपुर प्रस्थान के लिए बारात सजी खड़ी है। वातावरण में स्त्रियों के कंठ से फूटते मंगल गीत के स्वर गूंज रहे हैं। मंत्री सुमंत्र दो रथ विशेष रूप से सजाकर राजा दशरथ के समीप ले आए। नरेश ने एक रथ पर आग्रहपूर्वक कुलगुरु वशिष्ठ को बैठाया तथा शिव गुरु गौरी तथा गणेश का स्मरण कर स्वयं दूसरे रथ पर आरूढ़ हुए। गुरु की आज्ञा पाकर महाराज ने जब बारात को चलने का संकेत दिया तो देवगण मंगल पुष्पों की वर्षा करने लगे। समस्त वातावरण गाजे बाजे, घोड़े हाथियों के गर्जन तथा धरती और आकाश से झरते मंगल स्वरों की गूंज से झंकृत हो उठा। बारात ऐसी सजी है जिसका वर्णन करना कठिन है। चहुं ओर शुभ शकुन हो रहे हैं, बाएं नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो रहे हैं तो दाहिनी ओर खेतों में कौवों का समूह मंगल का संकेत दे रहा है। लोगों को नेवले तथा लोमड़ी के भी दर्शन हुए जो शुभ शकुन के लक्षण हैं। उधर उज्जवल धवल सिर वाली चील विशेष रूप से कल्याण का संकेत दे रही है।

अभी आपने सुना रामचरित मानस कान आकाशवाणी बीकानेर का ये ढूंढ चैनल है। सुबह के 6:40 हुए हैं। अब आप सुनेंगे हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

सवेरे 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सुप्रभात। 7:30 पर समय रहेगा फिल्म संगीत का। 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सौरभ। 8:45 पर आप सुनेंगे श्रोताओं की रेडियो से जुड़ी यादों पर आधारित कार्यक्रम रेडियो का सफरनामा। कार्यक्रम में आज वाचक स्वर होंगे श्रीमती मधु शर्मा के और प्रस्तुति होगी श्री रेवंत राम लेगा की। संयोजन किया है अमित सिंह ने। तो 8:45 पर सुनेंगे कार्यक्रम रेडियो का सफरनामा। 9:30 पर आप सुनेंगे लोक गीतों से सजा कार्यक्रम लोक संगीत। 9:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी उमंग। 10 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे गीत नई फिल्मों से। 11 बजे आप सुनेगा कार्यक्रम भूलो बिसरे गीत। 12:10 पर आप सुनेंगे संधि कार्यक्रम। ये कार्यक्रम हमारे जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा। 12:40 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत।

अब एक बजकर 5 मिनट पर महिला श्रोताओं का कार्यक्रम होगा घर आंगन और 2:30 पर आप सुन सकेंगी फिल्म संगीत। हमारी सांध्यकालीन सभा में 5:05 पर आप सुनेंगी युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे विशेष कहानी, विषय होगा पुन आई, कहानीकार हैं श्रीमती आरती छंगानी, प्रस्तुति होगी रेवंत रामलेगा की और संयोजन अमित सिंह का। तो सुनेगा 5:05 पर युवाणी कार्यक्रम में। 6:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

सात बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। ये कार्यक्रम हमारे जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा 7 बजे। 7:30 पर ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम होगा ग्रामीण जगत। 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम संसद समीक्षा। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक संगीत। 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। 9:30 पर आप सुनेगा कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे गजलें। 10:00 आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से लिखा जाएगा 10:00।

0: आपने सुना हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। सुबह के 6:45 होने को है। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती की बातें। कार्यक्रम में आज आप सुनिए लघु वार्ता, विषय है किसानों के लिए ड्रोन तकनीक का महत्व। वाचक स्वर हैं श्री बजरंग सारस्वत के।
1: खेती व आधुनिक उपकरण में से एक है। यह एक बिना मनोवर यानी बिना चालक रवैया है या ई केवल के एक उड़ने रोबोट है। इन्हें दूर से ही सॉफ्टवेयर से नियंत्रित करा जा रहा है। असल में इन्हें एक जीपीएस आधारित नेविगेशन सिस्टम और अनेक प्रकार के सेंसर हुआ करे हैं। यह बैटरी सहायता से काम करे। इन्हें कई तरह का उपकरण जिनके कैमरे कीटनाशक छिड़काव यंत्र जड़ा लागू रहे। किसान भाई मल्टी रोटर ड्रोन, फिक्स्ड विंग ड्रोन और सिंगल रोटर हेलीकॉप्टर ड्रोन काम में ले लिया है। और आज आप जाने ड्रोन के प्रयोग से खेती में कहीं कहीं नया क्रांतिकारी बदलाव आएंगे। पहले तो आपने बताया कि यह ड्रोन बीजा रोपण में बड़ी सहायता करेगी। कृषि ड्रोन में सेंसर तकनीक और इंटेलिजेंस सिस्टम से बंजर माटी में या मोटे क्षेत्र में कम समय में बीजारोपण किए जा सके हैं। रोपण प्रणाली से गैस ड्रोन सीधा माटी में बीज में लगा सके हैं। कई ड्रोन एक दिन में 1,00,000 तक की संख्या वाले बड़े बीजाणु बो सके हैं। यह ड्रोन ट्रैक्टर या दूजा साधन की तुलना में घनी जागरूकता रसागे खेतों की जाँच करे हैं। यह फसलों में सही मात्रा में कीटनाशक और उर्वरक तेजी से छिड़काव भी कर सके हैं और मैंने जमीन में शुद्धता भी बनी रखने की ताकत है। यानी कि इन बात काम करे कि आप माटी है मेरी उपजाऊ पर है वो बनी सागे हुए रसायन आ रहे बत्ते प्रयोग माथे भी रोक लग गए। ड्रोन 15 से 20 मिनट में 2.5 एकड़ अड़े बड़े यानी 1 हेक्टेयर भूमि में कीटनाशकारों या पछे उर्वरक छिड़काव कर सकेंगे। जो सामान्य रूप से छिड़काव करो जाए तो इन वास्ते 2 से 3 मजदूर की जरूरत पड़े जिका माथे खर्चो 1,500 से 2,000 बेचारे पड़े। ड्रोन से छिड़काव करें तो घनी से घना 500 रुपए तक खर्चो आवे। अगर आप बात करें व्यापक सिंचाई और माटी की जांच के बारे में, ड्रोन आप हाइपर स्पेक्ट्रम थर्मल या मल्टी स्पेक्ट्रम सेंसर से उन क्षेत्रों की पहचान कर सके हैं जिसका घना शुष्क है या जिसे जड़ भराव की समस्या नया करी है। इन माध्यम से ड्रोन से सिंचाई की सही योजना बनाई जा सके है। इन व्यापक सिंचाई योजना के सागे सागे ड्रोन से फसल की गुणवत्ता भी निगरानी माटी में स्वास्थ्य के बारे में सटीक जानकारी भी आप ले सके हैं। फसल की उचित जानकारी होने पछे संसाधन का प्रयोग सही ढंग से बिना कोई फिजूल खर्ची रे करे जा सकेंगे। किसान ड्रोन दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में या घने मोटे क्षेत्रफल की भूमि की प्रभावी देख रेख कर सकेंगे। सागे ही कीटनाशक के प्रयोग में संतुलित कर सकेंगे। इन बात भूमि का प्रदूषण भी कम सुकम होंगे। मल्टी स्पेक्ट्रम सेंसर या RGB सेंसर और कृषि ड्रोन किसानों के बीमा दावा के वास्ते फसल के नुकसान को सही आकलन कर सके हैं। फायदों फसल में नुकसान पुगन के

0: उभर हो सके। असल में किसान ड्रोन नुकसान रो आकलन कर सबूत बना कर सके है और बिना कंपनी रे कने नुकसान भरपाई रो बहु अपन मजबूती से कर सके है। ड्रोन से प्राप्त होने वाला जीपीएस आधारित सही और भरोसेमंद जानकारी में नकार में कोई भी मनुख वास्ते मुश्किल है। कृषि ड्रोन किसानों में बहुत मात्रा संसाधन जिया के बीज पानी उर्वरक कीटनाशक आचो उपयोग करने सक्षम बना रहे हैं। खेतरा सगड़ा क्षेत्र में एक जड़ो उपचार देने की बजाय जरूरत मुजब उपचार देने से जिका संसाधन अपने हाथ में है वो बत्ते सुबत्ते उपयोग कर सकें हैं। सागे ही किसान भाई कम समय में खेतों निवारण करें समस्या आला क्षेत्र है जहाँ के संक्रमित फसल या बीमार फसल माटी में नमी रे स्तर की जांच कर सकेंगे। इस प्रकार उचित समय पर उचित कदम उठा फसल में होने वाले नुकसान से बचे जा सकेंगे। ड्रोन के प्रयोग से जुड़ी हुई खास बातें यहाँ पर करें तो किसान भाई ने ड्रोन को उपयोग करते हुए अनेक बातों का ध्यान रखना चाहिए जिया के हाई टेंशन लाइन या मोबाइल टावर वाले स्थान में अनुमति लेने के लिए जरूरी है। ग्रीन जोन में ड्रोन से दवाई का छिड़काव कोई करे जा सके या खराब मौसम या तेज हवा में ड्रोन उड़ाने में भी प्रतिबंधित है आपने ध्यान में होनी चाहिए। आवासीय क्षेत्र में मेरे तेरे खेती होने अनुमति लेने बहुत जरूरी है। आजकल राजस्थान और महाराष्ट्र का लोकड़ा किसान खेती सारे ड्रोन का उपयोग करने लग गए हैं। वो अनुमान है कि आने वाले समय में ड्रोन की उपयोगिता में देखता था का देश रहे गणकरा राज्य में ड्रोन का उपयोग होने लग सी। वैसी दुनिया उत्पादन लेने सारे हर देश की जरूरत है और वास्ते बहुत जरूरी है कि इन क्षेत्र में इन तकनीक रो भरपूर उपयोग हो रहे। खेती किसानों भी आजकल हाईटेक होने लगी है। सरकार कृषि कार्य अनुसार ड्रोन के उपयोग में लोगों को प्रोत्साहित कर रही है ताकि देश में अनाज उत्पादन में बढ़ोतरी हो सके किसान भाइयों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो।
1: अभी आपने सुनी लघु वार्ता, विषय था किसानों के लिए ड्रोन तकनीक का महत्व। वाचक स्वर थे बजरंग सारस्वत। लीजिए सुनिए लोक भजन।

0: विगतमासस्य त्रिंशत् दिनांके एव सम्पन्नमासीत्। तेलंगानायाः हैदराबादस्थले अद्य ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्यदलस्य सहैव सम्पत्ति पुनर्प्राप्तेः ब्रिक्स एक्सपोर्ट नेटवर्क इत्यस्य द्वितीयोपवेशनं प्रारप्स्यते। अस्य द्विदिवसीयोपवेशनस्य आयोजनं स्थैर्याय नवोन्मेषाय सहयोगाय निरन्तरतायै च निर्माणम् इति विषयमाधारीकृत्य क्रियते। अस्मिन् कार्यक्रमे ब्रिक्स सदस्य देशेभ्यः वरिष्ठनीति निर्मातारः व्यावहारिक विशेषज्ञाः सहैव भ्रष्टाचार विरोधी विधि प्रवर्तन अभिकरणानां प्रतिनिधयः अपि भागं गृहीष्यन्ति इति सम्भाव्यते। विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकर ह्यः नवदिल्ल्यां उज्बेकिस्तान देशस्य विदेशमंत्रिणा बख्तियार सईदोव इत्यनेन सह वार्ताम् अकरोत्। उभाभ्यां मंत्रिभ्यां भारत उज्बेकिस्तानयोः रणनीतिक सहभागितायाः विस्तृत समीक्षा कृता। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह अवदत् यत् भारतीय क्रीडकैः ग्लास्गो नगरे आयोजितासु 26,000-तम वर्षस्य राष्ट्रमंडल क्रीडासु भारतं पदकतालिकायां चतुर्थस्थाने स्थापयित्वा गौरवपूर्णं इतिहासं विरचितम्। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य असम मेघालय उपहिमालयीय पश्चिम बंगाल सिक्किमेषु अतिवृष्ट्यै रक्तवर्णीय संचेतना प्रसारिता इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढुलमारू चैनल है। मीडियम 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7 बजे हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम सुप्रभात।

नमस्कार कमाली राम राम। कहते हैं कि हर सुबह ईश्वर का दिया हुआ एक नया अवसर है स्वयं को बेहतर बनाने का और जिंदगी को खुलकर जीने का। आप सभी श्रोताओं को आज की सुबह में हमारा सुप्रभात। आपका हर दिन आज ही के दिन की तरह खुशियों से भरा हो और इसी दुआ के साथ शुरुआत करते हैं आज की सुप्रभात का सफर। और सफर की शुरुआत में आप सुनिए एक बहुत ही खूबसूरत गीत

0: माह के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के भोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात। श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे गहरे विषय पर, वो विषय जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। जी हाँ, आज का हमारा चर्चा का विषय है दिन की शुरुआत का आत्म अवलोकन, या हम कह सकते हैं कि वास्तव में हमारा आत्म अवलोकन। रोज जब हम सुबह उठते ही भागदौड़ में लग जाते हैं, सर्वप्रथम मोबाइल स्क्रीन देखना, ईमेल चेक करना या तुरंत काम की चिंता करना। लेकिन वास्तव में क्या आपने कभी सोचा है कि सुबह के उठते ही कुछ मिनट अगर हम शांत बैठकर खुद से बात करें तो हमारा पूरा दिन बदल सकता है। आत्म अवलोकन का मतलब खुद का मूल्यांकन करना नहीं, बल्कि वास्तव में खुद से जुड़ना है। वास्तव में आज हर व्यक्ति जब सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं है, मन अशांत है, इसका कारण हम स्वयं हैं। जब हम स्वयं का आत्म अवलोकन करने लगेंगे तो मन भी शांत होने लगेगा। यदि मन शांत हो तो जीवन सुखमय हो जाता है, और वास्तव में मन अशांत हो तो कितनी ही बड़ी सफलता हो, वास्तव में उसमें पूरी खुशी नहीं मिलती। और इसका कारण है कि जब हमारा मन शांत होता है तो हम चीजों को वास्तव में सही रूप से देख पाते हैं। सहज और शांत मन के जरिए हम जीवन को जी सकते हैं। मन की शांति के लिए कुछ छोटे कदम मददगार हो सकते हैं। सबसे पहले जरूरी है कि हम हमेशा सकारात्मक सोच को अपनाएं। अगर हम हर बात को सकारात्मक सोच के साथ देखते हैं तो जीवन की कई समस्याएं दूर हो जाती है, और वास्तव में मन को

असीम शांति मिलती है। उसके बाद हमारे मन की अंतर्यात्रा, जैसे लंबी पैदल की जाए तो बीच बीच में विश्राम करने से थकान भी दूर होती है और अगली यात्रा के लिए ऊर्जा भी मिल जाती है। जी हाँ, ठीक उसी तरह जीवन की यात्रा में भी विश्राम का अर्थ है अपने भीतर उतरना। क्षेत्र चाहे कोई भी हो, थोड़ा समय हमें अपनी अंतर यात्रा को जोर देना चाहिए। जैसे ही हम ये थोड़ा समय निकालकर अपने भीतर उतरते हैं तो वास्तव में हमें हमारी आत्मा का अवलोकन होता है और हमें ये ज्ञात होता है कि हमारे आसपास क्या है, हम स्वयं क्या हैं, हम किस बात पर शांत रह सकते हैं, किस बात पर हम परेशान होते हैं। और जब वास्तव में हम अपना आत्म अवलोकन करते हैं तो उसके बाद हमारा जो आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है, वही वास्तव में हमें शांति व शक्ति से जीने के लिए प्रेरित करती है। और वास्तव में शांति जो है वो मन की शांति है, और शांति के लिए जरूरी है कि हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करें। और सबसे जरूरी बात कि उस परमपिता परमात्मा ईश्वर ने जो भी दिया है उसका धन्यवाद कर जो मिला है उसमें आत्मसंतुष्टि का अनुभव करना। और वास्तव में जो हम प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए हमें निरंतर आत्ममंथन कर उसके लिए प्रयासरत रहना भी जरूरी है। तो प्रतिदिन सुबह उठते ही सबसे पहले उस भगवान को, परमपिता परमेश्वर को याद करें और कुछ मिनट के लिए मेडिटेशन करें। इससे हमारे मन की शक्ति या दृढ़ संकल्प शक्ति बढ़ती है और हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम आने वाली किसी भी चुनौती को सफलतापूर्वक समाधान करने में सक्षम हो जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि जीवन में कुछ पल, कुछ समय हम अपने आप को दें, और वास्तव में अपने आप को समय देना ही आत्म अवलोकन है। ध्यान लगाएं और वास्तव में पूरे दिन के घटनाक्रम को एक चलचित्र की भांति याद करें। क्या गलत, क्या सही, कहां आपको क्रोध आया, कहां आपको आनंद आया, इन सब बातों का आत्म अवलोकन करें। जहां आपको आनंद आया है उन पलों को सहेज कर उन्हीं पलों के साथ आगे बढ़ें और उन्हें और बढ़ाने का प्रयत्न करें। वास्तव में ये अंधी दौड़ है, संतुष्ट हमें ही होना है। साइकिल वाले ने मोटरसाइकिल वाले को देखा, मोटरसाइकिल वाले ने कार वाले को देखा, कार वाले ने बड़ी कार वाले को देखा, बड़ी कार वाले ने हवाई जहाज वाले को देखा, और हम उस भागदौड़ में लगे हैं। हम ये नहीं कहते कि आप मत भागिए, मत दौड़िए, बिल्कुल भागिए, बिल्कुल दौड़िए, लेकिन आत्म अवलोकन कर हमें ज्ञात होना चाहिए कि वास्तव में संतुष्टि कहाँ है, हमारी आत्मा की संतुष्टि कहाँ है। जहां पर आपकी आत्मसंतुष्टि है आपकी सफलता वास्तव में वही है। कई बार हम देखते हैं, हम सुनते हैं कि किसी बड़ी कंपनी में काम करने वाला मैनेजर, काम करने वाला अफसर शान और शौकत, गाड़ियां, दौलत, बंगले सब छोड़कर अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए कोई छोटा काम करता है, कोई सड़क किनारे ठेला लगाता दिखता है, कोई भगवान की भक्ति में लगा है। तो महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है कि हमारी आत्मसंतुष्टि कहां है। जब आप आत्मसंतुष्ट होंगे तभी वास्तव में जीवन में श्रेष्ठ होंगे। अंधी दौड़ में भागने के साथ अपनी आत्मा का अवलोकन जरूर करते रहिए। कहीं ऐसा ना हो कि एक पल जब हम वहां पहुंचे और पीछे मुड़कर देखें तो वास्तव में यह समझ में आए कि हमने अपना पूरा जीवन केवल इस दौड़ में लगाया लेकिन संतुष्टि के नाम पर कुछ नहीं। इसलिए अपना आत्ममंथन करिए, आत्मसंतुष्टि के लिए प्रयास कीजिए। जहां आपकी आत्मा संतुष्ट होती है वास्तव में वही जीवन का सार है और वही जीवन का सत्य है, क्योंकि मन है वो हमेशा चलता रहता है, उड़ता रहता है ख्यालों में, बागानों में, उसका कोई तोड़ नहीं, वो आसमान तक अनंत उसकी सीमा है। लेकिन उस मन को कंट्रोल कर और वास्तव में

अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर अगर हम अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए प्रयास करें तो जीवन में सच्ची खुशी मिलती है। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं मोहम्मद रफी साहब के इस गीत के साथ।

मनोहर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 7 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।

जी हाँ, समय बड़ा बलवान है और वास्तव में यह कथन चाहे कितना भी पुराना हो हमेशा जीवंत रहता है, क्योंकि वास्तव में जीवन का यही एकमात्र अटल सत्य है, क्योंकि ये समय वास्तव में कभी किसी के लिए नहीं रुकता। यह समय यह है जो राजा को रंक बना सकता है और रंक को राजा। जो बीत गया वो वास्तव में कभी लौट कर नहीं आता। अगर एक पल भी निकल गया हमारे हाथ से तो वो पल हम कभी वापस नहीं बदल सकते। इसलिए हमेशा जीवन में समय की कद्र करनी चाहिए। इस जीवन में समय का बहुत बड़ा महत्व है और हमें हमेशा समय की कद्र करनी चाहिए और समय के साथ चलते रहना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी किसी का इंतजार नहीं करता। ये हमेशा बदलता रहता है। आज सुख है तो कल दुख होगा, कल दुख है तो आज सुख होगा, और ये दोनों ही समय के साथ बदलते रहते हैं। समय कभी भी एक समान नहीं रहता। जरूरत है कि हम समय को पहचानें, समय के साथ चलें और समय का सदुपयोग करें। हम हमेशा जीवन में सोचते हैं कि हम जो करना चाहते हैं वो आज नहीं कल करेंगे, अभी ये करते हैं फिर वो करेंगे, लेकिन कब क्या बीत जाता है हमें पता ही नहीं चलता। वास्तव में जब बचपन में थे खेलने की उम्र थी, लेकिन सोच थी कि हमें पैसा कमाना है, लेकिन वास्तव में हमने अपने बचपन को खोया। और यही वो सत्य है जिसे हमें स्वीकार करना है कि समय के साथ चलना है। हम समय के आगे दौड़कर समय को नहीं पकड़ सकते और जो बीत गया उसे वापस नहीं ला सकते। इसलिए हमेशा वर्तमान में जिए और हमारे वर्तमान के समय को बेहतर करने के लिए हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा वर्तमान बेहतर होगा तो जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो भूतकाल भी बेहतर होगा, और अब अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा भविष्य भी सुदृढ़, सक्षम और उत्कृष्ट होगा। तो इसलिए हमेशा समय की कदर कीजिए, समय का सदुपयोग कीजिए, जितना हो सके उतना समय का उपयोग कीजिए। प्रत्येक व्यक्ति के पास वही समय है, वही 24 घंटे, लेकिन कई लोग उन्हीं 24 घंटों में वो पा जाते हैं जो कल्पना से परे हैं, और अधिकतर लोग वही रह जाते हैं जहां से शुरुआत करते हैं। अंतर है समय की परख का, समय के सदुपयोग का। हर पल को नियमित निश्चित तौर पर जिए, अपने पूरे दिन का हिसाब पैसे से ज्यादा समय का होना चाहिए। पैसा आज नहीं कल कमा सकते हैं, लेकिन आज अगर बीत गया तो वापस आज कभी नहीं बन पाएगा। इसलिए पैसे को महत्व देने के साथ सबसे महत्वपूर्ण मान लीजिए समय को, और हमेशा समय की कद्र कीजिए। दिन के 24 घंटे और एक एक मिनट आपका सटीक होना चाहिए, सही होना चाहिए। बिना मतलब के समय व्यर्थ करना ही वास्तव में पैसे से ज्यादा बर्बादी है। एक समय में अगर आप कुछ पैसे खर्च कर भी देते हैं तो वापस कमाए जा सकते हैं, लेकिन आपने अगर अपने जीवन के कुछ घंटे भी व्यर्थ खर्च कर दिए तो वो घंटे आप पूरे जीवन काल में कभी नहीं कमा पाएंगे। और यही समय सदुपयोग करने के बाद राजा को रंक बनाता है और रंक को राजा। जो वास्तव में समय का सदुपयोग करता है वो रंक से राजा बन जाता है, और जो समय का सदुपयोग नहीं करता वो राजा से रंक बन जाता है।

बातें बहुत बड़ी है, गहरी है और सुबह की शुरुआत में हो सकता है ज़्यादा भारी भी हो, लेकिन वास्तव में ये सत्य है कि हमें पैसे से ज़्यादा समय को महत्व देना चाहिए। अगर हम समय का सदुपयोग करेंगे तो पैसा अपने आप आएगा, क्योंकि समय में बहुत ताकत है और समय हमेशा बलवान रहा है और बलवान रहेगा।

हमेशा समय की कद्र करें। और जब हम कहते हैं तो वास्तव में हम जानते हैं कि समय की कद्र करनी चाहिए, और ये रेडियो हमें रोज सिखाता है कि समय पर चलना चाहिए। तो समय हमें ये कहता है कि आज के कार्यक्रम सुप्रभात को यही विराम देना होगा, लेकिन फिर मिलने के वादे के साथ आज दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए कार्यक्रम सुप्रभात, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। आज के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।

सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात, आकाशवाणी बीकानेर का ये ठोला मारू चैनल है। 7:30 हुए हैं और आप सुनेंगे फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में फिल्म सलामी से गीत। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत बद किया है नदीम श्रवण ने।

ने सुना, मैंने दिल तुझको दिया फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में गीत। इस गीत को लिखा था फैज अनवर ने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म खामोशी से, आवाज है कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की।

आपने सुना अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज में फिल्म यस बॉस है गीत। लिखा था जावेद अख्तर ने और संगीतबद्ध किया था जतिन ललित ने। अब आप सुनेंगे उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में फिल्म कसूर से गीत। लिखा है समीर ने और संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने।

0: अब समाप्त होता है। आकाशवाणी बिकने का ये थोड़ा मारू चैनल है। मेरे लिए 215.05 मीटर तथा 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर 8 बजने को है। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात सुनेंगे।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 1000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। दही मानस के निशुल्क नंबर 1-44-16 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। संसदीय समिति ने फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा की आलोचना की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग से माफी की मांग की। एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज सुबह नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा राज्य सरकारें हालिया विरोध प्रदर्शनों में विद्यार्थियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के पास समझौता करने का एक आखिरी मौका। ईरान ने बातचीत की खबरों का खंडन किया। और खेलों में भारतीय खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करेंगे। और अब आइए समाचार विस्तार से कर लेते हैं। सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। कल नई दिल्ली में हुई एक बैठक में भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने के लिए मेटा इंडिया की आलोचना की। बैठक के बाद श्री दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग से इसके लिए माफी मांगी की मांग की है।
4: ये माफीनामा जकरबर्ग के पास ही आना चाहिए और ये जकरबर्ग नहीं होते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उसे वापस ले लेना चाहिए। महिलाओं के कंटेंट का वो उतारते नहीं है, भारत सरकार की ये नियम बड़ा सरल है और इनकी जो पॉलिसी है कि ये जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को नहीं मानते हैं। इन सारी चीजों से सेफ हार्बर हटाने की बात करें।
3: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में आयोजित की जाएगी। इस बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पिछली बैठक 28 जुलाई को हुई थी जिसमें तृणमूल कांग्रेस के अलग हुए गुट, नवगठित नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI के सांसदों ने भी गठबंधन की बैठक में भाग लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकारें जंतर मंतर और देश में अन्य जगहों पर हाल ही के प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों और प्रदर्शनकारियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व में 3 न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई को न्यायालय के आदेश में पहले आपराधिक मामलों से जुड़े प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई जारी रखने की अनुमति का तात्पर्य केवल गंभीर

0: विभिन्न अपराधों से जुड़े लोगों से था। एक रिपोर्ट।
1: अदालत नीट पेपर लीक के विरोध में जंतर मंतर पर 20 जुलाई को और अन्य जगहों पर प्रदर्शन में विद्यार्थियों पर पुलिस की अत्यधिक सख्त कार्रवाई के आरोप से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। प्रदर्शन में घायल पुलिस अधिकारियों के परिवारों ने भी यह आरोप लगाते हुए प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। पीठ ने कहा कि वह पुलिस अधिकारियों की विशेष जांच टीम गठित करने या सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में समिति नियुक्त करने पर विचार कर रही है ताकि इसकी अत्यधिक कड़ी कार्रवाई के आरोपों की जांच की जा सके। अब इस मामले की सुनवाई 18 अगस्त को होगी। समाचार कक्ष से मैं चाहत।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रही हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय, अब गरीबों की जय।

0: भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बन गए 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और उज्बेकिस्तान ने कल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान महत्वपूर्ण खनिजों, खनन, व्यापार, ऊर्जा अवसंरचना, रक्षा और शिक्षा क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने का फैसला किया। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान ये बैठक हुई। विदेश नीति के मुद्दों पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान का आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने पर समान दृष्टिकोण है।
2: Deeply appreciate that the government and people.
3: हम इस बात की सराहना करते हैं कि उज्बेकिस्तान की सरकार और वहाँ के लोगों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए दृढ़ रुख अपनाया है। आपकी अपनी चुनौतियाँ और आपके अपने अनुभव हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम दोनों ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाई।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और असैन्य विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। कल नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय सैन्य सेवा दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि सैन्य और असैन्य दोनों सेवाएं राष्ट्र सर्वोपरि के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध हैं।
4: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विस दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब देश एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
1: ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। एक रिपोर्ट।
5: कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह इस बैठक का उद्घाटन करेंगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि भागीदारी करेंगे। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे। हैदराबाद में होने वाली ये बैठक जून में वर्चुअली रूप से आयोजित पहली ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक के परिणामों पर आधारित। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने का आखिरी मौका दिया गया है। श्री ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और कई खाड़ी देशों के कूटनीति आग्रह करने के बाद नियोजित सैन्य हमलों को रोक दिया गया है। श्री ट्रंप ने हुर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए बातचीत जारी रखने की पहल को पहला चरण बताया। वहीं दूसरे चरण में ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने अमेरिका के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बातचीत की खबरों का भी खंडन। श्री बगाई ने कहा कि ईरान और ओमान के बीच हाल ही में हुआ समुद्री समझौता केवल जहाजों की सुरक्षित आवाजाही तक सीमित है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है। एक रिपोर्ट।
5: प्राधिकरण ने बताया कि प्रतिबंधित किए गए उत्पाद

0: उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। प्राधिकरण ने कहा कि कंपनी की वेबसाइट पर बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों पर 100% प्राकृतिक, 100% शुद्ध, 100% शुद्धता की गारंटी, 100% जैविक और 100% नारियल पानी जैसे भ्रामक दावे पाए गए हैं। प्राधिकरण के अनुसार 100% के दावे FSS विज्ञापन और दावे विनियम 2018 का उल्लंघन है। डाबर इंडिया ने आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो नोटिस में उल्लिखित बातों की जांच कर रहा है। ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: और अब मौसम का रुख कर लेते हैं। ओडिशा में प्रमुख नदियों और उनकी सहायक नदियों में जलस्तर घटने के कारण बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हीराकुंड बांध के 4 और द्वार बंद कर दिए गए हैं।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है क्योंकि मुख्य नदियां में पानी का स्तर कम हो रहा है। हीराकुंड बांध अधिकारियों ने 4 और स्लुइस गेट बंद कर दिए हैं और अब बाढ़ का पानी 13 गेटों से नियंत्रित तरीके से छोड़ा जा रहा है। राहत बचाव और पुनर्वास का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, खासकर बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर जिलों में जहां लोग बहुत मुश्किल हालात में है। राज्य सरकार का कहना है कि प्रभावित परिवारों को भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, पशु चिकित्सा सेवाएं, पॉलिथीन सीट और अन्य मदद दी जा रही है। जैसे जैसे बाढ़ का पानी कम हो रहा है, कई जिलों में स्कूल फिर से खुल गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने 4 और 5 अगस्त को मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम

0: उत्तराखंड के कछार, दिवंग साव, पश्चिम कार्बी आंगलोंग, विश्वनाथ, लखीमपुर, धेमाजी और तिनसुकिया जिलों पर पड़ सकता है। विभाग ने असम से सटे नागालैंड के अधिकांश जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है, जिसका प्रभाव सरायदेव, शिवसागर, जोरहाट और गोलाघाट जिलों पर पड़ सकता है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने संबंधित जिलों के लोगों से सभी आवश्यक सावधानियां बरतने और सतर्क रहने की अपील की है। कल बाढ़ से संबंधित दो और मौतें दर्ज होने के साथ ही राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। राकेश धोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: केरलम के 14 में से 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना है। विभाग के अनुसार दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरलम, माहे, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन के समय तेज वर्षा होने की उम्मीद है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ तूफान की संभावना व्यक्त की गई है। और अब बात खेलों की कर लेते हैं। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी आज से दक्षिण कोरिया में शुरू हो रहे BWF सुपर 300 टूर्नामेंट कोरिया मास्टर्स में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। ये टूर्नामेंट 9 अगस्त तक चलेगा। सभी की निगाहें 17 वर्षीय तन्वी शर्मा पर होंगी, जिन्होंने ताइपे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतकर इस टूर्नामेंट में प्रवेश किया है। तन्वी भारत की महिला एकल टीम का नेतृत्व करेंगी। पुरुष एकल में किदांबी श्रीकांत अमरीका ओपन में उपविजेता रहने और पूरी तरह फिट कर वापसी कर रहे हैं। पुरुष एकल टीम में श्रीकांत के साथ किरण जॉर्ज, मिथुन मंजुनाथ, थारून मन्नपल्ली, रौनक चौहान और सनेथ दयानंद शामिल हैं। वहीं महिला युगल में सोनाली सिंह और रितिका ठाकुर के साथ प्रिया कुंजिंगबाम और श्रुति मिश्रा प्रतिस्पर्धा करेंगी। और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद फरहत। बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आज आने की खबरें आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, नवीन के गढ़ में पीके का चमत्कार। जनसत्ता लिखता है, जीते प्रशांत, विरोधी अशांत। भाजपा के राष्ट्राध्यक्ष का किला ढहा, उपचुनाव में करारी हार। हंगामे के बीच सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का विधेयक पारित। गृहमंत्री अमित शाह के सदन में नहीं आने पर विपक्ष का हंगामा जारी, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट के शब्द को प्रकाशित किए हैं। छात्रों के प्रदर्शन की आड़ में अपराधी रियायत के हकदार नहीं। ग्लासगो के बाद नजर अहमदाबाद पर। भारत 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों को सिर्फ एक आयोजन के तौर पर नहीं बल्कि 2036 के अहमदाबाद ओलंपिक दावेदारी के लिए मेगा ड्रेस रिहर्सल के रूप में देख रहा है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, अलविदा ग्लासगो, अहमदाबाद को 2030 के गेम्स की मशाल मिली। ईरान से बातचीत शुरू, डोनाल्ड ट्रंप ने टाला संभावित बड़ा सैन्य हमला, लोक सत्य की सुर्खी है। पत्र ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द भी प्रकाशित किए हैं, कूटनीति की राह, बातचीत से बचेगी हजारों जिंदगियां।

0: हिंदुस्तान ने इस विषय पर अपने संपादकीय पन्ने पर एक लेख भी प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, क्या ईरान पर काम करेगी नई अमरीकी रणनीति। विश्लेषण में कहा गया है कि अमरीका और ईरान के बीच जब तक बुनियादी सवालों के जवाब नहीं तलाशे जाते, युद्ध विराम का कोई फैसला अंतिम नहीं माना जाएगा। नवभारत टाइम्स ने देश में अंगदान को लेकर बढ़ रही जागरूकता का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, अंगदान बढ़ा, रिकॉर्ड 20,000 से अधिक ट्रांसप्लांट। डिजिटल पोर्टल शुरू होने के बाद 5,00,000 से ज्यादा लोगों ने अंगदान की शपथ ली।
1: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसदीय समिति ने फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा की आलोचना की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से माफी की मांग की। एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, राज्य सरकारें हालिया विरोध प्रदर्शनों में विद्यार्थियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के पास समझौता करने का एक आखिरी मौका। ईरानी बातचीत की खबरों का खंडन किया। और खेलों में, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Parliamentary committee criticizes Meta over removal of Prime Minister Narendra Modi's video from Facebook. Seeks apology from CEO Mark Zuckerberg. NDA parliamentary party to hold its weekly Mangal Milan meeting in New Delhi this morning. Supreme Court says state governments can close or withdraw FIRs against students involved in recent protests. U.S. President Donald Trump warns Iran of last chance to reach an agreement with Washington. Tehran denies reports of negotiations. And Indian shuttlers to begin their campaign at Korea Masters 2026 badminton tournament today. And now the news in detail. The Parliamentary Standing Committee on Communication and Information Technology met Meta officials in New Delhi regarding the temporary removal of Prime Minister Narendra Modi's video from Facebook. BJP MP and chairperson of the committee, Nishikant Dubey, criticized Meta India for removing the social media post of the Prime Minister. Talking to reporters after the meeting, Mr. Dubey said that the committee has demanded Meta CEO Mark Zuckerberg to apologize for this, and if he does not do so, then the safe harbor protection under Section 79 should be withdrawn from him.
3: ये माफी नामा जकरबर्ग के तरफ से आनी चाहिए, और ये जकरबर्ग नहीं होते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उसे वापस लेना चाहिए।
2: Prime Minister Modi has underlined that talents are honed and refined through continuous effort and dedication. Sharing a Sanskrit quote, Mr. Modi noted that today the youth of the country are imbibing these very qualities and illuminating India's name across the world. The National Democratic Alliance or NDA Parliamentary Party's weekly strategy meeting known as Mangal Milan will be held in the Parliament House this morning. The meetings are traditionally held on Tuesdays during Parliament sessions with an aim to demonstrate complete alliance unity. The meeting last took place on the 28th of July. MPs from Trinamool's breakaway faction, the newly formed Nationalist Citizens Party of India, NCPI, had also participated in the alliance meeting. The second meeting of the BRICS Anti-Corruption Working Group and the BRICS Expert Network on Asset Recovery will begin in Hyderabad, Telangana today. Secretary of Department of Personnel and Training, Rachna Shah, will inaugurate the meeting. This meeting builds upon the outcomes of the first BRICS Anti-Corruption Working Group meeting held virtually in June. More from our correspondent.
4: The two-day meeting is being organized in line with the theme of India's BRICS presidency, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. The event is expected to witness participation from BRICS member countries along with senior policymakers, experts, practitioners and representatives of anti-corruption and law enforcement agencies. During the meeting, BRICS members will deliberate on strengthening international cooperation for asset recovery, combating cross-border corruption, enhancing transparency and accountability in governance, with Rishu Jaiswal,

0: IRs against students involved in recent protests. U.S. President Donald Trump warns Iran of last chance to reach an agreement with Washington. Tehran denies reports of negotiations. And Indian shuttlers to begin their campaign at Korea Masters 2026 badminton tournament today. And with that, we end the morning news. Have a great day.
1: आकाशवाणी बीकानेर का ढला मानव चैनल है। मेरे वो 215.05 MHz अर्थात 1395 MHz और FM 101.6 MHz पर 8:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम सौरभ। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे वार्ता, विषय है भारतीय संगीत की विभिन्न शैलियां। वार्ताकार हैं श्री नवीन कुमार आचार्य।
2: सुव्यवस्थित ध्वनि जो रस की सृष्टि करे संगीत कहलाती है। वर्तमान में संगीत का अर्थ संगत भी लगाया जाता है, अर्थात गाने और बजाने के सामंजस्य को भी संगीत कहा जाता है। संगीत की परिभाषा पर विभिन्न विभिन्न विद्वानों ने परस्पर अनेक परिभाषाएं दी है। कुछ विद्वानों ने संगीत पक्षियों के शोर को भी संगीत ही माना है, तो कुछ ने झरनों के शोर को भी संगीत माना है। आसान भाषा में कहे तो संगीत वो है जिसकी आवाज मात्र से ही मन में अलग अलग तरह के भाव उत्पन्न होना भी संगीत ही माना जाता है। वैसे तो संगीत के विषय में जितना लिखो उतना ही कम है, परंतु प्राचीन काल से ही संगीत का उपयोग राजा महाराजाओं के समय से चला आ रहा है। प्राचीन समय में भी संगीत का उपयोग मनोरंजन के साधन के रूप में विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए अलग अलग तरह से किया जाता रहा है। संगीत की उत्पत्ति कब हुई और कैसे हुई, इस विषय में भी एक ही बात कही जाती है। जिस प्रकार बच्चे के बोलने का किसी को पता नहीं होता, ठीक उसी प्रकार संगीत के विषय में भी विभिन्न विद्वानों का यही मत है कि संगीत भी आदि अनादि काल से चला आ रहा है। इसका कोई नियत समय किसी को भी ज्ञात नहीं है। संगीत शब्द सम प्लस ग्रथातु से बना है। प्रामाणिक तौर पर देखे तो सबसे प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष मूर्तियों, मुद्राओं व भित्ति चित्रों से जाहिर होता है कि हजारों वर्ष पूर्व लोग संगीत से परिचित थे। यूनानी भाषा में संगीत को मौसिकी, लैटिन भाषा में मूसिका, जर्मन में मूसिक तथा अंग्रेजी भाषा में म्यूजिक कहा जाता है। वर्तमान समय में भारत में हिंदी भाषा का संगीत तथा अंग्रेजी भाषा का म्यूजिक अधिक उपयोग में लिया जाता है। भारत में संगीत की यात्रा। भारत में आदि अनादिकाल से ही संगीत का समृद्ध परंपरा रही है। गिने चुने देशों में ही इतनी पुरानी व इतनी समृद्ध परंपरा पाई जाती है। भारत में गायन को गीत कहा जाता था। भारत से बाहर अन्य देशों में केवल गीत और वाद्य को संगीत माना गया है। नृत्य को संगीत से अलग बताया गया है। भारत में गायन, वादन और नृत्य को संगीत माना गया है। प्राचीन समय से संगीत को मनोरंजन का भी अभिन्न अंग माना गया है। भारतीय संगीत का इतिहास कम से कम भी मानो तो 4000 वर्ष पुराना है। संपूर्ण विश्व में सबसे प्राचीन संगीत का दर्शन हमें सामवेद में मिलता है। उस समय स्वर को यम कहते थे। भारतीय संगीत की परंपरा निरंतर फलती फूलती और समृद्ध होती रही। इस पर सैकड़ों ग्रंथ लिखे गए हैं। भारतीय संगीत की शैलियां ध्रुपद, धमार, ठुमरी, भजन, गजल, ख्याल। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं ध्रुपद पे। ध्रुपद गायकी का विकास शाही दरबारों से शुरू होता है। गायक तानसेन अपने समय के सबसे बड़े ध्रुपद गायक माने जाते हैं। 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच ध्रुपद की भाषा संस्कृत से ब्रज और इसके बाद अवधि की ओर चली गई। इसी समय ध्रुपद का उपयोग भक्ति के साथ साथ तारीफ और संगीत का महत्व भी बंदिशों का विषय बना। धमार। धमार का जन्म ब्रज भूमि के लोक संगीत में हुआ। इसका प्रचलन ब्रज के क्षेत्र में लोक संगीत के रूप में प्राचीन काल से चला आ रहा है। इस लोकगीत में वर्ण्य विषय राधा कृष्ण के होली खेलने का था, रस श्रृंगार था और ब्रज भाषा थी। गांवों के उन्मुक्त वातावरण में ध्रुत गति के दीपचंदी, धुमाली और कभी कभी अद्धा जैसी ताल में युवक युवतियां, प्रौढ़ और वृद्ध सभी द्वारा लोकगीत गाए व नाचे जाते थे। ब्रज के संपूर्ण क्षेत्र में रसिया और होली जन जन में व्याप्त है। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में उस समय के संगीत परिदृश्य को देखते हुए धमाल गायकी की नींव

ठुमरी। ठुमरी भारतीय संगीत की एक गायन शैली है। इसमें रस, रंग और भाव की प्रधानता रही है, अर्थात जिसमें राग की शुद्धता की तुलना में भाव सौंदर्य को ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ठुमरी का जिक्र हो तो ये जानना जरूरी है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। कहा जाता है कि 19वीं सदी के मध्य नवाब वाजिद अली शाह के समय में ठुमरी को अच्छा श्रेय मिला और उसकी परवरिश हुई। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हुआ, मुख्यतः लखनऊ और बनारस में। इसमें ब्रज भाषा में राधा कृष्ण के जीवन पर रोमानी गीत, यह आमतौर पर ख्याल संगीत कार्यक्रम के अंतिम नृत्य के रूप में किया जाता था। ख्याल, ख्याल हिंदुस्तानी कंठ संगीत की सर्वाधिक प्रिय लोकप्रिय शैली। ख्याल फारसी भाषा का शब्द है। ख्याल का अर्थ विचार या कल्पना। जब एक गायन अपनी प्रौढ़ कल्पना को स्वर, लय, तान के माध्यम से संगीत आकार देता है तो उसे ख्याल कहा जाता है। कहा जाता है कि सुल्तान हुसैन शर्की ने ख्याल शैली का आविष्कार किया। मारवाड़ी ख्याल को सामान्य भाषा में डिंगल भाषा में लिखा जाता है। सामान्य तौर पर ख्याल के दो प्रकार बताए गए हैं, विलंबित और द्रुत ख्याल। बड़े ख्याल की रचना सदारंग और अदारंग ने की थी। वर्तमान समय में गायन गायक पहले बड़ा ख्याल और उसके बाद छोटा ख्याल दोनों गाते हैं। ख्याल गायकी के जितने भी घराने हैं उनमें सबका ख्याल गाने का अपना अलग अलग अंदाज है। भजन शैली। भजन सुगम संगीत की एक शैली है। इसका आधार लोक संगीत व शास्त्रीय संगीत हो सकता है। भजन मूल रूप से किसी देवी देवता की प्रशंसा में गाए जाने वाले गीत हैं। स्तोत्र और श्रवण का लोक रूप ही भजन है। सामान्य रूप में उपासना की सभी पद्धतियों में भजनों का प्रयोग किया जाता है। इनमें शास्त्रीय संगीत की तरह बंधन नहीं रहता। जिन गीतों में ईश्वर का गुणगान किया जाता है उनमें प्रार्थना की जाती है, उन्हें भजन, और जिन कविताओं को स्वर तालबद्ध करके गाते हैं उन्हें गीत कहते हैं। राग ताल नियमों से स्वतंत्र आकर्षक रचनाएं, भावानुकूल शब्दों द्वारा गीत रचना आदि एक अच्छे भजन की विशेषता होती है। उपासना में प्रयुक्त होने वाले गीतों को भजन की संज्ञा दी गई है। सगुणोपासना के कारण इस विधान को अधिक प्रसार मिला। गजल। गजल शैली प्राचीन है। इसकी उत्पत्ति 7वीं शताब्दी की अरबी कविता से मानी जाती है। सूफी फकीरों और नई इस्लामी सल्तनत के दरबारों की प्रभाव के कारण 12वीं शताब्दी में गजल दक्षिण एशिया में फैल गई और अब यह भारतीय उपमहाद्वीप और तुर्की की कई भाषाओं की कविता का सबसे प्रमुख रूप है। एक गजल में आमतौर पर 5 से 15 दोहे होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं लेकिन जुड़े होते हैं अमूर्त रूप से अपने विषय में और अधिक शक्ति से अपने काव्यात्मक रूप में संगीत में प्रस्तुति की मांगों को पूरा करने के लिए गजलों की प्रकृति भी बदल गई, लंबाई में संक्षिप्त हो गई। गजल का उपयुग 661-750 के दौरान गजल एक काव्य शैली के रूप में अपने आप में आई और प्रारंभिक अब्बासिद युग में पुष्पित और विकसित होती रही है। वर्तमान समय में भारतीय संगीत की स्थिति। संक्षिप्त रूप में कहा जाए तो वर्तमान समय में भारत में शास्त्रीय संगीत के साथ साथ सुगम संगीत का भी अत्यधिक प्रचलन है। भारतीय संगीत में ऐसा भी माना गया है कि सुगम संगीत के लिए भी शास्त्रीय संगीत का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि वर्तमान के समय में भारत में संगीत के क्षेत्र में स्कोप अब बहुत अधिक है। वर्तमान समय में संगीत के क्षेत्र में रियलिटी शोज को भी एक अहम हिस्सा माना जाने लगा है। इससे युवा जनरेशन को टेलीविजन के माध्यम से अपनी अलग पहचान बनाने के अवसर मिलते रहे हैं। साथ ही वर्तमान समय में फ्यूजन म्यूजिक की डिमांड भी अधिक होने लगी है। इससे यंग जनरेशन का क्रिएशन पावर भी ग्रोथ हो रहा है। वर्तमान समय में राजस्थानी संगीत में सर्वाधिक क्रिएशन देखे जा सकते हैं। फ्यूजन संगीत क्या है? फ्यूजन संगीत संगीत की 2 या 2 से अधिक शैलियों को मिलाकर प्राप्त हुआ संगीत है। फ्यूजन शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ विलय या मेल है। चूंकि इस प्रकार के संगीत का प्रादुर्भाव पश्चिमी देशों में हुआ और वहां से यह भारत में आया है, इसलिए हिंदी में भी इसके अंग्रेजी नाम अर्थात फ्यूजन से ही जाना जाता है। फ्यूजन संगीत का महत्व। फ्यूजन संगीत के विभिन्न शैलियों को सुनने, उनके स्वाद का विस्तार करने तथा दूसरों के साथ साझा आधार खोजने की अनुमति देता है। जैसा कि हमने बताया कि माइल्स

0: रेविल्स जैज फ्यूजन बनाने वाले संगीतकारों में से एक थे। राजस्थान का संगीत, इस प्रकार का संगीत भारत के राज्यों में से एक राजस्थान में उत्पन्न होता है और उदयपुर, जोधपुर और जयपुर सहित भारतीय संगीत विकास के कई महत्वपूर्ण केंद्रों का घर है। क्षेत्र का संगीत भारत के आसपास के क्षेत्रों साझा करता है। राजस्थान लंगा सपेरा भोपा हुआ था। इसमें संगीतकार जातियों की एक विविध संग्रह है। मांगनियार संगीतकारों के दो पारंपरिक वर्ग है, लंगा जो ज्यादातर मुस्लिम दर्शकों और शैलियों के लिए विशेष रूप से थे, और मांगनियार पारंपरिक संगीत में महिलाओं के पनिहारी गीत शामिल है जो विशेष रूप से पानी और कुओं पर केंद्रित काम का वर्णन करते हैं, जो दोनों राजस्थान की रेगिस्तानी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। विभिन्न जातियों द्वारा बजाए जाने वाले गीत आमतौर पर आलाप से शुरू होते हैं जो धुन सेट करता है और उसके बाद एक दोहे का पाठ होता है। बदलते मौसम का उत्सव राजस्थान के लोक संगीत का बहुत बड़ा केंद्र है। वर्तमान समय में राजस्थानी संगीत का प्रचार प्रसार अत्यधिक प्रचलन में है। संगीत हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है और यह हमारी दैनिक जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। संगीत केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं सुना जाता, वरन इसके कई सारे फायदे हैं। अब संगीत का प्रयोग वैज्ञानिक अनेक रोगों के उपचार के अंदर भी कर रहे हैं। अनेक वैज्ञानिकों के रिसर्च ने इस बात को प्रमाणित किया कि संगीत सुनने से कई सारे मानसिक फायदे होते हैं। तनाव कम होता है। आजकल हर इंसान की जिंदगी दौड़ धूप से भरी रहती है। काम करते करते हम बुरी तरह थक जाते हैं। जब संगीत सुनते हैं तो हमारा दिमाग रिलैक्स मूड के अंदर आता है। हमारे दिमाग में कई नई एनर्जी का संचार होता है, वह हम अच्छा फील करते हैं। संगीत हमारे मूड को बदल देता है। संगीत दिमाग में कोर्टिसोल के स्तर को कम करता है जिससे दिमाग बेहतर तरीके से काम करता है। दिमाग की नसों को आराम मिलता है। कई बार काम का बोझ अधिक होने के कारण नसें थक जाती है, वहां दवाई भी काम नहीं कर पाती, वहां म्यूजिक थेरेपी काम करती है।
1: विषय था भारतीय संगीत की विभिन्न शैलियां। वार्ताकार थे श्री नवीन कुमार आचार्य। आकाशवाणी बिजली का ये ढूंढ मिल चैनल है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सौरभ।
2: आपका व्यवसाय आपकी पहचान,
3: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
2: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
3: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
2: बस आइए कर्णी स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में।
3: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
2: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
3: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
2: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
3: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
4: एक जमाने से कहा

0: कहानियाँ सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा विचित्र।
1: डाउनलोड ग्रेट्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: प्रत्येक मंगलवार गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

पूर्ण ओरिजिनल है। और अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सौरभ। सुबह के 8:45 होने को हैं। अब आप सुनेंगे श्रोताओं की रेडियो से जुड़ी यादों पर आधारित कार्यक्रम रेडियो का सफरनामा। वाचक स्वर होंगे श्रीमती मधु शर्मा की, प्रस्तुति रहेगी श्री रेवंत राम रेगा की और संयोजन किया है श्री अमित सिंह ने। तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम रेडियो का सफरनामा।

0: सफरनामा कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, रेडियो का सफरनामा कार्यक्रम में हमारा प्रयास रहता है कि हम आप जैसे सुधी और जो लंबे समय से आकाशवाणी के श्रोता रहे हैं, उनके अनुभव और यादों को संजोकर आपके लिए लाने का प्रयास कर रहे हैं। कई श्रोताओं के अनुभव बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक रहते हैं। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हमने जिस व्यक्तित्व को शामिल किया है, वो मात्र श्रोता ही नहीं बल्कि आकाशवाणी के कलाकार रहे हैं। आप 11 वर्ष की उम्र में आकाशवाणी से जुड़े और मजे की बात यह है श्रोताओं कि आप अपने घर से 5 किलोमीटर पैदल चलकर आकाशवाणी के स्टूडियो पहुंचते। पहले आप सुनिए उनकी आवाज, शायद आप पहचान लेंगे उनकी आवाज को।
1: प्रेम से भी शायद बहुत ऊपर के कोई लेवल का अगर शब्द आप देना चाहे कि आकाशवाणी के प्रति मेरी अपार श्रद्धा, बहुत जबरदस्त जुनून, और मैं समझता हूँ कि मैं आकाशवाणी का पुजारी हूँ, प्रेमी नहीं हूँ, पुजारी हूँ मैं।
0: जी हाँ श्रोताओं, आप हैं डॉक्टर कुमार गणेश। आपने आकाशवाणी को सुनने का सफर कहाँ से आरंभ किया, सुनिए।
1: आकाशवाणी की सुनने का जहाँ तक मामला है तो वो परिवार में बाबूजी जो छोटा सा एक ट्रांजिस्टर ला कर रखे थे, तो शायद मैं तीसरी चौथी कक्षा में था और 7-8 साल की उम्र थी, तो वहाँ से उससे जुड़ा हुआ। मैं अगर ये कहूँ ना कि आकाशवाणी का मेरे जीवन पर बहुत बड़ा कर्ज है, और मुझे बहुत से ऐसे संस्कार है जो आकाशवाणी में दिए, तो गलत नहीं होगा।
0: डॉक्टर कुमार गणेश ने अपनी यादों को साझा करते हुए मुकुल कार्यक्रम के अनुभव बताते हुए कहा कि अधिकारियों का बच्चों के प्रति लाड़ प्यार लाजवाब था। ऐसा लगता था कि जैसे हम मुकुल में नहीं अपने ननिहाल में आए हैं।
1: जहाँ तक मैं पीछे जाकर याद करता हूँ तो वर्ष रहा होगा 1982 और मैं 11 साल का बच्चा, छठी कक्षा। तो सूत्र से मुकुल कार्यक्रम के बारे में पता चला। अब 11 साल का बच्चा और लगभग 5 किलोमीटर पैदल चलकर 7:45 बजे घर से रवाना होकर, तब मुकुल लाइव होता था, यहाँ पहुंचे। उसके बाद फिर वो बच्चों का ट्रायल होता था, फिर उसमें से छाटे जाते थे बच्चे कि ये लोग जो है लाइव में आएंगे, तो उसमें शामिल होने के लिए जद्दोजहद होती थी और बड़ी प्रबल इच्छा कि बस मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाए, रिजेक्शन वालों में नहीं हो। फिर वो कार्यक्रम और उसके बाद खत्म, और फिर वो 4.5 किलोमीटर वापस पैदल जाना उस 11 साल के बच्चे का, छठी सातवीं बार 3-4 साल। वहां से जो उसका एक कारण था, मुझे लगता था कि लोगों को सर्कस में आनंद आता है, जादू में आता है, मुझे उसमें आकाशवाणी के मुकुल कार्यक्रम। सप्ताह भर के 6 दिनों में मैं प्रतीक्षा करता था कि कब जाना होगा रविवार को, और मेरा सौभाग्य है इन 3-4 सालों में मैं कभी रिजेक्ट नहीं हुआ मुकुल के लिए। जितनी बार आया ना, जो मैं लेकर आया कि ये रखूंगा कविता कहानी वगैरह, उसका चयन हुआ। हाँ देखिए, ऐसा है ना, वो उम्र ऐसी थी कि जिसमें ये अपने केंद्र निदेशक, सहायक केंद्र निदेशक महोदय कौन थे वगैरह वो तो याद नहीं है, कार्यक्रम अधिकारी, क्योंकि हम छोटे बच्चे। लेकिन वहाँ दीदी के रूप में सरोज भटनागर जी और भैया के रूप में यशपाल सिंह राठौड़ साहब, क्या वो लाड़ प्यार से और कैसे जैसे करके छोटे छोटे बच्चों को कोई गुनार करके तैयार करता है ना, बेटे ऐसे नहीं, इसको यूं बोलते हैं। तो उन दोनों का जो दुलार और जो लाड़ है, हमें ऐसे लगता था कि मुकुल जा रहे हैं ननिहाल जा रहे हैं, यानी उनको वैसे तो कहा जाता था कि भैया दीदी, हम सोचते थे कि हमारे ननिहाल के जो ना

0: तरह से या मामा मौसी की तरह से ऐसे ट्रीट करते, और उनका वो जो अद्भुत है, मेरा सौभाग्य रहा कि बाद में जब मैं यहाँ आकाशवाणी में कंपेयर बना तब भी यशपाल जी से तो वैसे भी भेंट होती थी और वे उस रूप में वहां भी होते थे सामने अनुसर्ग रूप में। सरोज जी तो जब वहां अधिकारी बन गए तो उनसे तो प्रणाम करना होता, लेकिन वो जो चीज है उनका वो दुलार वो अद्भुत। मैंने कहा ना, मुझे लगता था मैं निहाल जा रहा हूँ।
1: मुकुल के बाद युवाणी और फिर एक कवि के रूप में जुड़ा होने की भी चर्चा करते हुए कहा,
0: मैं आकाशवाणी में युवाणी से बतौर कवि जुड़ा 1989 में कवि जुड़ा। तब शंभू दयाल जी अहिरवा कार्यक्रम अधिकारी थे और मुझे आज भी याद है कि 89 से लेकर 94 तक में वो जो यात्रा थी बतौर कवि के रूप में युवाणी में, तो क्षमताएं मेरी और भी थी लेकिन मैं कवि के रूप में पसंद करता था तो वो सफर भी अद्भुत था। उसके बाद वर्ष आता है 1995, तो उस समय अपने थे सहायक केंद्र निदेशक इंद्र प्रकाश जी श्रीमाली जी और युवाणी में प्रभारी थे राजेंद्र माथुर सर, बड़े प्यारे इंसान दोनों। यानी आकाशवाणी जो कहते हैं ना कि जनता की आवाज है और जनता के बीच की जगह बनाए हुए है, ये वो लोग थे जिनको देखकर लगता था कि यार इतने बढ़िया लोग अगर हमें हैंडल कर रहे हैं बतौर आकाशवाणी आने के, तो फिर तो आकाशवाणी का आनंद ही अपना एक अद्भुत है।
1: डॉक्टर कुमार गणेश ने बताया कि आकाशवाणी के लोग बहुत बढ़िया होते हैं। 1995 में आपका चयन युवाणी कंपेयर के रूप में हुआ, क्या कहा आपने अपनी यादों में पूर्व उद्घोषक गिरधर व्यास के बारे में?
0: मेरा 1995 का जो सिलेक्शन का बैच था युवाणी कंपेयर का, उसमें चयन हुआ और वहां से मुझे आज भी याद है तब मंगलवार को गजलों का कार्यक्रम होता था आकाशवाणी में और शायद शनिवार को राजस्थानी का होता था, तो मेरी पहली ड्यूटी थी और पहली ड्यूटी में अब तो सारे सेटअप बदल गए हैं, इस तरफ मैं बैठा था और सामने गिरधर व्यास जी जैसे धुरंधर उद्घोषक, तो बहुत बड़ा नाम हुआ करता था उनका, तो मेरी बहुत बड़ी कसौटी थी क्योंकि कार्यक्रम के बाद उन्होंने कहा कि किसी नए को पहली बार ऐसे देना फसलों का, तो मुझे इन लोगों का ऐसे आशीर्वाद मिला और इंद्र प्रकाश जी श्रीमाली और राजेंद्र माथुर साहब की जो एक जुगल बंगी थी वहां से मुझे सीखने को बहुत मिला। वो दौर जो मैं समझता हूँ कि उसने जो मुझे सिखाया है आज भी बहुत काम आता है। मैं आपको बताऊं कि मैं उन सौभाग्यशाली चंद लोगों में से हूं कि जिनके साथ ऐसा वाकया कभी नहीं हुआ। और एक बात और है, मुझे सीखने को इतना मिला कि आपकी तकनीक बदल गई, कंसोल पर जब मैं टेप पर उसे रिकॉर्ड करता था तो कभी भी बतौर कंपेयर भी ऐसा नहीं हुआ कि जिसको दोबारा करने की जरूरत पड़ गई है, या बतौर जब मैं कवि होता था तब भी ऐसा नहीं हुआ कि दोबारा करने की जरूरत पड़ गई है। तो मैं शायद उन चंद सौभाग्यशाली लोगों में कि जिन्होंने इतना सीखा या इतना उन्हें सीखने को मिला यहाँ कि रीटेक या दोबारा जैसी नौबत कभी नहीं आई। ये आकाशवाणी के बहुत बड़े संस्कार जो है मुझे मिले, ये मैं मानता हूं। देखिए उसमें क्या है, मेरा शुरू से उसूल था कि जो सीखने को मिल रहा है ना यहाँ, अब आप सीखे होकर शर्मिंदा नहीं होते हैं, इसलिए तैयारी पूरी करें, वरना वो जो आपका सीखना है सिखाने वाले वो शर्मिंदा होते हैं। तो तैयारी में पूरी उसमें है, कभी भी कोई कमी नहीं रखी। एक बात जो मुझे यहाँ रखनी होती थी, जैसे किसी का भी जो वार्ता का या गाने का प्रस्तुति, मैं उसको 3-4 तरह से सोच कर रखता था कि इसमें से बढ़िया कौन सा तरीका उसे काम में ले।
1: एक सवाल के जवाब में बहुत ही रोचक जवाब दिया आपने और उस समय LP और EP से गाने बजाने की बात भी कही।
0: आपने मेरे बहुत अंदर के मन को छेड़ दिया ये कहकर, क्योंकि यहाँ छंगाणी जी लाइब्रेरियन होते थे, मदन जी छंगाणी लाइब्रेरियन होते थे, तो अब चरम ये हो गया था कि जिस दिन मदन जी यहाँ छुट्टी पर होते ना तो उनके बच्चे मुझसे पढ़े, मुझे मास्टर जी कहते, तो कोई पूछता ना कि वो LP कहाँ रखा है, IP, तो मेरे मास्टर जी से पूछ लो। यानी इतना लाइब्रेरी से मेरा जुड़ाव था कि फला फिल्म का जो गाना है ना, तो उसमें ए साइड में LP में कि बी साइड में ये भी बता देता था। मैं दो बातों का जिक्र करूंगा, एक गाना मैंने TV पर फिल्म देखी और वो आके निकल गया तो मैंने यहाँ देखा उसका, वो थी फिल्म बद और बदनाम, जो आज भी याद है कि KDS फिल्म्स KDS सॉरी ए साइड में पहला गाना लता मंगेशकर का, आनंद बख्शी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, हमें तुमसे मोहब्बत है हमारा इम्तिहान ले लो, अगर चाहो तो दिल ले लो, अगर चाहो तो जा ले।

0: उसके अलावा मेरे परिचित थे, उन्होंने कहा था कि भैया एक बात का ध्यान रखो, अपने सुरेश राजवंशी करके एक बहुत अच्छे सिंगर हुए हैं, रवि साहब जैसी आवाज है, उनका एक ही एल्बम है, वो एल्बम उसका ये गाना है, ये आप बजाओ। तो फिर वो गैर फिल्मी जो कार्यक्रम होता था फजल नज़मों का, उसमें मैंने बजाया था, मैंने माना कि जमाना तेरी जागीर में है, ये क्या कम है कि तेरा गम मेरी तकदीर में, बंजारन का गाना चंदा रे मेरी पतिया ले जा, तो उसके अलावा मेरा प्रेम हिमालय से ऊंचा, ये वो गाने थे जो मुझे पब्लिक में से कहते थे लोग, जब मैं इधर उधर होता हूँ कहते यार ये गाना बजा देना, तो मुझे तो ये भी पता था कि इसकी एलपी या ईपी, जैसे बंजारन की ईपी थी और मेरा प्रेम हिमालय से ऊंचा इसकी ईपी थी, उसकी एलपी थी बाजार बनना, वो कहाँ रखी है, ये तक जुड़ाव था मेरे लाइब्रेरी से और ये गाने, उसके अलावा और भी बहुत रचनाएं थी।
1: आकाशवाणी से जो आपको प्रेम है ऐसा पूछने पर आपने प्रेम से भी बड़ी बात कह दी, सुनिए क्या कहा आपने।
0: प्रेम से भी शायद बहुत ऊपर के कोई लेवल का अगर शब्द आप देना चाहे कि आकाशवाणी के प्रति मेरी अपार श्रद्धा, बहुत जबरदस्त जुनून, और मैं समझता हूँ कि मैं आकाशवाणी का पुजारी हूँ, प्रेमी नहीं हूँ, पुजारी हूँ मैं, और आज भी मोबाइल पर आकाशवाणी का कोई गाना या समाचार की बजाय मैं चाहता हूँ कि उसको रेडियो चलाऊ, रेट्रो सेट लेकर उस पर सुनना पसंद करता हूँ, तो मैं तो आकाशवाणी का पुजारी हूँ और यही रहूंगा ताऊ।
1: आकाशवाणी को सबसे बड़ी ताकत बताते हुए डॉक्टर कुमार गणेश ने कहा,
0: आकाशवाणी से मुल्क के आम आदमी के जहन और दिल से जुड़ी हुई, बहुत गहरे से जुड़ी हुई है, और ये आकाशवाणी की सबसे बड़ी ताकत है, एक बात। दूसरी बात, तकनीक युग के अनुरूप बदलती रहती है, लेकिन आकाशवाणी ने युगीन संदर्भ में नवीन तकनीकों को अपनाकर जिस तरीके से अपना अद्यतीकरण किया है, ये बहुत प्रशंसनीय है, और यही बात है कि आकाशवाणी मुझे लगता है कभी भी अप्रासंगिक नहीं होगी, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है और रहेगी। एक बात और, आकाशवाणी में जिस तरीके से कार्यक्रमों के नवीन संदर्भों में संशोधन, परिवर्धन और परिवर्तन हो रहे हैं, ये बहुत प्रशंसनीय है। हाँ, ये बात तो सही है कि तकनीक के दौर में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, लेकिन आकाशवाणी खम ठोक कर मैदान में है, बहुत बड़ी उपलब्धि है।
1: आकाशवाणी के कार्यक्रमों में भाषा की महत्ता की बात रखते हुए कहा कि आकाशवाणी आज भी पूजनीय है और भारतीय संस्कारों को नई ऊंचाइयां भी दी है।
0: मैं यहाँ इस बात के दो टुकड़े कर लेता हूँ। पहला टुकड़ा ये कि ये जो प्रसारण जगत में एक तरह की भाषागत अराजकता है ना, आकाशवाणी इससे अछूती है, ये बहुत बड़ी शुचितापूर्ण अवस्था है आकाशवाणी की। आकाशवाणी के प्रसारण में भाषागत अराजकता कि कुछ भी बोल दो, बस बोलते रहो लगातार, नॉन स्टॉप बोलिए, वो नहीं है। आकाशवाणी ने ये जो संस्कार बचा कर रखे हैं ना, इसलिए आज भी आकाशवाणी आम आदमी की नजर में पूजनीय है, बड़की नहीं है, पूजनीय है, और मैं समझता हूं कि ये बरकरार रहना चाहिए। तो दूसरी बात है, संस्कारों को हमेशा जो आगे बढ़ाते हैं वो जिम्मेदार होते हैं, और 90 बरस के सफर में आकाशवाणी जिस तरीके से भारतीय समाज को संस्कारों से पोषित किया है, मैं समझता हूँ ये क्रम आगे और दृढ़ता से ही बढ़ेगा, कहीं दुर्बल नहीं होगा।
1: तो ये थे आज के श्रोता डॉक्टर कुमार गणेश, आपने अपने अनुभवों और यादों में से कुछ यादें और अनुभव हमारे साथ साझा किए और आकाशवाणी के स्वर्णिम काल को ऐतिहासिक बताया। इस अंक के संयोजक थे श्री अमित सिंह, प्रस्तुति थी श्री रेवंत राम लेखा की और वाचक स्वर था मधु शर्मा का। अगले मंगलवार प्रातः 8:45 पर आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

सिलसिला श्रोताओं की रेडियो से जुड़ी यादों पर आधारित कार्यक्रम रेडियो का सफरनामा। वाचक स्वर थे श्रीमती मधु शर्मा की, प्रस्तुति थी श्री रेवंत राम लेगा की और संयोजन किया था श्री अमित सिंह ने। आकाशवाणी बीकानेर का यही ढोल मारू चैनल है।

0: ही टूर्नामेंट चल रहे। 9 बजने को है, अब आप हमारे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 कराने वाला विधेयक पारित। एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए 16 अगस्त तक ईकेवाईसी करवाना अनिवार्य। राजस्थान पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी और मानव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया और प्रदेश भर में 11,500 शहरी सेवा शिविरों के माध्यम से 53,000 से अधिक पट्टे जारी। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में आयोजित की जाएगी। इस बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। इससे पहले कल लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हुआ। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि ये विधेयक न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया से एक महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा।
2: विधेयक भी न्याय क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्याय कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
1: राज्यसभा में भी कल सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ये विधेयक 2006 के अधिनियम में संशोधन कर भुगतान में होने वाली देरी की समस्या का समाधान करेगा, साथ ही विवाद निपटान प्रक्रिया को सरल बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकारें जंतर मंतर और देश में अन्य जगहों पर हाल ही के प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों और प्रदर्शनकारियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व में 3 न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि 28 जुलाई को न्यायालय के आदेश में पहले आपराधिक मामलों से जुड़े प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई जारी रखने की अनुमति का तात्पर्य केवल गंभीर और जघन्य अपराधों से जुड़े लोगों से था। पीठ ने कहा कि वो पुलिस अधिकारियों की विशेष जांच टीम गठित करने या सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में समिति नियुक्त करने पर विचार कर रही है ताकि पुलिस की अत्यधिक कड़ी कार्रवाई के आरोपों की जांच की जा सके। मामले की सुनवाई 18 अगस्त को होगी। राज्य में एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए ईकेवाईसी का काम तेजी से किया जा रहा है। तेल समन्वयक मनोज गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में 1,85,00,000 सक्रिय एलपीजी उपभोक्ताओं में से करीब 38,00,000 की ईकेवाईसी अभी लंबित है। इनमें इंडेन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के उपभोक्ता शामिल हैं। उन्होंने बताया कि ईकेवाईसी करवाने की आखिरी तारीख 16 अगस्त है। इसी मद्देनजर तेल कंपनियों ने उपभोक्ताओं से जल्द ईकेवाईसी करवाने की अपील की है। श्री गुप्ता ने बताया कि रोजाना लगभग 20,000 उपभोक्ता ईकेवाईसी करा रहे हैं। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों को चारागाह भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जयपुर में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में ये निर्देश देते हुए उन्होंने अतिक्रमणकारियों को 15 दिन के भीतर कब्जा हटाने का नोटिस दिए जाने को कहा। साथ ही तय समय सीमा में अतिक्रमण नहीं हटाने पर FIR दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई करने की

0: बात कही। श्री दिलावर ने घुमंतू परिवारों को उचित पुनर्वास की व्यवस्था किए बिना नहीं हटाने को कहा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राजस्थान पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी और मानव तस्करी से जुड़े एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन युवाओं पर विदेश में नौकरी का झांसा देकर कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम भेजने तथा वहां साइबर ठगी कराने के लिए मजबूर करने का आरोप है। पुलिस ने बताया कि विदेश पहुंचने पर युवाओं के पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते थे और उनसे डिजिटल अरेस्ट, फर्जी निवेश और क्रिप्टो ठगी जैसे साइबर अपराध कराए जाते थे। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र से मिली सूचना के आधार पर की गई जांच में राजस्थान के 500 से अधिक लोगों के ऐसे नेटवर्क से जुड़े होने की जानकारी मिली है। आरोपियों के पास से पासपोर्ट, मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं। पुलिस ने लोगों से विदेश में नौकरी के नाम पर मिलने वाले प्रस्तावों की पूरी जांच पड़ताल करने की अपील की है। प्रदेश भर में आयोजित शहरी सेवा शिविरों के माध्यम से आमजन को विभिन्न नागरिक सेवाएं और योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया गया। 12 जून से 30 जुलाई तक राज्य में विभिन्न स्थानों पर लगभग 11,500 शहरी सेवा शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों में 53,000 से ज्यादा पट्टे जारी किए गए, वहीं 18,000 से अधिक नाम हस्तांतरण और 8,644 भवन मानचित्र प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इसके अलावा 1,32,000 से अधिक जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीकरण किए गए। वहीं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के करीब 21,000 ऋण आवेदन प्राप्त हुए। पाली जिले में आओ गांव चले अभियान के तहत सरकारी स्कूलों में 10,000 विद्यार्थियों के लिए स्टडी टेबल उपलब्ध कराए जाएंगे। जिला कलेक्टर डॉ. रविंद्र गोस्वामी ने कहा कि विद्यार्थियों की अच्छी हैंडराइटिंग उनके व्यक्तित्व विकास और प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायक होती है, इसी उद्देश्य से स्टडी टेबल उपलब्ध कराई जा रही है।
1: देखिए, आओ गांव चले अभियान जो चल रहा है उसमें कई तरह की एक्टिविटीज हो रही है। उसमें प्रमुख एक्टिविटी है कि प्रोजेक्ट सुलेख के तहत बच्चों को पूरे जिले में लगभग 20,000 बच्चों को लाभान्वित इससे अभी तक किया जा चुका है और पूरे जिले में हम इस तरह की 10,000 स्टडी बेंच देने का टारगेट है, जिसमें से लगभग 5,000 बेंचें अभी तक की जा चुकी है। बाकी 5,000 के लिए भी बातचीत चल रही है। ये विभिन्न स्कूलों में जाएंगे और बच्चों की हैंडराइटिंग उनका व्यक्तित्व का प्रमुख एस्पेक्ट होता है, उसको सुधारने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है।
0: प्रदेश के कई हिस्सों में हो रही बारिश से मौसम सुहावना बना हुआ है। पूर्वी और दक्षिणी इलाकों में अच्छी बरसात से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, वहीं किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। ये बारिश खरीफ फसलों के लिए लाभदायक मानी जा रही है। राजधानी जयपुर में बादल छाए हुए हैं। अलवर शहर और आसपास के क्षेत्रों में आज सुबह तेज बरसात हुई। भरतपुर में गरज के साथ झमाझम बारिश हुई, जिससे कई स्थानों पर जलभराव हो गया। बारा में देर रात अच्छी बरसात हुई। भीलवाड़ा और जैसलमेर में भी हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहने के आसार हैं। वहीं दक्षिणी और पश्चिमी राजस्थान में बरसात की गतिविधियों में कमी आ सकती है। जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से प्रदेश भर में कैच द रेन अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। जल शक्ति मंत्रालय के इस अभियान में करौली जिले में व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: जिला प्रशासन के निर्देशन में जल संसाधन, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग द्वारा पौधरोपण, श्रमदान, जल स्रोतों की सफाई, वर्षा जल संचयन और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिला मुख्यालय स्थित रंगमा तालाब, ममचारी बांध, पांचना बांध तथा जिले के अन्य तालाबों, एनीकटों और जल संरक्षण संरचनाओं के संरक्षण और रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अभियान के तहत आमजन को वर्षा की प्रत्येक बूंद को संजोने और जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का संदेश दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य भूजल स्तर में सुधार कर भविष्य के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करना है। बाकी वैली शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
0: राजस्थान विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए यूरेट पीजी 2026 के ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाकर 8 अगस्त कर दी है। विश्वविद्यालय

0: में प्रशासन ने बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के अनुरोध को देखते हुए ये निर्णय लिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित। एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए 16 अगस्त तक ईकेवाईसी करवाना अनिवार्य। राजस्थान पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी और मानव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया। और प्रदेश भर में 11,500 शहरी सेवा शिविरों के माध्यम से 53,000 से अधिक पट्टे जारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारो चैनल है। 9:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम लोक संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए अब्दुल गनी और साथियों की आवाज में ये लोकगीत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत आकाशवाणी बिकने का ये ढोल मंचन है। 9:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: CIET प्रस्तुत करता है उमंग। आप सभी श्रोताओं को इंग्लिश का नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सबका उमंग कार्यक्रम में।
1: अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सुविचार जो हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल और प्रियंका जी ने। लिखते हैं,
2: कुएं में उतरने के बाद बाल्टी झुकती है लेकिन झुकने के बाद भर कर ही बाहर निकलती है। जीवन का गणित भी कुछ ऐसा ही है, जो विनम्रता से झुकता है वो अवश्य कुछ न कुछ लेकर ही उठता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर और प्रेरणादायी विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। पहला संदेश हमें मिला है चरौदा बार नवापारा अभ्यारण्य जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर का।
2: और अगला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोहतीन बाई मानिकपुरी जी का। वो लिखते हैं,
1: जय गुरुदेव, जय गुरुकुल, उमंग टीम को पल पल बंदगी, विमलेश मैडम जी और अजीत साहेब जी, जय जोहार बंदगी जी। उमंग कार्यक्रम है लाखों में एक, आप हमारे गुरु के समान हो, हर सप्ताह नई नई जानकारी हमें सिखलाते हो, अहो भाग्य हमारा। उमंग कार्यक्रम एक पाठशाला है जिसे सुनकर जीने की कला हमें आ जाती है। इस सप्ताह बहुत ही खूबसूरत गीत, कविता, फूलों से नित हंसना सीखो, खेल गीत, भारत प्यारा, टिम टिम तारा आपने सुनाया, ये सभी गीत हमें बहुत पसंद आए। धन्यवाद साहेब जी।
2: जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्रेरणादायक संदेश भेजने के लिए।
1: अगला संदेश हमें मिला है माँ बम्लेश्वरी धाम सांकरा सोमनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंती देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार और रुद्रांश प्रताप साहू।
2: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी।
1: और कंडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल कुमारी।
2: और राधानगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। जैसा हर बार हम निवेदन करते हैं आज भी करेंगे कि उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए लगातार।
2: जी
1: एक बार फिर से स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी, क्या है हमारी आज की चर्चा का विषय?
2: अजी जी, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों को प्रभावित कर रहा है। चलिए मैं श्रोताओं को कुछ संकेत देती हूँ।
1: जी
2: अंदाजा लगाना है कि हम किस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं।
1: जी तो विमलेश जी, आपने कहा मैं संकेत देती हूँ, तो संकेत दीजिए।
2: मेरे संकेत कुछ प्रश्नों में छिपे हुए हैं। पहला प्रश्न है, श्रोताओं क्या आपने कभी अपने मोबाइल से कोई प्रश्न पूछा है और देखा है कि तुरंत उत्तर मिल गया? क्या आपने मोबाइल या कंप्यूटर को कोई पोस्टर बनाने की कमांड दी और देखा कि तुरंत आपके लिए पोस्टर बनकर तैयार हो गया? यदि हाँ तो बताइए कैसे संभव हो पाया।
1: या फिर श्रोताओं, क्या आपने मोबाइल या कंप्यूटर में किसी भाषा का अनुवाद कुछ ही सेकंड्स में होते देखा है? भला ये कैसे संभव हो जाता है?
2: अजीत जी, यदि हमारे श्रोता मित्रों का ये अंदाजा है कि AI या कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संभव हो पाता है तो एकदम सही है। जी हाँ, हमारी आज की चर्चा का विषय है कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बता दें कि इसका आविष्कार अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी ने 1955 में किया था। लेकिन अजीत जी, एक ये प्रश्न उठता है कि कृत्रिम इंटेलिजेंस क्या है?
1: विनेश, यदि सरल शब्दों में कहें तो AI या कृत्रिम इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक है जो कंप्यूटर या मशीनों को इस प्रकार से काम करने में सक्षम बनाती है कि वे कुछ हद तक मनुष्यों की तरह सीख सकें,
2: जी
1: समझ सकें और निर्णय लेकर समस्याओं का समाधान भी कर सकें।
2: जी अजीत जी, आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता के द्वारा बहुत कुछ किया जा सकता है। आज AI शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, परिवहन, चिकित्सा, विज्ञान, उद्योग जैसे अनेक क्षेत्रों में बड़ी उपयोगी सिद्ध हो रही है। शिक्षा के

0: विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अध्ययन सामग्री उपलब्ध करा सकती है।
1: और तो और विमलेश जी, इतनी ही नहीं, ये कठिन विषयों को भी सरल भाषा में समझा सकती है।
0: शिक्षा के क्षेत्र में AI विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अध्ययन सामग्री उपलब्ध करा सकता है।
1: और विमलेश जी, इतना ही नहीं, ये कठिन विषयों को भी सरल भाषा में समझा सकता है
0: जी।
1: अभ्यास प्रश्न तैयार कर सकता है और नई भाषा सीखने में भी सहायता कर सकता है
0: जी।
1: इससे सीखना अधिक रोचक और व्यक्तिगत बन जाता है।
0: ये सब बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन श्रोताओं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं
1: जी।
0: हर नई तकनीक की तरह AI के साथ भी कुछ चुनौतियाँ जुड़ी हुई है। सबसे बड़ी चुनौती है गलत या भ्रामक जानकारी
1: जी।
0: AI कभी कभी ऐसा उत्तर दे सकता है जो सुनने में तो सही लगे लेकिन पूरी तरह से सही ना हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी की विश्वसनीय स्रोतों से अवश्य जांच कर लेनी चाहिए
1: जी। बिल्कुल सही श्रोता। दूसरी एक और बहुत बड़ी चुनौती
0: जी,
1: वो चुनौती नकल करने की प्रवृत्ति। विद्यार्थी भी कई बार अपना गृह कार्य, प्रोजेक्ट या निबंध पूरी तरह AI से बनवा लेते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत हानिकारक है
0: जी,
1: क्योंकि इससे उनकी अपनी सोचने, लिखने और समस्या समाधान की क्षमता प्रभावित हो सकती है और आजकल ऐसा होने भी लगा है।
0: तो श्रोता मित्रों, हमें याद रखना चाहिए कि AI सीखने का साधन है, सीखने का विकल्प नहीं
1: जी।
0: तो अब बात करते हैं कि AI का जिम्मेदारी से उपयोग कैसे करें। सबसे पहली बात, AI का उपयोग सीखने के लिए करें, केवल उत्तर पाने के लिए नहीं। यदि कोई विषय समझ में ना आए तो आप AI से कहें कि वो सरल भाषा में विषय को समझाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समझने के बाद आप उसे अपने शब्दों में लिखें
1: जी, ये बहुत जरूरी है। साथ ही साथ हमें एक और बात पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि AI से मिली जानकारी का मिलान विश्वसनीय पुस्तकों, शिक्षकों या प्रामाणिक स्रोतों से जरूर करें
0: जी।
1: और सबसे महत्वपूर्ण बात, AI पर आश्रित ना हो जाएं।
0: बिल्कुल,
1: अपनी रचनात्मकता को बनाए रखें। चित्र बनाना, कविता लिखना, कहानी गढ़ना और नए विचार सोचना, ये सब मानव की विशेष क्षमताएं हैं
0: जी। हाँ श्रोता मित्रों, तो AI का उद्देश्य आपकी जगह सोचना नहीं, लेकिन आपको एक बेहतर ढंग से सोचने में सहायता प्रदान करना है
1: जी।
0: AI हमारी सहायता कर सकता है, लेकिन हमारी कल्पना शक्ति का स्थान नहीं ले सकता। ये सच है कि हर नई तकनीक अपने साथ अवसर भी लाती है और जिम्मेदारी भी
1: जी। हाँ, जैसे एक उदाहरण लीजिए, जिस प्रकार बिजली का सही उपयोग हमारे जीवन को आसान बनाता है
0: बिल्कुल,
1: और गलत उपयोग नुकसान पहुंचा सकता है
0: जी।
1: इसी प्रकार AI भी एक बेहद शक्तिशाली साधन है, लेकिन इसका लाभ तभी मिलेगा जब हम इसका उपयोग समझदारी, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ करेंगे। आइए हम इस तकनीक से डरे नहीं, बल्कि उसे समझें, उससे सीखें, उसका उपयोग समाज और देश के विकास के लिए करें।
0: और अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
1: तो श्रोताओ, आज का हमारा प्रश्न है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या AI का आविष्कार किसने किया था। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: कृत्रिम बुद्धिमत्ता या AI का आविष्कार किसने किया था।
1: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। आप हमारे ईमेल पर भी यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
1: YouTube में जाकर टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
0: और एक और जरूरी सूचना आपको दे दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं हमारा पहला कार्यक्रम, शीर्षक है पेड़ की बात।
0: कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित यह कार्यक्रम महान भौतिक और वनस्पति विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बसु के एक विज्ञान लेख पर आधारित है, जिसमें उन्होंने पेड़ पौधों के बारे में बड़ी रोचक जानकारी दी है।
1: पेड़ की बात।
2: साथियों नमस्कार, हम सब प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के बारे में जानते हैं। उनका बचपन प्रकृति का अवलोकन करते हुए बीता। पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से प्रेम करते हुए उनकी शिक्षा आरंभ हुई। जीव विज्ञान, भौतिकी और वनस्पति विज्ञान में उनकी महारत थी। उन्होंने बांग्ला भाषा में बच्चों के लिए बहुत से विज्ञान कथाएं और लेख भी लिखे। जगदीश चंद्र बसु ने कई विज्ञान कथा

0: रखी हैं, जिनमें से मेरे बेशेर गोल्फो यानी लापता की कहानी 1896 में लिखी गई और बाद में 1921 में पलतक तूफान यानी भगोड़ा समुद्री तूफान के रूप में प्रकाशित की गई, जो बांग्ला विज्ञान कथा साहित्य की शुरुआती कृतियों में से एक है। उन्हीं विज्ञान लेखों में से एक रोचक लेख है पेड़ की बात। जगदीश चंद्र बसु को बच्चों से बहुत प्रेम था। उन्होंने अपने घर में भी प्रयोगशाला बना रखी थी। छुट्टियों के दिनों में उनके पास बहुत से बच्चे विज्ञान के प्रश्नों के साथ आते रहते थे। एक दिन कुछ बच्चों ने सोचा कि क्यों ना उनके पास चले। तो आइए दोस्तों, हम भी चलते हैं बच्चों के साथ सर जगदीश चंद्र बसु के पास और सुनते हैं ये विज्ञान वार्तालाप।
1: चलो चलो
2: सर से हम पेड़ पौधों के बारे में पूछेंगे।
3: नमस्कार सर।
4: नमस्कार। और इतने सारे बच्चे तो अब जरा अपना इंट्रोडक्शन दो।
3: सर मैं इशिता, मैं हूँ चेताली,
5: मैं शुभेंदु और मेरा नाम है इंदु
6: और मैं सोमेश।
4: बहुत अच्छा। तो बच्चों ये बताओ कि तुम लोगों का आना कैसे हुआ?
3: सर हम आपसे पेड़ पौधों के बारे में जानना चाहते हैं।
4: देखो पेड़ बनने की कहानी सबसे पहले शुरू होती है बीज से।
5: जी सर, मैंने अपने खेत में बीज को बोते हुए देखा है। सर फिर क्या होता है?
4: फिर होता यह है बच्चों कि बीज मिट्टी में पड़ा रहता है लंबे समय तक। जैसे ही वर्षा की बूंदें पड़ती हैं और मिट्टी थोड़ी गीली हो जाती है ना, बीज मानो सोचता है।
5: बीज सोचता है? क्या सोचता है?
4: वो सोचता है अब मिट्टी में पड़े रहने का समय नहीं है। उसे लगता है मानो प्रकृति उसे बड़े प्यार से पुकार रही हो। जैसे
7: उठो उठ जाओ, अब सोने का समय नहीं है, बाहर निकलो, सूर्य को देखो, अपने आसपास देखो, सब कुछ कितना सुंदर है।
3: वाह कितनी सुंदर बात है।
4: अच्छा एक बहुत मजेदार बात तुम लोगों को बताता हूँ बच्चों। देखो जब अंकुर फूटेगा और डालियां निकलेंगी तो जड़ हमेशा नीचे की ओर ही जाएगी और तना ऊपर की ओर ही उठेगा। जानते हो एक बार मैंने एक प्रयोग किया था, एक गमले में क्या था बताओ?
8: पौधा।
4: शाबाश। परीक्षण करने के लिए मैंने कुछ दिनों तक पौधे को उल्टा लटकाए रखा।
8: उल्टा?
4: हाँ उल्टा। और जानते हो क्या हुआ? पौधे का सिर नीचे की तरफ लटका रहा और जड़ ऊपर की ओर।
5: फिर क्या हुआ?
4: फिर दो तीन दिनों के बाद मैं क्या देखता हूँ कि उसकी सारी पत्तियाँ और डालियाँ टेढ़ी होकर ऊपर की ओर उठाई और जड़ घूमकर नीचे की ओर लटक गई। ऐसा लगा जैसे पौधे को भी प्रकृति का ये भेद मालूम हो गया हो। है ना रोचक बात?
5: यह तो बड़ी रोचक बात है सर। सर एक बात बताइए, क्या पेड़ पौधे भी भोजन करते हैं?
4: हाँ क्यों नहीं। देखो हमें जिस प्रकार भोजन की जरूरत होती है ना, हमारे दांत होते हैं, है ना?
3: जी सर।
4: इसलिए हम भोजन को चबा चबा कर खाते हैं। लेकिन पेड़ पौधों के दांत नहीं होते, इसलिए वो केवल तरल द्रव्य या वायु से ही भोजन ग्रहण करते हैं। वो जड़ के द्वारा मिट्टी से रसपान करते हैं।
3: रसपान कैसे करते
4: हैं? एक उदाहरण देता हूँ, जैसे पानी में चीनी डालने पर चीनी घुल जाती है ना?
3: जी सर।
4: वैसे ही मिट्टी में पानी डालने पर उसमें मिट्टी के बहुत से पोषक तत्व घुल जाते हैं। पेड़ पौधे उसी पोषक तत्व को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं।
3: अच्छा अब समझ आया।
4: तो अब इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए चलो चलते हैं अपनी प्रयोगशाला में।
8: जी सर।
3: यहाँ तो कितने सारे पत्ते बीज पौधे के तने रखे हुए हैं। अरे कितनी बड़ी प्रयोगशाला है।
5: यहाँ पे तो बहुत तरह के पत्ते हैं।
6: ये तो बहुत सुंदर पत्ते हैं, बिल्कुल हरे हरे। देखो इतना बड़ा पेड़।
5: अरे उधर देखो सूखे पत्ते भी हैं।

0: बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।
1: और ये मशीन क्या है? चलो चलो सर से पूछते हैं।
2: इसे कहते हैं सूक्ष्मदर्शी यंत्र यानी माइक्रोस्कोप।
0: माइक्रोस्कोप?
2: हाँ, अब इसका कमाल देखो। इशिता तुम इधर आओ बेटा, देखो।
3: जी सर।
2: हाँ देखो, अब मैंने क्या किया कि इस माइक्रोस्कोप के इस लेंस के ऊपर पौधे के इस तने को रखा। हाँ आओ देखो, देखो बेटा देखो, इसमें देखो क्या दिखाई दे रहा है।
0: अरे वाह, मुझे तो इसमें बहुत सारी छोटी छोटी नैया दिखाई पड़ रही है।
2: हाँ शाबाश।
0: हाँ नैया तो मुझे भी दिखाई पड़ रही है इसमें।
1: मुझे भी देखना है सर। मैं भी देखूं?
2: हाँ आओ आओ।
0: मुझे भी देखना है।
2: देखो क्या दिखाई दिया?
0: इसमें तो बहुत सारी नलियाँ हैं।
2: शाबाश, बिल्कुल सही, लाखों पाइप हैं।
0: पाइप?
2: हाँ, यानी जड़ मिट्टी से जिस पोषक तत्व को सोखती है ना, वो पोषक तत्व इन्हीं पाइपों के द्वारा पूरे पेड़ तक पहुँचते हैं।
1: अच्छा, ये बात है।
2: हाँ, अब देखो जैसे हमारी नसें होती है ना, बिल्कुल यही बात है।
0: सर, पौधे वायु और सूर्य के प्रकाश से भी भोजन ग्रहण करते हैं, वो कैसे?
2: वृक्ष के पत्ते हवा से आहार यानी अपना भोजन ग्रहण करते हैं। क्या कभी तुम लोगों ने सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से पत्तों को देखा?
0: नहीं सर।
2: और अब देखते हैं पत्ते को। कौन सा पत्ता लें? ये वाला पत्ता लेते हैं और इसे मैं यहाँ पर रखता हूँ माइक्रोस्कोप के इस लेंस के ऊपर। हाँ, अब देखो कौन देखेगा सबसे पहले। शुभेंदु तुम देखो, क्या दिखाई दिया?
0: अरे वाह, कितना अद्भुत है। मुझे जो ऐसा लग रहा है जैसे इस पत्ते में अनगिनत छोटे छोटे मुंह हैं।
2: बिल्कुल ठीक। तो बच्चों, पत्तों के इन्हीं छोटे छोटे मुखों और जड़ों से पेड़ पौधे हवा से नमी ग्रहण करते हैं और सभी पोषक तत्वों को इकट्ठा करके अपना भोजन तैयार करते हैं। और जानते हो इसे क्या कहते हैं? इस क्रिया को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। अच्छा चलो बच्चों, अभी एक और प्रयोग करते हैं। तैयार हो तुम लोग सब लोग?
0: जी सर।
2: तो अब सभी लोग बिल्कुल सावधान मुद्रा में खड़े हो जाओ, ऐसे। हाँ शाबाश। और अब सब लोग एक लंबी सांस लो और अब छोड़ो। अब बच्चों ये बताओ कि तुमने सांस लेते समय क्या लिया और सांस छोड़ते समय क्या छोड़ा? इशिता तुम बताओ।
3: सर, टीचर बताती है कि हम सांस लेते समय मुख्य रूप से ऑक्सीजन लेते हैं।
2: शाबाश। और शुभेंदु तुम बताओ, हम सांस छोड़ते समय क्या छोड़ते हैं?
0: सर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
2: हाँ।
0: लेकिन सर, ये तो जहरीली होती है।
2: बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे। देखो बेटा, मनुष्य ही नहीं, पृथ्वी के सभी सांस लेने वाले जीव जंतु ऐसा ही करते हैं। अच्छा जरा सोचो, अगर ये जहरीली हवा पृथ्वी पर इकट्ठी होती रहे तो क्या होगा?
3: पृथ्वी पर जीवन नष्ट हो जाएगा।
2: सही कहा तुमने, शाबाश। लेकिन बेटा जरा विधाता की करुणा और चमत्कार तो देखो। जो गैस हम जीव जंतुओं के लिए जहर है, पेड़ पौधे उसी का सेवन करके उसे पूर्णतया शुद्ध कर देते हैं, यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर उसे ऑक्सीजन में बदल देते हैं, जिससे हमारा जीवन चलता है।
0: यानी यदि पेड़ पौधे नहीं होते तो
4: हम नहीं होते।
2: शाबाश। तो बताओ बच्चों, कैसी लगी आज की बातचीत? अब से एक काम जरूर करना।
4: क्या सर?
2: जब भी किसी पेड़ पौधे को देखना ना, तो उसे बोलना
4: थैंक यू। थैंक यू जी।
2: शाबाश।
5: तो साथियों, अब हम किसी भी पेड़ या पौधे को देखकर धन्यवाद तो जरूर कहेंगे, लेकिन सिर्फ धन्यवाद से ही काम नहीं चलेगा। बात तो तब है जब हम सिर्फ धन्यवाद ही ना कहें, बल्कि उनका पूरा ख्याल भी रखें, क्योंकि वो हैं तो हम हैं।
6: पेड़ की बात। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम साथी।

0: एक बालक था, उसकी उम्र 11 वर्ष थी। एक दिन वो अपने पिताजी के पास गया और बोला,
1: पिताजी मुझे 5-7 रुपए दे दीजिए।
0: पिताजी ने कहा, 5-7 रुपए? तुम ये रुपए किस लिए मांग रहे हो? बालक बोला,
1: मुझे इन रुपयों की जरूरत है।

पिताजी ने बालक को 5 रुपए दे दिए, लेकिन वो जानना चाहते थे कि बालक रुपए किस काम में खर्च

जी भी उनके पीछे पीछे गए। बाजार में पुस्तकों की एक दुकान थी, वहां दोनों रुक गए। बालक ने कुछ पुस्तकें खरीदी और अपने साथी को दे दी। साथी को इन पुस्तकों की बहुत जरूरत थी। पिताजी सब कुछ समझ गए। वे प्रसन्न थे।

साथियों की सहायता करना बहुत अच्छी बात है। मैंने तुम्हें पुस्तकें खरीदते देख लिया था। इस बालक का नाम था चितरंजन दास। चितरंजन दास ने देश की बहुत सेवा की। लोग इन्हें देश बंधु चित्र

कार्यक्रम विशेष संपादक संयुक्त कालोदरा और सत्येंद्र वर्मा कार्यक्रम निर्देशन प्रभु दयाल खट्टर कलाकार नीरज यादव अर्जुन अली खान और मिताली ध्वनिंकन सतीश लाडे और दीपक पांडे निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना

0: आरएमएसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु
0: चेतना
1: और मुकुल के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी उमंग आकाशवाणी बिकानेर का ये ठुला मारु चैनल है। मेरी वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए फिल्म दिल तो बच्चा है जी फिल्म से गीत, आवाज़ है मोहित चौहान की।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना तो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेना के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना।

0: पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है

आपने सुना वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई फिल्म से गीत, आवाजें थी मोहित चौहान की। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत अरमान मलिक की आवाज में फिल्म हिट स्टोरी 3 से।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म एनिमल से गीत।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान
1: जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुकाइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़े आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।

0: आपने सुना फिल्म धड़क 2 से गीत, आवाज थी अरिजीत सिंह की। अब आप सुनिए रेड 2 से जुबिन नौटियाल की आवाज में गीत, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
1: शनिवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म सिम्बा से।

सिम्बा फिल्म से अभी आपने गीत सुना, स्वर थे अरिजीत सिंह, आशीष कौर और कुमार सानू के। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में अब तक आप सुन रहे थे नई फिल्मों से गीत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 11 बज रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत के कार्यक्रम में भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम की पहली पेशकश फिल्म का नाम, शोर स्वर लता मंगेशकर और मुकेश के।

लता मंगेशकर, मुकेश और मोहम्मद रफी का गाया ये गीत अभी आपने सुना फिल्म श्री 420 से। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, फिल्म का नाम है सफर, स्वर है मुकेश का।

जीनत फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। स्वर था जोहराबाई अंबावाली और कल्याणी का। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, फिल्म का नाम है मिस्टर आशिक, स्वर है कुमार सानू का।

फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। स्वर थे लता मंगेशकर और बबला मेहता के। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए। फिल्म का नाम है अकेले हम अकेले तुम। स्वर है कुमार सानू और अलका याग्निक के।

फिल्म राजा रानी का ये गीत अभी आपने सुना, स्वर थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर के। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, फिल्म का नाम है फूल और कांटे, स्वर है अलका याग्निक और कुमार सानू के।

स्वयंवर फिल्म में मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के गाए इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम में आप सुन रहे थे भूले बिसरे गीत। श्रोताओं, बारिश का मौसम चल रहा है, ऐसे में वर्षा जल के उचित भंडारण के साथ में वृक्षारोपण भी जरूर करें। जन्म के समय नामकरण में होने वाले हवन में जब लकड़ी की जरूरत पड़ती है और अंतिम संस्कार तक भी हमें लकड़ी की आवश्यकता होती है, और ऐसा कहा गया है कि एक पेड़ एक व्यक्ति की पूरे जीवन भर की ऑक्सीजन की डिमांड की पूर्ति करता है और उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात भी वह उसे उतनी लकड़ी प्रदान करता है जिससे कि उसकी अंतिम संस्कार की क्रिया हो सके। ऐसे में श्रोताओं, पेड़ों का हमारे जीवन में अतुलनीय योगदान है, अतुलनीय महत्व है। वृक्षारोपण जरूर करें और हमारी मरुभूमि में तो वर्षा जल को पालर पानी की संज्ञा दी जाती है और उस पालर पानी को मिनरल्स से भरा हुआ भी माना जाता है, तो ऐसे में आप वर्षा जल के भंडारण के साथ उस जल का वर्ष पर्यंत उपयोग कर सकते हैं खान पान में। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढुलामारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर दिन के 12 बजने को है। प्रस्तुत है हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।

0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा की बैठक दोपहर 2 बजे तक और राज्यसभा दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठा दिया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान उचित नहीं है।
1: लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच

0: सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी सहमति असहमति व्यक्त करें, लेकिन सदन चर्चाओं के लिए है। चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। मैं सबको पर्याप्त अवसर दूंगा। सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
1: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति रही। सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने सदन के पटल पर दस्तावेज रखे। आवासन और शहरी मामलों से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट सदन में पेश की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच शून्यकाल शुरू किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
2: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओपी के नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन में उठाते रहते हैं।
1: लोकसभा में आज बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल ये विधेयक पेश किया था। इस विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्य प्रणाली के अनुरूप बनाना है। वित्त मंत्री आज लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 तथा विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 भी पेश करेंगे। इस बीच राज्यसभा में आज जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस विधेयक को पेश करेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज संसद भवन में आयोजित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अन्य नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने का आखिरी मौका दिया गया है। श्री ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और कई खाड़ी देशों के कूटनीतिक आग्रह के बाद नियोजित सैन्य हमलों को रोक दिया गया है। श्री ट्रंप ने होर्मुज जलडंगू मध्य को फिर से खोलने के लिए बातचीत जारी रखने की पहल को पहला चरण और ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण पर ध्यान केंद्रित किए जाने को दूसरा चरण बताया। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट आज दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो गया है। पुरुष सिंगल्स में भारत के तुषार सुमेर जापान के शोगो ओकावा से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगी। महिला डबल्स में प्रिया कुंजेंगबा और श्रुति मिश्रा तथा पुरुष डबल्स में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय आज कोर्ट में उतरेंगे। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। महानदी और अन्य प्रमुख नदियों का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। केरलम के 14 में से 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन।

मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलमारू चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

8 बजे आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से संसद समीक्षा और संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे हमारे दिल्ली केंद्र से।

हमारे जयपुर केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार है। शाम 6:40 पर आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी और शाम 7 बजे आप सुनेंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

दिन के 1:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम घर आंगन। कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे कैच द रेन, बारिश को वही इकट्ठा करें जहां वह गिरती है, फिरोज शाह मेहता जयंती, हुनर है तो कदर है, मित व्ययता का पाठ बच्चों को जरूर पढ़ाएं। कार्यक्रम के आज के अंक की प्रस्तुति होगी खुशबू हर्ष और रेखा आचार्य की।

शाम 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युगवाणी। कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा विकसित भारत में युवाओं की भूमिका। लघु जानकारी के विषय रहेंगे फिरोज शाह मेहता जयंती, केरला देव राष्ट्रीय उद्यान, मानसून की प्रक्रिया और भारत युवावस्था में फिटनेस का महत्व। कार्यक्रम में आप सुनेंगे कहानीकार श्रीमती आरती छंगानी की कहानी शीर्षक पुन्याई, प्रस्तुति श्री रेवंत राम लेखा, संयोजन श्री अमित सिंह का।

शाम 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्रामीण जगत। कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे मूंग उत्पादन की उन्नत तकनीकें, पौधारोपण के लिए जन जागरण, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, स्वच्छता से उत्तम स्वास्थ्य। यह था कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे जयपुर केंद्र से प्रसारित सिंधी कार्यक्रम।

नमस्कार साथियों, हाजिर आया मां वीना अज जो सिंधी प्रोग्राम खड़ी अज आई महीने जो पहलो मंगल अज अस तवा जे लाए खड़ी आया मजेदार ए सिखिया देने वालों नाटक

0: अरे भाई मंगा तू कह वक्त अड़ी गाल शुरू करे चली नई की बस अरे यार खिलंदे खिलंदे पेट सूर करे रहे भाई। हाँ वठ मिठाई खा यार तू मिठाई खा।
1: ये मिठाई वाली केड़ी खुशी में?
0: अरे यार तू मुझे घर आए इतने बैठे खिलाए खिलाए मुझे पेट में सूर करे चली हाँ भला पेंजे घर बनी रहे वही इन्हें खुशी में मिठाई का
1: पेंजे घर बनी रहे इन्हें खुशी में।
0: अरे यार मंगाराम अखबार पढ़ण जो भी एक अलग ही मजो है। अरे जेस ताई सजी अखबार पढ़ी न वठू बुख ही की न लगंदी आए।
1: यो तू बिल्कुल ठीक चई रहियो यार बिल्कुल सही चई रहियो आई। अरे वे चवंदा ना पसंद पंहिंजी पंहिंजी ऐं ख़्याल पंहिंजा पंहिंजा।
0: तू कुछ भी चओ मंगा अखबार पढ़ण सां ॿियो कुझु न त दिमाग जी कसरत त थी वेंदी आहे। अरे मंगाराम ॿुध ॿुध ख़बर ॿुध
1: ॿुधाए
0: ससु सहुरे ॾाजे जी लालच में पंहिंजी नुंहुं खे जान सां ख़तमु करे छॾियो सत्यानाश
1: थियसि। नुंहुं खे ख़तमु कयो यार शोभा इहा ख़बर तूं वरी पढ़ी ॿुधाए चङी तरह पूरी ख़बर ॿुधाए यार।
0: अरे यार मंगाराम छा पूरो पढ़ी ॿुधाए सभु तरफ़ इहा ई भाए लॻी रही आहे ॾाजो ॾाजो सिर्फ़ ॾाजो खपे हाणे हिन में वरी हुन वेचारी न्याणीअ जो कहिड़ो कसूर। छा ज़मानो अची वियो आहे मंगाराम ग़रीब इंसान केतिरा न ॾुख सही पंहिंजी औलाद खे पाले थो पोसे थो पढ़ाए लिखाए थो कहिड़ा कहिड़ा न सुपिना थो ॾिसे पंहिंजी औलाद वास्ते कहिड़ा कहिड़ा अरमान हूंदा आहिनि हुन ग़रीब माउ पीउ जी दिलि में पंहिंजी न्याणियुनि लाइ पर ॾेती लेतीअ जी मार हर इंसान खे लाचार बेबस ऐं कमज़ोर बणाए रखियो आहे। वीचारो कर्ज़ खणी बि पंहिंजी धीउ खे सुखी ॾिसण थो चाहे पर इहे पैसे जा लालची गिद्ध गिद्ध वांगुरु इंसान जा खून पी रहिया आहिनि।
1: बिल्कुलु सच चई रहियो तूं। अलाए छा चइजे ज़माने खे हाणे चइनि पासे लॻनि चए थो ॾेती लेती जी बाहि हर माण्हू शादीअ में ॾेती लेती लटा रहियो आहे मूंखे टीवी खपे मूंखे कार खपे मूंखे ही खपे मूंखे उहो खपे कमाल आहे यार मूंखे सम्झो नथो अचे त इहे माण्हू सोचनि कोन त हुनजे घर में न्याणी आहे पर खे सम्झाए हिननि चरनि खे
0: मां त भाई कसम खाई चुको आहियां रमेश जी शादीअ में न त मां ॾाजो वठंदुसि ऐं न ई निमू जी शादीअ में नाणो ॾींदुसि।
1: वेरी गुड ॾाढो सुठो शोभराज ॾाढो सुठो मां तुंहिंजा ख़्याल ॿुधी तमामु ख़ुशि थी वियो आहियां। तो जहिड़े इंसान ते असांजे समाज खे फ़ख्रु हुअणु खपे। अरे भाउ यार काफ़ी टाइम थी वियो आहे हाणे मां निकिरां थो यार दुकान खोलण में टाइम थी वियो आहे ठीकु आहे
0: हलो यस अच्छा अच्छा निमू सां हा हा होल्ड कजो निमू ओ निमू पुट
2: जी डैडी
0: तुंहिंजो फोन अथई पुट
2: फोन हा हलो हा हा मां निर्मला केर अरे पुशी तू दिल्लीअ मां कॾहिं आई छा ओफो ऐं मां तोखे अॼु हफ़्ते खां पोइ यादि अचां छा हा रमेश जी नाटक सुभाणे हा हा सते बजे आहे हा यस यस ज़रूरु अचिजां ज़रूरु ठीकु आहे ओके सी यू
1: निमा, निमा, निमा।
2: अरे अशोक अॼु तू ॾाढो परेशान ऐं थकियल थी नज़र अची अरे नाटक त अञा सुभाणे आहे पर तुंहिंजी दिलि त अॼु ई पई थी सुस्त नज़र अचे
1: अरे तोखे छा ॿुधायां निमो सत्यानाश थी वियो आहे सवा सत्यानाश न न साढा सत्यानाश अरे निमो मूंखे त उथंदे वेहंदे जागंदे सुम्हंदे बस थिएटर में रुगो माण्हू ई माण्हू नज़र ईंदा आहिनि निमो जेके असांजे स्वागत में पंहिंजे हथनि में जूता चंपलियूं ऐं टमाटा खणी करे बीठा आहिनि।
2: वेरी गुड ही सीन जोरदार वेंदो
1: अरे तोखे सीन जी लॻी आहे निमो असांखे पंहिंजी जान जी पई आहे।
2: वॉट आर यू सीरियस
1: यस
2: पर ॻाल्हि छा आहे
1: अरे निमो असांजे नाटक जी हीरोइन मंजूअ खे
2: छा थियो मंजू खे
1: अरे

0: मलेरिया थी पियो आहे, बुखार 104 105। अड़े अब्बा रे, हाणे सुभाणे जे नाटक जो छा थींदो?
1: ओफो, मूंखे लॻे थो बुखार हुन मंजूअ खे न तोखे थियो आहे। रामू, ओ रामू, हिकु ग्लास बर्फ़ जो खणी अचु।
0: अरे निमो, तोखे त रुगो मज़ाक सिजी रही आहे। अरे असांजी दिल खां पुछ, असांजी कहिड़ी हालत बणजी रही आहे निमो।
2: हा वठो वेम साहब, बर्फ़ जो थधो थधो पाणी पियो।
1: हूअ अशोक, तुंहिंजे हीरोइन जी प्रॉब्लम हल थी सघे थी।
0: वॉट, कीअं निमो?
1: छोकिरी जो मेकअप कराए ऐं रामू हिन रोल लाइ बिल्कुलु तयार थी वेंदो। कीअं रामू?
2: अरे बिल्कुलु मेम साहब, छो न, नाटक करण में असां बि कंहिंखां घटि थोरी आहियूं। छोकिरीअ जो मेकअप करे त मूं बिल्कुलु हिकदमि कैटरीना कैफ लॻंदुसि।
0: अरे भॻवान जे नाले सां हाणे चुप थी वञो।
3: ओह, अमिताभ बच्चन हिते वेठो आहे। अरे भाई, तुंहिंजी हीरोइन त नाटक में कमु करण लाइ मना करे रही आहे मलेरिया जे बहाने।
0: अरे बहानो न रमेश, हले हले हले हले, हाणे तोखे छा ॿुधायां, हुनखे सचमुच मलेरिया थी वियो आहे रमेश। अञा हाणे हाणे मां हुनजे घरां थी आयो आहियां।
3: अरे यार, उहो सभु त ठीकु आहे, पर सुभाणे जो छा थींदो? केतिरा दफ़ा मना कयो तव्हां कि नाटक अगरि करणो हुजे त सोचे सम्झी कंदो कर, हाणे भुगत।
0: अरे पर इहो सभु तूं कंहिंखे चई रहियो आई?
3: पंहिंजे पाण खे। यार, नाटकनि में हिकु त छोकिरियुनि जो पहिरीं सां अकाल लॻो पिया, जीअं तीअं छोकिरी तयारु थिए थी ऐं मौके ते हुन खे मलेरिया थी थो हुजे, पलंग पकड़े सुम्ही थी रहे। केतिरा भेरा चयो तव्हां त हिन नाटकनि जे चकर में न पओ न पओ न पओ, पर तूं आई की?
0: वाट, मां?
3: अरे तोखे न, मां पंहिंजे पाण खे चई रहियो आहियां।
0: अच्छा,
3: कीअं थींदो ॿी हीरोइन जो? अरे तूं चुप छो आई, कुझु सोच।
0: अरे छा सोचां यार रमेश, छा सोचां, मुंहिंजो त दिमाग़ ई कमु नथो करे।
3: आइडिया?
0: आइडिया
3: हा, इज़त बची सघे थी असांजी। निमो, निमो, तूं तूं असांजी इज़त बचाए सघी थी।
1: मां? मां? मां एक्टिंग? अरे मूंखे त एक्टिंग जी एबीसी ख़बर कोन्हे।
0: यस यस यस रमेश, बिल्कुलु यस, थी सघे थो। निमो, हिन में काई कठिनाई वारी ॻाल्हि कोन थी। ऐं पोइ वरी तुंहिंजी त रिहर्सल बि ॾिठल आहे न निमो। निमो प्लीज।
2: हा हा मेम साहब, तव्हां ई कयो प्लीज।
3: हा निमो, असांजी इज़त, असांजी आबरू तुंहिंजे हथनि में ई आहे। अगरि तूं तयारु न थिए त सुभाणे शाम जो ठीक 7 लॻे सॼी जनता असांखे भाॼी सम्झी खाईंदी। स्टेज ते चारो तरफ़ सड़ियल टमाटा, केलनि जूं खलूं, सड़ियल गोभियुनि जा गुल नज़र ईंदा। असांजी इज़त बचायो निमो।
0: प्लीज निमो,
1: बस बस बस, हाणे हीअ एक्टिंग बंदि कर। मां नाटक में कमु करण लाइ तयारु आहियां, पर हिकु शर्त ते।
0: शर्त?
1: यस, शर्त। डैडीअ खे पतो न पवणु घुरिजे।
3: तूं हिन ॻाल्हि जी चिंता न कर, बिल्कुलु चिंता न कर निमो। डैडीअ खे हिन ॻाल्हि जी हवा न लॻंदी।
1: ठीकु आहे, मां हीरोइन लाइ तयारु आहियां।
3: त ठीकु आहे। अरे रामू, तूं अञा हिते बीठो आहीं। अरे तूं मतां डैडीअ खे।
2: अरे भॻवान जो नालो वठो साईं, भॻवान जो नालो वठो, मुंहिंजो मुंहुं हिन ॻाल्हि वास्ते बिल्कुलु बंदि रहंदो।
3: वेरी स्मार्ट मैन। ठीकु आहे, त थी वञे रिहर्सल।
1: रिहर्सल हिते अगरि डैडी खे?
2: तव्हां मालिक जी चिंता न कयो, बिल्कुलु बि चिंता न कयो मैम साहब। उहे अंदरि दरवाजो बंदि करे आराम करे रहिया आहिनि ऐं वरी बि ईंदा त मां सीटी वॼाए तव्हांखे ॿुधाए छॾींदुमि। तव्हां शुरू कयो, शुरू कयो।
1: कहिड़ो सीन?
3: सीन जिते प्रीतम खे मथे में सूर थियो पए, लता घबराइजी थी वञे, रोए थी, डॉक्टर खे थी फोन करे, उहो ई सीन।
1: यस, इहो सीन त मूंखे बिल्कुलु यादि आहे।
3: गुड, त थी वञे। यस अशोक,
0: हा
3: स्टार्ट।
0: हा बिल्कुलु, मां हुते साम्हूं वञी करे सुम्हां थो ऐं तूं एक्शन चइजे। ठीकु आहे?
3: ओके।
0: हा
3: एक्शन।
0: अरे लता, अरे ओ लता, अरे अबाड़े, अरे लता मुझे मथो।
1: छा थियो तव्हांखे? हे भॻवान, छा थियो?
0: अरे लता, हे भॻवान, अरे अहिड़ो सूर त मूंखे मुंहिंजी ज़िंदगीअ में कोन थियो आहे। लता लता जल्दी कर।
1: छा कयां?
0: अरे गोरी गोरी खणी आ लता।
3: यस, गुड गुड गुड। नौकर, नौकर की आवाज से गई। वासु वासु
1: वासु, अरे ओ वासु।
3: रामू, प्रॉक्सी प्रॉक्सी वन।
2: जी जी जी साईं, जी मैम साहब।
1: जल्दी वञ ऐं मथे जी सूर जी गोरी खणी अच, जल्दी वञ।
2: जी जी जी मैम साहब।
0: अरे अरे लता, हाय हाय हाय।
1: जी प्रीतम।
0: लता।

0: मुझे लगे तो तही मथे जो सूर अज मुझी जान खड़ी कर रहंदो
1: न प्रीतु ये नचो
0: अरे मां बिल्कुल सच चई रहो लता अरे मां बिल्कुल ने छाबी करी लता अरे मुझी जान भी बची लता
1: हे भगवान हाने मां छा गया
0: लगे तो तमी जी हण बचण जी काय भी उम्मीद कोने लता
1: नहीं नचो तवा खां पोए मुंजो छा थिनो मां भागण किडा वेंदस न तवा बिल्कुल ठी वेंदा पियो पियो मां डॉक्टर के थी फोन करयास फोन करी थी घुरायास हां तवा ठीक थी ना बिल्कुल ठीक थी ना हेलो हेलो हेलो डॉक्टर हां डॉक्टर मैडम हां डॉक्टर साहब हां हिनन जी तबीयत डाडी बिगड़ी पई है हां तवा जल्दी अचो हां मैडम
2: यस मम घर जो पतो है
1: हां डॉक्टर हां तवा जल्दी अचो हां हां घर जी एड्रेस डी अरुणा नेहरू नगर हां हां यस डॉक्टर थैंक यू डॉक्टर साहब थैंक यू हां

0: हेलो डॉक्टर, हाँ डॉक्टर मैडम, हाँ डॉक्टर साहब, हाँ हिरन की तबीयत ॾाढी बिगड़ी पई आहे, हाँ तव्हां जल्दी अचो, हाँ मैडम,
1: यस मम, घर जो पतो वही,
0: हाँ डॉक्टर, हाँ तव्हां जल्दी अचो, हाँ हाँ घर जी एड्रेस डी अरणा नेहरू नगर, हाँ हाँ यस डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू, हाँ तू चिंता न कर प्रीतु, पंहिंजो पाण खे संभाल,
2: अरे अरे पाणे ही सूर त बर्दाश्त खां ॿाहिरि आहे लता,
3: हाँ वठो दीदी गोरी ऐं पाणी,
0: हाँ हाँ गोरी गोरी पी, पाणी पी, तू बिल्कुल ठीक थी वेंदे प्रीतु, तू बिल्कुल ठीक थी वेंदे,
1: वेरी गुड नमो, बस हाणे डॉक्टर जी एंट्री आहे, तू इन ही हालत में हर घड़ी ॿाहिरि निहारींदी रहो, अचानक ॿाहिरि घंटी वॼंदी ऐं तू जल्दी सां उथी करे दरवाजो खोलण लाइ ॿाहिरि वेंदी।
4: यस यस वेयर इज पेशेंट, अरे भाई छा थियो, छा मुंहिंजे अचण खां पहिरीं ही मरीज भॻवान खे, न न न न न इहो कीअं थो थी सघे, ज़िंदगीअ में पहिरियों दफ़ो कंहिं मूंखे फोन करे पंहिंजे घर घुरायो ऐं अॼु पहिरियों दफ़ो ई,
1: पर मैडम तव्हां आयो केर,
4: छा
5: मतलबु की तव्हां मैडम आयो केर,
4: अरे भई मां डॉक्टर वांदी बसराणी, तव्हां ई त मूंखे फोन करे हिननि जी तबियत ॾाढी ख़राब आहे जल्दी अचो डी नेहरू नगर में अचण लाइ चयो,
1: वट ही निमो,
5: निमो
0: मूं मूंखे लॻे थो तकड़ तकड़ में सचमुच डॉक्टर के फोन लगी
2: है, अरे मरी वियासी, लगे तो फोन पर मुखे लगे तो कि यूं तकड़ तकड़ में वो दवा वारी गोरी मां खाई हुई आया,
0: पर गोरी तो रामू को नहीं आयो,
2: अरे तो ही तो मुखे गोरी हथ था खाराई हुई, अरे अरे वो रामू जा पुट हे अचना तू सचमुच गोरी छो खणी आए,
3: अरे हाणे हिन में मां छा कयां, मेम साहब चयो ऐं मां गोरी खणी आयुसि,
2: मेम साहब चयो ऐं मां गोरी खणी आयुसि, सवाइ तोखे मेम साहब चयो त ज़हर खणी अचु, छा तूं ज़हर खणी ईंदे,
4: इहे सभु छा नाटक लॻाए रखियो अथव,
1: नाटक नाटक यस यस यस यस यस डॉक्टर, असीं त नाटक जी रिहर्सल करे रहिया हुआसीं पर जल्दी जल्दी में हिन निर्मला तव्हांखे सचमुच ई फोन करे छॾी,
4: छा मतलब,
1: हा डॉक्टर ही वठो सुभाणे जे नाटक जी पास तव्हां फैमिली समेत अचिजो,
2: हा डॉक्टर बिल्कुल सुभाणे तव्हां फैमिली समेत अचिजो,
4: फैमिली समेत हीअ तव्हां पास ॾियण जो ॾाढो सुठो तरीक़ो ॻोल्हियो आहे, इहो त सुठो थियो जो मां डॉक्टर वांदी पंहिंजी वांदी डिस्पेंसरीअ ते वांदी वेठी हुअसि, खैर हिन पास खे ई फीस समझी चुपचाप थी वञा, वॾा आया नाटक करण वारा रिहर्सल था कनि, तकड़ तकड़ में सचमुच फोन था कनि डॉक्टर खे, उहो बि डॉक्टर वांदीअ खे, वॾा आया नाटक करण वारा फोन था कनि तकड़ तकड़ में,
2: अरे ॿुधो त सही, अरे डॉक्टर साहब पर सही ॻाल्हि त ॿुधो, अरे ॿुधो त सही डॉक्टर साहब,
4: छा वञा थी मां, मां डॉक्टर वांदी तव्हां वांगुरु वांदी न आहियां,
1: सत्यानाश ॾिसो नाटक करण वारनि जी इज़त, मुफ़्त में चार ॻाल्हियूं ॿुधियूंसीं, पासो बि ॾिनियूंसीं ऐं हिन खां पोइ बेइज़ती, पर निर्मला तो बि कमाल कयो यार, हा सचमुच ई
0: ठीकु आहे हिकु दफ़ो चयो त सही ग़लती थी वई,
5: अरे खैर चलो चङो काई ॻाल्हि कोन्हे, हाणे जेको थियो सो थियो, पर रमेश हिकु ॻाल्हि आहे, निमो रोल त निभाए वेंदी ऐं निमो सुभाणे नाटक में वाह वाही रुगो तुंहिंजी ई थींदई, चङो रमेश हाणे मां हलां थो, अरे घणेई कम पिया आहिनि यार, बाक़ी रिहर्सल शाम जो मंच ते अची करे कंदासीं,
1: ठीकु आहे,
5: ओके
4: बाय बाय, ओके बाय,
6: रामू,
7: ओ रामू
3: आयो साईं,
6: अरे किथे आईं जल्दी अच,
3: हा हा साईं अचां थो, ओड़े मालिक अची रहिया आहिनि, साईं साईं घंटी थी वजे फोन खणो,
6: हा हा हा हलो, हा हा हा मां सोबराज मलिक ॻाल्हाए रहियो आहियां, केर, अरे भाई टोपण दास, हा भाई कहिड़ी ख़बरचार आहे, ॿियो सभु ठीकु ठाक आहे न, हा हा कंहिंजे लाइ, निर्मला लाइ, हा अच्छा अच्छा, हा हा हा हा छो न छो न ॾाढो सुठो, हा अचो न, अचो अचो, हा छा नालो अथन, क़ीमत राय, हा हा अच्छा हू कपिड़े जा वापारी आहिनि, अच्छा अच्छा ठीकु आहे ठीकु आहे, सुभाणे राति जो 9 बजे बिल्कुलु ठीकु, ज़रूरु अचो, ज़रूरु ज़रूरु, रामू, अरे ओ रामू,
3: हा हा जी साईं, जी साईं,
6: ॿुध ॿुध ही वटि ही 2000 रुपया रख पाण वटि ऐं शाम जो जेको आहे सुठी माए वारी फर्स्ट क्लास मिठाई वठी अचिजे,
3: हा साईं,
6: ऐं मिठाईअ सां गॾोगॾु

0: ड्राई फ्रूट काजू किशमिश बादाम वगैरह वठी अचे
1: जी साईं
0: ऐं ॿुध जेको आहे इहो कोल्ड ड्रिंक बि वठंदो अचिजे
1: ठीकु आहे साईं
0: ठीकु आहे न
1: साईं को महिमान अची रहिया आहिनि छा
0: हा हा उहो पंहिंजी निर्मला खे ॾिसण छोकिरे वारा अची रहिया आहिनि सुभाणे राति जो
1: सुभाणे राति जो नाटक जो त थी वियो सत्यानास
0: तोखे रुगो थोरो कम चओ त बड़बड़ पिया थो करी छा पियो बड़बड़
1: न साईं कुझु न साईं मिठाई मिठाई काजू किशमिश मां सुभाणे राति जो वठी ईंदुमि साईं ठीकु आहे सरकार बिल्कुलु
0: कमाल आहे यार अजीब माण्हू आहे रुगो बक बक लॻी वई अथसि रामू अरे ओ रामू
2: जी साईं
0: सभु तयारी थी चुकी आहे न पंहिंजी
2: हा साईं तव्हां बिल्कुलु बि चिंता न कयो सभु तयारी करे रखी आहे मूं
0: अरे यार पर 8:30 थी चुका आहिनि नेमू ऐं रमेश अञा आया ई कोन्हनि
2: बसि साईं अचण वारा हूंदा
0: ओफो ॿई हिक खां वधीक हिकु आहिनि अरे घर में महिमान नवाज़ी ज़रूरी न आहे नाटक ॾिसण ज़रूरी आहे अरे घटि में घटि उन नेमू खे त रुकणु खपे हा न पर न मां त नाटक ॾिसण वेंदसि ॾाढो सुठो नाटक आहे
2: साईं ॿार आहिनि बसि ईंदा ई हूंदा
0: अरे लॻे थो महिमान अची विया आहिनि पर इहे निमू ऐं रमेश अञा ताईं पैदा ई कोन थिया आहिनि रामू तूं संभालजे अचो अचो अचो साईं
3: जय झूलेलाल साईं
0: जय झूलेलाल साईं
3: जय झूलेलाल
0: अचो अचो अंदरि अचो न
3: हा हा
0: वियो साईं वियो तव्हां वियो
3: हाणे तव्हांखे छा ॿुधायां सोबराज मल शहर में अॼुकल्ह नाटक जी अहिड़ी बाहि लॻी पई आहे जो पुछो ई न ऐं अॼुकल्ह जा छोरा पीउ माउ जे चवण खां त ॿाहिरि ई लॻा पिया आहिनि बसि रुगो नाटक पढ़ाई लिखाईअ में त हुननि जो ध्यानु ई कोन्हे ॾिसो न अॼुकल्ह जा माउ पीउ अलाए कीअं पंहिंजी जवान धीअरुनि खे नाटक में कमु करण लाइ मोकिले रहिया आहिनि को बि शर्म लिहाज़ त रहियो ई कान्हे
0: तव्हां सही चई रहिया आहियो साईं टोपणदास
3: अरे मां बि अजीब माण्हू आहियां पहिरियों तव्हां हिननि सां गॾिजो हीअ आहिनि हिन शहर जा मशहूर कपिड़े जा वापारी सेठ कीमत राय
2: साईं जय झूलेलाल
0: जय झूलेलाल साईं
3: ऐं तव्हां सेठ शोभराज मल
0: राम राम साईं जय झूलेलाल
2: जय झूलेलाल साईं देर सां अचण जी मां माफ़ी थो चाहियां दरअसल अॼु नाटक ॾिसण जो मूड ठही पियो
0: नाटक इन जो मतिलबु तव्हां बि नाटक में दिलचस्पी रखंदा
2: आहियो न न अहिड़ी ॻाल्हि न आहे
4: हा साईं ॻाल्हियूं त भई थींदियूं वठो मिठाई ऐं शरबत खणो
0: खणो साईं खणो मिठाई खणो टोपणदास तव्हां खणो मिठाई
3: ॻाल्हि इहा आहे शोभराज मल त नाटकनि में दिलचस्पी सेठ कीमत राय जी न पर हिननि जे सिकिल जे पुट जी आहे अॼु जे नाटक में हू बि हिसो वठी रहियो हो इन करे
0: अच्छा अच्छा दरअसल अॼु जी पीढ़ीअ जो झुकाव जरा नाटकनि जी तरफ़ वधीक थी रहियो आहे मुंहिंजो पुटु रमेश ऐं निमू बि नाटक ॾिसण ई विया आहिनि बसि अचण ई वारा हूंदा खैर इहो त ॿुधायो साईं टोपणदास छोकिरो कंदो छा आहे
2: साईं इहो टोपणदास खां न पुछो इहो छोकिरे जे पीउ खां पुछो यानी मूंखां सेठ कीमत राय खां मुंहिंजो छोकिरो अञा कॉलेज में पढ़े पियो पढ़ाई करे पोइ अची पंहिंजे कपिड़े जो व्यापार संभालींदो तव्हांजी धीअ
0: उहा बि अञा पढ़ी रही आहे साईं
3: सेठ साहिब छोकिरो हिकदमि हीरो अथव हीरो
2: सोच सभु ठीकु आहे टोपणदास छोकिरी पोइ पिया ॾिसंदासीं पर तव्हां हिननि खां इहो त पुछियो त ॾेती लेती घणी ॾींदा
3: इजो साईं हा त सोबराज मल रिश्तो त तव्हां हिक ते हिक सां पक ई सम्झो
0: पक पर छोकिरे छोकिरी जी रजामंदी त ॾिसणी पवंदी टोपणदास ही असांजो ज़मानो त आहे कोन की माउ पीउ शादी पकी कई ऐं असां चुपचाप वञी शादी करे वरिती अरे हाणे ज़मानो बिल्कुलु बदिली रहियो आहे
3: इहो त सभु ठीकु आहे सेठ साहिब पर छोकिरो ऐं छोकिरी ॾिसण खां पहिरियों ॾेती लेती जी ॻाल्हि त थी वञणु घुरिजे
0: ॾेती लेती
3: हा साईं अॼुकल्ह इन्हीअ जो ई त पुठियां दुनिया हली रही आहे
0: ॿार बि अची विया आहिनि अचो अचो
2: अरे रमेश
5: ये संकल तव्हां असांजे घर जय झूलेलाल साईं
2: जय झूलेलाल
0: तव्हां मुंहिंजे पुटु रमेश खे
5: अरे दैदी ही त अशोक जा पापा आहिनि
0: अशोक
5: हा
3: अरे वटि टट इहा बि सुठी ॻाल्हि थी आई
2: त हीअ तव्हांजी नियाणी आहे
0: जी साईं इहा ई आहे मुंहिंजी धीअ निमू
2: वाह निमू वाह अॼु जे नाटक में त तुंहिंजो रोल ॾाढो ई सुठो रहियो ऐं ख़ासि करे उहा मेनका जी वारी डांस
0: मेनका जी डांस अरे सेठ साहब तव्हांखे का ग़लति फहमी थी आहे हिनखे भला नाटक सां कहिड़ो वास्तो अरे हिनखे त घर जे कमनि मां ई फुर्स

0: तक की न मिलनी आए पोई वरी मेनका वरी डांस सा
1: न साई न मुझी अक्षु धोखो न थियो खाई सकन
0: छा
1: मुखे माफ कजो सोबराज मुरा मुखे नुआ खपे नुआ के नाटक जी हीरोइन न
0: पर सेठ साहब तवा जो पुट अशोक भी त नाटक में
1: अरे साई वो तो छोकरो आए आई ना एमए भी करे पो पढ़ी लिखी करे पांजो छ धंधो संभालिंदो पर ई नाटक करे उनके एक्टर कोन ठाणो आए
2: अरे भाई सेठ की मत रहा है निमू भी तो अन्या पढ़ी ही रही आए वरी इनके के हीरोइन ठहणो आए तवा त अजा नाराज छ रहा है
1: तवा अन्या समझी कोन रहा तो पड़दास डिठो कोन देती देती नाले सही इन की मुंह बिगाड़े छियो
2: तवा चिंता न कर सेठ साहब मां मना हिंदुस्तान हेरा सेठ सोबराज मन हेरा जो सेठ साहब हेरा जो तवा अजायो गाल के बधाए रहया है हाने तो तवा के छोकरे जे बारे में भी खबर पेजी वईया तवा तरगो देती लेती जी गाल कयो बस सब बाकी मुते छियो
0: देती लेती तोके तो खबर है टोपणदास मां ने देती लेती रे सख्त खिलाफ आया अरे अज न तो सुभाने असा सबनी के मिली करे हन देती लेती के समाज में खत्म करनो ही आए
2: तमाम ही केड़ी गाल कर रहा है सेठ साहब आजकल शादी में रौनक रुगो दाजे ताई थिंदिया बिरादरी में समाज में इज्जत आहे तरगो ही नहीं चेजी
0: दिसो टोपरदास मां तमा के एक दफो चई चुको आया मां हन देती लेती रे सख्त खिलाफ आया सख्त खिलाफ
1: ठीक है छड़ो टोपरदास जी हन की मर्जी हाँ असा के इजाजत दियो साई मुखे जरा सी खबर न हुई ता घर घुरा करे असा नी बेसरी कंदा आखिर ता समझो छा है अरे मुझे पुट अशोक लाए छोकरी खुटी कोना ने शहर में तवा जेड़ा मुझे अशोक लाए मुझे घर चक्कर लगाईन चक्कर
0: मां तवा जे दर ते की ना आयो से सेठ कीमत राय तवा जे छोकरे ले छोकरियो घणी है त मुजी दी निमो ले वो छोकरा को खुटा कोने तवा वनी सको दा ता
1: चमो हलो तो पड़ना से अरे अशोक तू इते छापे बड़ी
3: वाह वाह पापा वाह पापा मां ते इते रमेश सा मिलन आयो होस पर इते तवा के इसी डाडो हैरान थी रहो या पापा तवा इते देती लेती है आई दाजे जे चक्कर में फासी रहे आयो
1: चंगो चंगो तुम सा गडल
3: बिल्कुल पापा मके ते तवा सा गडी हलन घुरजे पर हलन का अग मां तवा सा कुछ पुछन तो चाया पापा छा तवा इते मुझे शादी तय करण आया हुआ ये दाजे जी गाल मुझे बारे में हली रही हुई पापा पर पापा मके डाडो दुख है तरुगो हिक ही गाल जो कि तवा मुझे दिल खा कदें की न पुछो हो कि मां छा तो चाया मुझी दिली इच्छा छाए हन देती लेती है हन दान दहेज खा मुखे भी सख्त नफरत आए पापा पाण तवा पेंजे दिल खा पुछो त तवा ही जेको करे रहया आयो छा आयो ठीक है ही कपड़े जो व्यापार त तवा अज चैन पंजन सालन खा करे रहया आयो ए तै खा पेरी जी गाल शायद तवा के याद ना है पापा जदे मंजू जी शादी जी तारीख नजदीक हुई ए मंजू जे सावरन नाणे जी घुर कई हुई तो तवा शायद पापा हन रमेश के विसारे बैठा आयो हन जे एहसानन के विसारे बैठा आयो यो ओई रमेश आए पापा जे तवा जी इज्जत बचाण जे करे पंजे दिन जे अंदर भज डुक करे मेहनत करे नाटक कयो हो ए तवा के उन नाटक जा 50,000 रुपया देना हुआ छो छाजे करे हु भगो तवा जी इज्जत जे करे अरे मंजू जे करे ए अजय तवा पापा
1: बस कर पुटे बस कर मुखे मुखे सब याद आए मुखे माफ कजो सोबराज मेले माफ कजो मां पैसो कमाए पैसे जो ही लालची थी यस मुखे भला केड़ी कबिया भगवान जो दिनल मुखे सब किया है मुखे माफ कयो सोबराज मेले माफ कयो
3: पापा
2: अरे भाई सेठ साहब शुभ मुहूर्त निकली रहे आए छोकरे छोकरी के आशीर्वाद दींदो कि न
1: हां हां छो न सदा ही खुश रहो पर अशोक
3: जी पापा
1: हां जने तू नाटक करी तो मुखे रोल जरूर दे जाई
3: पापा
1: हां अरे बचपन में मु स्टेज से घणी नाटक कया पर वो इन नवा नए के चक्कर में थी सब ही सारे गचस अरे असली मनोरंजन तो इयो ही आए ए सच्ची शिक्षा जे कासा के इन नाटक के जरिए मिली सके थी असांजी पंहिंजी सिंधी संस्कृति ऐं ॿोलीअ खे बचाइण में मदद करे सघे थी
3: हा पापा अरे वाह मूं बि ठो कयो

साथियों, तो आप भी रहे हो सुरेश सिंधु जो लिखे हुए नाटक दिल लगी। हिन में हिसो वठंदड़ कलाकार किरदार समेत ही आहिनि। योगराज जो किरदार निभायो श्री राजेश बम्बाणी, मंगलराम हुआ वासुदेव।

मोटवानी, निर्मला जे किरदार में हुई कविता सचदेवा, डॉक्टर जे किरदार में हुई पूजा चांदवानी, अशोक जो किरदार दिलीप रामचंदानी निभायो, रमेश जे किरदार में हुआ मनोज आडवाणी, पोपरदार से किरदार में हुआ श्री रमेश रंगाणी, कीमत राय जे किरदार में हुआ देवसागर, नौकर रामू जो किरदार निभायो श्री हेमंत खटवाणी। साथियों इन सा गड अज जे प्रोग्राम जो टाइम हिते पूरो थो थे, वरी गॾजंदासीं तेसीं ताईं वीना खे इजाज़त ॾींदा, नमस्कार।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम में सुनिए मोहरा फिल्म का ये गीत, स्वर है अलका याग्निक और उदित नारायण के।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: भवा
1: आहा पुंजा से काही

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में फिल्म हाथी मेरे साथी का ये गीत अभी आपने सुना। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, फिल्म का नाम है जुदाई। स्वर है हरिहरन, अलका याग्निक और जसविंदर नरूला की।

जुदाई फिल्म में हरी वरण, अलका याग्निक और जसविंदर नरूला के गाए इस गीत के साथ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 1 बजने को है प्रस्तुत हमारे जयपुर केंद्र से प्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

बैंकिंग कार्य प्रणालियों के अनुरूप बनाना है। वित्त मंत्री आज लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 तथा विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 भी पेश करेंगी। इस विधेयक का उद्देश्य भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 तथा वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करना है। वहीं विनियोग संख्या 3 विधेयक का उद्देश्य 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर किए गए खर्च की पूर्ति के लिए देश की संचित निधि से धनराशि के विनियोजन को अधिकृत करना है। इस बीच राज्यसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस विधेयक को पेश करेंगे। इसका उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। हालांकि विपक्ष के विभिन्न मुद्दों को लेकर किए गए हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। उधर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए

0: संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज संसद भवन में आयोजित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह सहित अन्य नेताओं ने बैठक में भाग लिया। रक्षाबंधन के अवसर पर भारतीय डाक विभाग ने विदेश में रहने वाले भारतीयों तक राखियां समय पर पहुंचाने के लिए विशेष व्यवस्था की है। डाक विभाग ने किफायती और वाटरप्रूफ लिफाफों की सुविधा उपलब्ध कराई है। इन लिफाफों के माध्यम से खाड़ी देशों को छोड़कर लगभग 100 देशों में राखियां भेजी जा सकती हैं। भीलवाड़ा डाक मंडल से अब तक 100 से अधिक राखियां विदेश भेजी जा चुकी हैं। डाक अधीक्षक सुनील कुमार मीणा ने बताया कि इस बार सबसे अधिक राखियां ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भेजी जा रही हैं। उन्होंने लोगों से इस सुविधा का लाभ उठाने की अपील की। सवाईमाधोपुर कलेक्ट्रेट सभागार में आज कॉफी विद कलेक्टर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की पहल पर भविष्य की उड़ान के तहत ये आयोजन रखा गया है। इसमें जिला कलेक्टर कान्हाराम चयनित सरकारी स्कूलों के संस्था प्रधानों से विभिन्न विषयों पर संवाद करेंगे। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले संस्था प्रधानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश में मॉनसून की गतिविधियां लगातार बनी हुई हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कई जिलों में अच्छी बरसात हुई। जल संसाधन विभाग के अनुसार दौसा जिले के मंडावर में सबसे अधिक 11 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इसके अलावा बारां के अंता में 10, हनुमानगढ़ के रामगढ़ में 9.6 और डीडवाना कुचामन के मकराना में 9 सेंटीमीटर पानी बरसा। जयपुर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, झुंझुनू, धौलपुर, चूरू, करौली और श्रीगंगानगर सहित कई में भी अच्छी बरसात हुई। मौसम विभाग ने आज भरतपुर, जयपुर और बीकानेर संभाग के कई क्षेत्रों में मध्यम से तेज बारिश तथा भरतपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है। पाली में कैच द रेन अभियान के तहत नगर निगम ने वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जन जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसके तहत जिला कलेक्ट्रेट सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं। अभियान के माध्यम से लोगों को बारिश का पानी अधिक से अधिक इकट्ठा करने और जल संरक्षण में अपनी भागीदारी निभाने का संदेश दिया जा रहा है। नागरिकों से घरों, संस्थानों और सार्वजनिक भवनों में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था अपनाने की भी अपील की गई है। जैसलमेर में युवाओं को स्टार्टअप और नवाचार से जोड़ने के लिए उद्यमिता और स्टार्टअप संवर्धन कार्यशाला कल आयोजित की जाएगी। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की ओर से स्टार्टअप इंडिया के तहत आयोजित इस कार्यशाला में युवाओं, विद्यार्थियों, नवाचारकर्ताओं और संभावित उद्यमियों को स्टार्टअप से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इसका उद्देश्य युवाओं को नवाचार आधारित उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना और उनके विचारों को सफल स्टार्टअप में बदलने में सहायता करना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। दिन के 1:05 हो रहे हैं। आरंभ होता है कार्यक्रम घर आंगन। कार्यक्रम के आज के अंक की प्रस्तुत करता है खुशबू हर्ष और रेखा आचार्य।

0: घर आंगन सुनने वाली परिस्थिति बनाने में रेखा आचार्य
1: और मैं खुशबू हर्षरा घड़ा घड़ा राम राम सा रेखा बहन अब आर देखो मौसम यानी जुको बड़ो ही निरालो हुए कदी बादल कदी तावड़ो और कदे उमस और फिर अचानक सु बरसाती फुहार और बाबी है जी की दो मिनट में आवे और जाए
0: तो यार तो तेज धूप उमस और दिखते दिखते कहवे नहीं एकदम सुघना बादल छा हाँ। और पता ही चाले को नहीं कि

0: कब झमाझम बारिश कर जाए। और देखो निकुशु बहन, ओई तो प्रकृति रो रंग है। आ प्रकृति ही आपने हर दिन नयो सिखावे कि जब मौसम बदले तो आपा सभी दिनचर्या भी बदल जावे और साथ ही बदल जावे आपारी जरूरते। और रोज भरारी कहवे नहीं है छोटी छोटी बात है तो आपा पर घर आंगन कार्यक्रम भी चर्चा भी बना ले वो। तो खुशबू बहन, बारिश या बूंद सिर्फ कहवे नहीं सुकून देवे को नहीं, बल्कि आप सागे एक बड़ी जिम्मेवारी और मेरे पीछे एक छिपियोड़ा संदेश भी लावे।
1: क्या संदेश देवे रेखा बहन?
0: देखो खुशबू बहन, संदेश और है कि अभी अभी मैं बात करूं थाने कैच द रेन अभियान के बारे में। और भारतीय सरकार जल शक्ति मंत्रालय रो एक जन जागरूक अभियान है। मेरो संदेश है कि जठे बारिश री बूंद गिरे मीने वठे ही संचय करो, यानी बारिश रे पानी ने बेकार में बहना को नहीं देना और की ना की रूप में मीने जमीन रे माए संचय करो, यानी भविष्य में उपयोग कर सको लियो ही आपो भी जल ने सहेजो।
1: तो चोखो संदेश है कि आज भूजल रो स्तर नीचे जा रहे है, पानी री किल्लत सब जगह है, इन्हरे माय में जल रो संरक्षण आज रे बखत री जरूरत बन गयो है। लोग सोचे कि ओ सरकार रो ही काम है, पर ओ है नी जिको रेखा बहन आपा सब री जिम्मेदारी है कि आपा ने ही जागरूक होना जरूरी है, क्योंकि पानी है नी जिको अपने जीवन खातर जरूरी है। पानी रे बिना तो दुनिया रे माय ने किन्हीं भी जीव रो जीवन संभव कोनी। और पानी है खाली जिको पीने खातर ही नहीं, बल्कि आपरे दैनिक जीवन रे उद्देश्य है, जे नाणो है, खानो बनावणो है, साफ सफाई है, कपड़ा धोना है, मेरे खातर घणो ही जरूरी है। तो आई है कि बिना जल है तो जीवन है, पेड़ पौधा जानवर खातर भी पानी बितो ही जरूरी है, जितो अपा रे खातर है। देखो रेखा बहन की आप पानी रे बिना तो एक घंटों भी गुनी रह सका, कभी कभी आप रे घर में पानी नहीं आवे तो दिन भर कई हुए आज पानी आयो गुनी तो पानी री कमी आ जावे है। तो पानी रो जिको संरक्षण है, चाहे वो वर्षा जल है चाहे आप घर में जिको पानी आ रो है, दोनों जिको है मेरो संरक्षण जरूरी है।
0: सही कह रहे हो। देखो नी खुशबू बहन की गाँव में आज भी पुराना जी का तालाब है, जोहर है और बावड़िया है और जी का भी कुआ है, यहाँ पर कितना परंपरा रहा पहले भी। हाँ, है
1: सही है।
0: पर अगर आज भी आप अभी यारी अच्छे से साफ सफाई और संरक्षण करो नी तो बरसात रो खूब सारा पानी लंबे समय तक काम आ सके। साथ ही आप जी का किसान भाई है वह खेतों में मेड़बंदी और छोटा छोटा जल संग्रहण रा ढांचा बना भी बारिश रे पानी रो बेहतर उपयोग कर सके। और साथ ही आप देखो घरों में घरी छत पर आप जो वर्षा जल पड़े है तो इन्हें पाइप के माध्यम से इन्हें टैंक में आपो संग्रहित कर सको।
1: देखो रेखा बहन, मारे तो घर में आज की आपा कहते कह रहे हो नी आ टंकी बनवड़ी है। हाँ, तो बारिश रो पानी है नी जिको बीरे मार ने ही जमा हुए है,
0: जिका सोखता खड्डा हो नी जिको ने वो रिचार्ज पिट नी उन्हें बनार वर्षा रे जल रो आपो जमीन में उतार सको, जिसु क्या सी भू जल जिको है बीरो स्तर बढ़सी। और साथ साथ ही देखो खुशबू बहन, पेड़ लगाना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जिके पेड़ हुए नी वे वर्षा रे जल ने भूमि में अच्छी तरह से समाने में मदद करे और अनावश्यक पानी की बर्बादी ने तो रोकना कहवे नी जरूरी है। और वर्षा रो जल रो उपयोग आपो सिंचाई बागवानी और अन्य घरेलू कार्य में भी कर सको।
1: और जी को पानी यानी देखो ओ खराब भी गुनी हुए, अगर अपन थोड़ी मैं तो कही करूँ, देखो रेखा बहन की भी टंकी में तो पानी जमा हो गई है, बिल के अलावा कही करूँ की जहाँ पर घर में टब बाल्टी हुए नी वे भी छत पर रख दू के वह भी सु कही है की भरी जावे, तो वो पानी है जिको पेड़ पौधों में डालने भी काम आ जावे है। और इन्हे साथ ही मैं एक बात और बताऊं कि आजकल तो जिको यूआईटी है नी वो भी भवन निर्माण है या पर घर मनावा, तो बिरी स्वीकृति जब ही देवे जब आपा वर्षा जल ने संरक्षित करने री बठे व्यवस्था करा, तो आ तो कितनी चोखी बात है कि भाई हर घर रे मायने हर भवन रे मायने इसी व्यवस्था हुए तो वर्षा में जिको जल है नी वो खराब हुए ही कोनी, वो संरक्षित ही होसी।
0: बहुत चोखी बात है।
1: तो आते हुए देखो बिना जानकारी के आप वर्षा जल ने क्या संरक्षित कर सका, इधर साथ ही आप बिना ने सुनावा एक चोखो सो गीत लो।

0: दुनिया घूमते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: लेखक पेन अपार स्वतंत्र संग्राम में अनेकों ऐसा महान व्यक्तित्व हुआ जिका आपा प्रे तरीके सु देश री सेवा करी है।
3: बिल्कुल कुशुबन, कोई आपरे साहस सु प्रेरणा दी तो कि स्वतंत्रता सेनानी आपनी लेखनी और विचारों सु लोगों में जागृति जगाई और आज ईसा ही महान व्यक्तित्व की जयंती है और बियाना नाम है फिरोज शाह मेहता जिके आप ही तरीके से स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दियो।
2: हाँ बेना, आज 4 अगस्त रे दिन ही फिरोज शाह मेहता रो जन्म मुंबई में हुयो हो। वे प्रसिद्ध वकील, समाज सुधारक और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रा प्रमुख नेता हा।
3: और तो और जो ने बॉम्बे राशे भी कहा जाता था क्योंकि वो जन्म मुंबई में हुआ था। तो वठे ही आप जिको आपकी शिक्षा है शुरुआती जीवन वठे ही निकालियो और आम लोगों रे अधिकारों री आवाज ने बुलंद करनो शासन तक प्योरी आवाज पहुंचाने रे सागे सागे नगर प्रशासन ने बेहतर बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई और मुंबई नगर निगम रे विकास में जो योगदान इतना महत्वपूर्ण हो कि बियाने मुंबई नगर निगम रो जनक भी कहो जातो हो। बियाने मानना हो कि शिक्षित और जागरूक समाज ही देश की बड़ी ताकत हिया करे। ये वास्ते शिक्षा, स्वच्छता, प्रशासन और जन भागीदारी पर हमेशा ही जोर दियो। पत्रकारिता रे आपरे माध्यम से भी लोगों ने जागरूक करियो और अथक प्रयास हुई शुरू हुयो द बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र और वो राष्ट्र चेतना में फैलाने रो एक प्रभावी माध्यम भी बनियो।
2: बिल्कुल बेना, फिरोज शाह मेहता रो जीवन आपा में सिखावे कि देश री सेवा केवल आंदोलन या संघर्ष सु ही नहीं बल्कि ईमानदारी, अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था कर और समाज रे प्रति आपरी जिम्मेदारी निभार भी की जा सके है।
3: तो खुशबू बहन बिहारी प्रेरणा लेते हुए बहना ने मैं वही कही इसके आपा भी आपरे अधिकारों रे सागे सागे आपरे कर्तव्य ने पहचान और फिर पालन करो। समाज के विकास में जितो हो सके भागीदारी निभाओ। जो अब आप वर्षा जल रे बारे में बात करें तो आप पर्यावरण स्वच्छता में भी आप योगदान दे आज जिम्मेवारी निभा सको।
2: हाँ।
3: और ही बिहार प्रति कहने जिका आप स्वतंत्रता सेनानी है आपा लोगों ने एक सच्ची श्रद्धांजलि क्योंकि और भी वही उद्देश्य था कि जिको भारत देश है वो आगे जाए, वो हर क्षेत्र में उन्नति करे और मतलब कहवे नहीं कि भारत देश तो आगे जाए कि विश्व में वीरो
2: नाम हो जाए। हाँ। तो इन जानकारी रे साथ ही बहना ने सुनावा एक चोखो सो गीत लो।

0: करी समंदर सामने कभी डाम गाया
1: कबड़ा मंगाया रे भला कबड़ा मंगाया रे भला।

ഇന്നും തന്നെ നമ്മ ആരാണ്

0: दोपहर को पहुंच रहे हैं हम।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मानव क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: खुशबू बहन, देखो आप पर घर का आंगन कार्यक्रम में खूब सारी चर्चा करो और बहनों कोई बात नहीं हो या कह नहीं कोई इसी प्रतिभा या हमारे बारे में आप नहीं ये चर्चा करो
1: तो
0: हमारा देखो हमारा मानना है कि भगवान हर आदमी रमाए कोई ना कोई खास कला जरूर दे
1: जरूर देवे
0: और बस जरूरत है तो हुनर ने पहचानने भी और निखारने भी।
1: और रेखा बहन, राजस्थानी में तो कहावे भी है कि जिको काम बिरो नाम। जब आदमी आपरे हुनर मेहनत लगन और विश्वासु आगे बढ़े में तो एक दिन घर परिवार ही नहीं बल्कि दुनिया भी बिरी कदर है जिकी जरूर करे बिरो नाम है जिको जरूर हुए।
0: और कुछ हुआ आदमी में अगर आतो हुनर हुआ नहीं तो वो आदमी कभी भी भूखो को नहीं रहे
1: आतो है
0: एक तो ही बात है और वो हर जगह कमार खा सके। और आज रो बखत है कि पढ़ाई के साथ साथ हुनर भी होना बहुत जरूरी है।
1: साची बात है बेना कि चाहे खेती हो कढ़ाई हुए बुनाई हुए सिलाई लोक कला संगीत कंप्यूटर मोबाइल तकनीक या कोई भी छोटे मोटे कारोबार हर हुनर इंसान ने आत्मनिर्भर बनावे है।
0: सही कह रहे हो। देखो कह रहे की शुरुआत छोटी हो सके लेकिन अगर वही काम वही हुनर का ईमानदारी और गुणवत्ता से करो नहीं तो लोग भी मेरी कदर किया करे। और देखो आप बच्चों ने भी आजकल कह रहे कि आप बात करो कि पढ़ाई के साथ हुनर होना
1: जरूरी है।
0: अगर कि बच्चे में चित्रकारी पसंद है कि मैं संगीत कि मैं खेल या पढ़ाई में रुचि है तो अपन भी उत्साह भी बढ़ाना चाहिए ना कि मेरी तुलना करनी चाहिए कि और बच्चे सके क्योंकि हर बच्चा और हर व्यक्ति भी आपकी अलग अलग पहचान
1: है।
0: और तो और जो हुनर होने वो सिर्फ कमाई भी साधन को नहीं हुए बल्कि वो आत्मविश्वास का आधार भी बने। जब आप काम में सहारा ना हुए और मन में नहीं ऊर्जा आवे तो अपन आगे बढ़ने का हौसला भी मिले।
1: और बहना देखो घर रो काम रो सागे सागे आप बहना कई कर अचार भी बनावा ट्यूशन भी पढ़ा लेवा पापड़ भी बना लेवा। और मेरे साथे साथे अगर आप सिलाई की बात करा तो मैं मारी बहना ने बताऊं कि भाई मारो ब्याह हुए नहीं तो मारा जका दादी ससुर नहीं भाई आप रे हाथा सु ठाकुर जी री पोशाक बनाता कदई छोटी छोटी साड़ियारी जी की पुरानी हो जाती मेरी लंबी लंबी कतरन कर छोटी छोटी बैठने की गिद्या मना देता तो मतलब मैं खाली तो कदी बैठता ही कोनी। और बहना वो छोटी छोटी रंग बिरंगी गिद्या इतनी फुटरी लागती तो एक दिन मारे मन में आयो की भाई बिया ने कहूं कि दादी सा क्यों नहीं आप इन्हें बनार प्रार बेच भी सकते तो वो हुनर भी हो गयो और कमाई साधन भी हो गयो। तो रेखा बहन पहले तो वो मना कर दियो पर

0: बाद में बे राजी हुआ बस मने तो इको ही चाहिए तो हो के बिहारी जी को बनाए रो सामान हमें मैं कहीं करी झटसू मोबाइल रे द्वारा मारे परिवार है मारी बहना है मारी भाईया है सब ने भेज दिया और बे सब ने इतना पसंद आया कि आज तो माने बैठन रो भी बखत को नहीं क्यों क्योंकि दादी सा भगवान रा भजन गुनगुनाती बनाती रहे और मैं सब सब जना हानी भी सामान ने पैक कर प्रार आगे देनता रहे
1: वाह तो थे गणी चोखी बात बताई ये बात तो जन्माष्टमी में मारे भी ठाकुर जी का कपड़ा बनवा जरूर देखा मैं और वाने जाने दो अभी बताना चाहूंगी देखो सरकार भी आप पर ऐसा गया है आज सरकार भी क्या कर रही है इन्हीं महिलाओं है जिकी जिकी घर में बैठी काम कर रही है युवा युवा लोग है जिका मैंने स्वरोजगार वास्ते कई प्रशिक्षण भी ले रही है और योजनाओं के माध्यम से उन्हें जोड़परा या स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी जिकी महिला है अपनी हुनर में व्यवसाय रूप दे रही है और डिजिटल युग तो है ही है घर पर बनाया गया चुका है पापड़ अचार मसाला राखी और जो त्योहार आते
0: हैं सही बात है
1: हस्तशिल्पिया कढ़ाई का सामान भी सोशल मीडिया और ऑनलाइन माध्यम से ग्राहक तक पहुंच
0: रहे हैं
1: पर आइए कि बस की मेहनत तभी चमके जब दिवस आगे मेहनत धैर्य और सीखने भी लगन भी हो ये वास्ता कहो कि आप लोग हुनर में कभी छोटो ना समझो चाहे कितनी साधारण क्यों ना लगे अगर दिन में लगन और गुणवत्ता नहीं तो कदर एक दाए एक ना एक दिन जरूर होगी और देखो चर्चा रही मैं आई कहीं साहब भी बात की हुनर छिपा कर रखने की कोई चीज को नहीं निखार नहीं और दुनिया तक पहुंचाने की जरूरत है
0: तो देखो रेखा बहन की अपारी जी की बहना है नहीं बहन ये बार की नकी काम तो कर दी थी और भी काम नहीं और चोखे धरी के सुबह करे तो बीरे वास्ते आप बहन सुनाए बाइक चोखो सो गिटड़ लो।

0: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान,
2: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
1: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
2: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
1: बस आइए कर्णी स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
2: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
1: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
2: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
1: जुड़िए आकाशवाणी।

0: लेखवन अपन देखो बात करो कि बचत रे और कहावत भी है कि बूंद बूंद सुख घड़ोरे है, ठीक उन्हीं तरह ही थोड़ी थोड़ी बचत भी एक दिन मोटी पूंजी बन जावे है।
1: साची बात खुशबैन कि आज ये बागदौड़ भरी जिंदगी रे माए कमाई जीती जरूरी है नी, उतो ही जरूरी है समझदारी सु खर्च करना और नियमित बचत करनी, क्योंकि बिना मुश्किल बखत रे माए बचत ही सबसे बड़ी ताकत या करे।
0: चाहे परिवार खर्च हो, टाबरारी पढ़ाई लिखाई हो, इलाज हो, खेती बाड़ी या कोई भी जरूरी काम, अगर बचत हुए तो आदमी आत्मविश्वास से हर काम कर सके। और बिना बैंक है जिकी डाकघर है, स्वयं सहायता समूह और कई सरकारी योजना भी सुरक्षित बचत और निवेश री सुविधा देवे है। सही जगह बचत करो भविष्य में मजबूत बनावे है।
1: और सुन देखो नी कड़े कड़े ई बचत ई मित्रता नहीं क्या कर ले, लोग कंजूसी समझ ले।
0: हाँ।
1: तो सोचो कि बचत करिए तो कंजूस
0: कंजूस उसी,
1: पर इरो अर्थ है कि जिकि आप बचत करो नी वो सोच समझ कर। बचत का अर्थ क्या होगा कि कोई भी चीज पे आप खर्चा करो वो सोच
0: समझ, ये थोड़ी ना कि अपन जिकि चीज है जब भी अपन नहीं लगा। हाँ।
1: और चीजों का सही उपयोग करना और अनावश्यक जिकि बर्बादी नहीं विसुख बचना। और देखो ये बेकार भी बात है कि मारो जो बेटो है वो बाजार से आयो बांडे से जा रहे हो और मैंने कहे कि मम्मी मैंने तो वो खिलौना देखा ही मैंने चाहिए, मैं क्या बेटा थक लगता सा खिलौना है कि नहीं नहीं वो पुराना आ गया मैंने तो नया चाहिए। तो मैं ये सोच लगी कि आप तो आजकल क्या है आई कौन है हर घर।
0: हाँ, सही बात है।
1: मिनट में जीत कर लेगी माने अच्छी चीज है और मैंने कहा जरूरत तो कम हुए और चाहत ज्यादा
0: हो जाए। इन सारू ही कही हुए कि टाबड़ा रे मायने भी बाल पड़े सु ही बचत की आदत है जिसकी अपन डालनी चाहिए। और अपन लुगाया तो इन्हें भी की ना की बचा रखा ही है और अपन बचत रिपोर्ट ली तो कभी खाली हो नहीं हुए। क्यों? क्योंकि कभी बचत है जिसकी कहीं चाय चीनी डब्बे में मिले, कभी मसाला रे डब्बे में, कभी गद्दे रे नीचे, तो कभी कपड़ा रे बीच में। इन सारू तो कह रहे हैं कि भाई लुगाया खाने तो पैसो हुए ही है। और अपन लुगाया भी तो कही हुए कि छोटो सा बैंक ही हुआ है। अपने सागे सागे टाबरा ने भी बचत री बात अगर आप डाला तो आप बहुत ही ज्यादा चोखी हुए, क्योंकि टाबरा ने बचत रूम है तो सिखानो बियाने भविष्य खातर जिम्मेदार और आत्मनिर्भर बनाने रो बेहतरीन तरीको है।
1: और साथ साथ देखो नहीं अगर आप बच्चे लिए अगर हर जिद में तो पूरी भी कर दो तो वे चीजों का महत्व
0: महत्व समझाने
1: ये वास्ता जरूरी है कि आप बच्चों में छोटी उम्र में समझाओ कि बिजली पानी खाना और जिका भी पैसा
0: कोई भी चीज में खराब
1: नहीं है, सब संसाधन है। मेरी बचत करना अच्छी आदत है। जो प्लेट में बिते खाना ले वो जित खा सके, नहीं वजह पंखा लाइट या नल ने खुला नहीं छोड़े, स्कूल की कॉपियां है जिकी वो भी पूरे इस्तेमाल करे, बच्चा करे दो चार पन्ना अगले क्लास होते इन्हें इस्तेमाल ही करो कोनी। और अगर बच्चे के गुल्लक में थोड़ा थोड़ा आप पैसा बचाना सीख
0: गालनी आदत डालनी
1: तो बचत की आदत विकसित होने लग जाए, जिम्मेवारी जो भाव भी आ जाए। और कहे नहीं कि मैं अभी सिखाओ कि हर बार नई चीज ने खरीदना जरूरी
0: कोनी,
1: कई बार पुरानी चीजों का सही उपयोग भी समझदारी लिया करे। साथ ही आप व्यवहार भी बच्चों खातर इसे रखना या बच्चों आप ये व्यवहार में भी वाची अपनानी ताकि बच्चों भी देख सीखे। अगर बड़ा सोच समझ कोई मद पर कोई चीज पर खर्च

0: कर रहे हैं तो बच्चों में भी अपना आप ही आदत आ जाए कि नया चीज खरीदनी है या नहीं खरीदनी है। और आज तो कभी नहीं, आज के समय में मित्रता है, आज की बचत है, केवल पैसे बचाने का काम को नहीं बल्कि इन्हें आपको पर्यावरण की रक्षा का भी एक तरीका मिल सकता है, क्योंकि आप जितना संसाधन कम इस्तेमाल कर सो तो वह अपना आप ही वे मेरी बचत बच्चे रहसी।
1: पहले आपको भी तो देखो रेखा बहन का ही करता कि भाई नवी क्लास में आता तो पुरानी जी की कॉपियां होती है मेरा बे बचोड़ा पन्ना फाड़ बना मेरी एक कॉपी बना
0: यहाँ तक की किताबें भी आप बड़े लेता रहता आप बड़ा मतलब आप कपड़ा भी क्या करता कि बड़े बहरा छोटा हो गया आप पहन लेता वह बचत ही तो थी आप संस्कार ही था वह क्या करता था वो एक तरीको था पर्यावरण की रक्षा करने रो सागे सागे बचत रो पाठ सिखाने रो वह एक खुद एक पंखे में रह जाता पर बचत मतलब बचत तो वह हमेशा ही आप जीवन रो एक हिस्सा बनाए है।
1: तो आप वही देखो बिना जानकारी के आप बचत है जिकी आप जीवन रे मायने किया काम आ सके है और टाबरा वास्ते भी किया काम आ सके। इन वे साथ ही बहना ने सुनावा इच्छुक हुसो की तड़लो।

0: चलते चलते बना देखो इतना कैसे हो कि जीवन की छोटी छोटी बातें ही बड़ा बदलाव की शुरुआत बन जावे। इसलिए मुस्कुराता रहो, सीखता रहो और आप अनुभव दूसरों के साथ बांटता भी रहो। तो फिर मैं सब घर आऊंगी अगली चर्चा में, कार्यक्रम में एक नई सोच, नई जानकारी और अपना तो भरी नई चर्चा रे सागे। तो देवो मैंने सीख, मैं रेखा आचार्य
1: और मैं खुशबू हर्षरा।
0: राम राम राम राम सा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित। ओडिशा की प्रमुख नदियों का जलस्तर घटने से बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की विवादास्पद पर टिप्पणी को लेकर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के बाद अशांति बढ़ी। होर्मुज दरदमबंदी में जहाज पर हाल के हमलों के कारण संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान की प्रस्तावित शांति वार्ता पर अनिश्चितता और बढ़ी। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के अभियान की शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित की गई। पहले सदन के बाद राज्यसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हंगामे के बीच प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच शून्यकाल शुरू किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
1: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते। इधर ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं।

0: करके हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
1: लोकसभा में भी हंगामे की स्थिति देखने को मिली। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान उचित नहीं है।
2: लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी सहमति असहमति व्यक्त करें, लेकिन सदन चर्चाओं के लिए अपनी चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। मैं सबको पर्याप्त अवसर दूंगा।
1: दोनों सदनों की कार्यवाही इस समय जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर संसद के मॉनसून सत्र को बाधित करने का आरोप लगाया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज सुबह नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस और उसके गठबंधन दल ने प्रश्नकाल तथा शून्यकाल के दौरान हंगामा किया।
3: करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक सेशन के ऊपर। सभी सांसद अपने क्षेत्रों से प्रश्न लेकर आते हैं, वो चाहते हैं कि प्रश्न पूछा जाए, मंत्रालय जवाब दे, मगर जब से सदन आरंभ हुआ है क्वेश्चन आवर पार्लियामेंट में हो नहीं रहा। जीरो आवर के लिए पार्लियामेंट में बाधाएं उत्पन्न की जा रही, लगभग किसी बिल पे चर्चा नहीं हो रही।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में और संशोधन करेगा। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 आज राज्यसभा में विचार और पारित करने के लिए पेश किया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश करते हुए बताया कि इसका उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को अधिक कठोर बनाने तथा जन्म और मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में स्थायित्व लाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वे आज राज्यसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर दे रही थी। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत गन्ना, अनाज, दलहन, तिलहन और अन्य कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन योजना PLI एक बड़ी सफलता के रूप में उभरी है, जिससे न केवल प्रमुख क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा मिला है बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक विकास को सहायता देने वाले एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में भी सहायता मिली है।
4: MSMEs have actually benefited.
5: सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों MSME को कई तरह से लाभ मिला है। सबसे पहले MSME की परिभाषा का दायरा बढ़ाया गया है। उन्हें मिलने वाली सभी सुविधाएं पहले की तरह जारी है। समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कानून में संशोधन किए गए हैं, जिससे 90 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान संभव हो रहा है। साथ ही उद्यम पोर्टल पर MSME के पंजीकरण होने से उनके लंबित भुगतान का निपटारा भी और अधिक प्रभावी ढंग से किया जा रहा है।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को विवादास्पद बयान के संबंध में पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया। कावेरी जल विवाद को लेकर कल DMK के किसान विरोध प्रदर्शन में श्री उदयनिधि के विवादास्पद भाषण के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया है। तंजावुर की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप है कि उनके भाषण में महिलाओं के खिलाफ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। आगे की कार्रवाई के लिए उदयनिधि को तंजावुर ले जाया गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज संसद भवन में आयोजित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर और अन्य नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। भाजपा के राज्यसभा सांसद सुरेश कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की मंगल मिलन बैठक में वर्ष 2047 तक

0: को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य पर चर्चा हुई।
1: संदेश बिल्कुल साफ था, जो हमारे जो 12 साल के काम हुए हैं और पीछे के जो काम हुए उसकी तुलना में देश जो है विकास किया है, और जो लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी का आने वाले समय में 2047 का, उस लक्ष्य को लेकर हम चल रहे हैं। मनसुख भाई जी ने एक एक विषय पर विश्वास बताने का काम किया, स्पोर्ट्स के बारे में, GDP ग्रोथ के बारे में।
0: भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने कहा है कि E20 एनडीए नीति के विरोध में अरविंद केजरीवाल का प्रस्तावित मार्च भारतीय किसानों के हितों के खिलाफ है, यानी एथेनॉल मिशन कार्यक्रम से लाभ मिल रहा है।
2: उनका ये विरोध भारत के किसानों के आमदन का विरोध है। जो किसान मक्का पैदा कर रहा है, जो किसान गन्ना पैदा कर रहा है, उसके बाद करोड़ों अरबों रुपए जा रहे हैं, आप उसका विरोध कर रहे हैं। और ये जो भी मिलाया गया है, जितना भी मिलाया गया है, वो साइंटिफिक तरीके से मिलाया गया है और प्रमाणिक तरीके से हुआ है, इसका किसी भी वाहन पर कोई असर नहीं हो रहा है।
0: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा संशोधन विधेयक 2026 के अंतर्गत

0: अदा कर रहा है, उसके पास करोड़ों अरबों रुपए जा रहे हैं, आप उसका विरोध कर रहे हैं। और ये जो भी मिलाया गया है, जितना भी मिलाया गया है, वो साइंटिफिक तरीके से मिलाया गया है और प्रमाणिक तरीके से हुआ है, इसका किसी भी वाहन पर कोई असर नहीं हो रहा है।
1: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा संशोधन विधेयक 2026 के अंतर्गत किसी भी राज्य और लाभार्थी को मिलने वाले अनाज में कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरे प्रश्नों का उत्तर देते हुए ये जानकारी दी। श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है।
2: सभी विधायकों ने अपने सुझाव दिए हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सार्वभौमिक कवरेज के संदर्भ में देश के 75% परिवारों में 4 से कम लाभार्थी हैं। इन सभी परिवारों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा है। वहीं लगभग 14% परिवार ऐसे हैं जिनमें केवल एक सदस्य है, ऐसे परिवारों को भी 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा है।
1: स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थ नियंत्रण के क्षेत्र में 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों और 19 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत किया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। वर्ष 2021 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस भारत लाया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने वर्ष 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। गृह मंत्री अमित शाह ने भगोड़ों के खिलाफ 3 सूत्री रणनीति पर बल दिया, जिसमें वैश्विक संपर्क, मजबूत समन्वय और कुशल कूटनीति शामिल है। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले की CBI जांच की मांग करते हुए भर्ती आयोगों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोप लगाए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुधीर कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। ये समिति छात्रों से बातचीत करेगी और 1 से 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वीडियो का खंडन किया है, जिसमें प्रधानमंत्री को पुराने सिक्कों की प्रदर्शनी में भागीदारी के लिए सरकार अधिकृत खरीदार का समर्थन करते हुए दिखाया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और इसे डिजिटल रूप से छेड़छाड़ करके बनाया गया है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। महानदी सहित प्रमुख नदियों का जलस्तर घट रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: ओडिशा में बाढ़ के बाद हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं। सोमवार रात से महानदी में बाढ़ का पानी कम होने लगा है। हालांकि कई परिवार अभी भी बेघर हैं, क्योंकि निचले इलाकों से पानी पूरी तरह नहीं निकला है। इस बीच हीराकुद बांध प्रशासन पानी का बहाव कम होने के बाद 13 स्लुइस गेटों से नियंत्रित तरीके से बाढ़ का पानी छोड़ रहा है, जिससे जलाशय पर दबाव कम करने में मदद मिल रही है। IMD ने अगले 2 दिनों में राज्य के कई हिस्सों में आंधी तूफान और बिजली गिरने का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: केरलम के 8 जिलों में आज मूसलाधार वर्षा की आशंका को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: केरलम के 14 जिलों में से 8 जिलों में रेड अलर्ट और 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश और बाढ़ के कारण 13,000 से अधिक लोग अब भी राहत शिविरों में रह रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। आज मुख्यमंत्री VD सतीशन ने पथनमथिट्टा जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। राज्य सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और भूस्खलन की आशंका वाले इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पुलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरल, माहे और दक्षिण आंध्रिक कर्नाटक में तेज वर्षा का अनुमान है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान

के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर गोलीबारी की और आंसू गैस के गोले दागे। समिति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घटनास्थल का फुटेज साझा करते हुए ये जानकारी दी। ये घटनाएं पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सेना की बढ़ती क्रूरता के बीच हुई है। यहां पिछले कुछ दिनों में कथित तौर पर 50 से अधिक लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। होर्मुज़ दर्रा भूमध्य में जहाज पर हाल के हमलों के कारण संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान की प्रस्तावित शांति वार्ता पर अनिश्चितता और बढ़ गई है। एक मालवाहक पोत पर आज होर्मुज़ दर्रा भूमध्य से गुजरते समय मिसाइल से हमला होने की खबर है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के अनुसार ये घटना रणनीतिक जलमार्ग के दक्षिण किनारे पर ओमान के अल खसाब से लगभग 20 समुद्र मील उत्तर पूर्व में हुई। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो गया है। कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय की जोड़ी ने पुरुष डबल्स का पहला मैच जीत लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर, विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित, लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। ओडिशा की प्रमुख नदियों का जलस्तर घटने के बाद बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की विवादास्पद टिप्पणी को लेकर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मांग जिले में निहत्थे नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के बाद अशांति बढ़ी और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के अभियान की शुरुआत।

मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत बेटा फिल्म का। ये गीत सुनिए, स्वर है अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेवा के।

जख्म फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना अलका याग्निक के स्वर में। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, फिल्म का नाम है बागी 4, स्वर है बी ट्रैक और सिद्धांत मिश्रा के।

खामोशी फिल्म से अभी आपने गीत सुना, स्वर थे अलका याग्निक और हरी हरण के। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, फिल्म का नाम है थानेदार, स्वर है बप्पी लहरी, अनुराधा पोडवाल और साथियों के।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। दोपहर के 3 बज रहे हैं, हमारी ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे हमारी नियमित सांधिकालीन सभा में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।

0: ट्रांसमीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। इस समय संध्या के 5 बजने को हमारी सांध्यकालीन सभा प्रारंभ होती है। इस समय में ये सबसे पहले सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को तथाकथित स्थानीय चुनावों को पूरी तरह से दिखावा करार दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये खोखले प्रयास वास्तविकता को छिपा नहीं सकते। पीओजेके में जो हो रहा है वो जनता का विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सेना द्वारा अंधाधुंध हत्याएं हैं।
2: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग भी मारे गए हैं और कई एक अन्य घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और दुनिया को मानवाधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडी उपदेशों को देखना चाहिए। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। विधेयक में प्रावधान है कि यदि किसी जन्म या मृत्यु की सूचना पंजीयक को उसके घटित होने के 1 वर्ष से अधिक लेकिन 2 वर्ष के भीतर दी जाती है तो जन्म या मृत्यु की प्रमाणिकता के सत्यापन के बाद ही जिला मजिस्ट्रेट, उप विभागीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट की स्वीकृति से इसका पंजीकरण किया जा सकता है। लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। यह राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 19 लाख से अधिक परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। उन्होंने कहा कि ये योजना लोगों को सशक्त बना रही है। ये योजना भारत के स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने में गति प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि 25,000 से अधिक केंद्रीय सरकारी भवन और 81,000 से अधिक राज्य सरकारी भवन अब छत पर लगे सौर पैनल से संचालित हो रहे हैं। सरकार परीक्षण अवसंरचना को बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का उपयोग शुरू करेगी। उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव निधि खरे ने नई दिल्ली में कहा कि ऐसी अवसंरचना से नमूनों के परीक्षण की लागत कम होगी। इससे सटीकता और पता लगाने की क्षमता में वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्व राज्यपाल डीवाई पाटिल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री पाटिल समाज सेवा में विशेष रूप से परोपकार और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहे। श्री मोदी ने कहा कि पूर्व राज्यपाल ने हमेशा दूसरों विशेषकर गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम किया है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 210 अंक कम होकर 78,429 पर बंद हुआ। निफ्टी 159 अंक गिरकर 24,615 दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कई हिस्सों में आज हल्की वर्षा हो रही है। ओडिशा ने अगले 2 दिन के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। कोरिया

0: पुरुष बैडमिंटन में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्ण मूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने थाईलैंड के वोरापोल थोंगसानगा और चालो एम पोन चारो एन कीर्तामोन को हराया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के डोरमारू चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 5:05 हुए हैं। अब युवा साथी सुनिए अपना कार्यक्रम युवा वाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके मन पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी में। मैं हूं आपकी दोस्त साक्षी।
1: और मैं हूं आपकी दोस्त मंगल। दोस्तों, उम्मीद है आपकी शाम मुस्कुराती हुई होगी और ऊर्जा से भरपूर गुजर रही होगी। वैसे साक्षी, एक बात बताओ, सुबह सुबह जब मैं एक स्टूडियो आ रही थी तो रास्ते में मैंने देखा कुछ कॉलेज के लड़का लड़की मिलकर एक पार्क में बर्ड फीडिंग कर रहे थे, यानी कि बर्ड्स को खाना खिला रहे थे और लोग पौधे भी बांट रहे थे। मुझे उनको देखकर बहुत अच्छा लगा और मेरे चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ गई।
0: सच है निर्मल, युवाओं का ये जोश ही तो है जो हर जगह नई उमंग भर देता है। और जानते हैं दोस्तों, आज सुबह जब मैं न्यूज देख रही थी तो एक 21 साल के युवा की खबर आई जिसने एक ऐसा AI टूल बनाया है निर्मल, जो किसानों को मिट्टी की सेहत पहले ही बता देगा।
1: अरे वाह, ये कितना शानदार इनोवेशन है। सच में साक्षी, आज के युवा सिर्फ सपने नहीं देख रहा बल्कि उन सपनों को सच करने के लिए दिन रात मेहनत भी कर रहा है।
0: बिल्कुल, और इसी बात से जुड़ा है आज का हमारा खास विषय, विकसित भारत में युवाओं की भूमिका। जब हम 2047 तक भारत को एक पूरी तरह से विकसित राष्ट्र यानी कि डेवलप्ड नेशन बनने की बात करते हैं तो उस इमारत की सबसे मजबूत नींव हमारे देश का युवा ही तो है।
1: बिल्कुल, तुमने 100% सच बात कही। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश माना जाता है। हमारी 65% से ज्यादा आबादी 35 साल के कम उम्र के लोग हैं। इसका सीधा सा ये मतलब है साक्षी कि हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड की वो ताकत है जो दुनिया के किसी और देश के पास नहीं है। ये सवाल उठता है हमारे मन में कि इस ताकत का सही इस्तेमाल कैसे हो।
0: बहुत सही सवाल उठाया मुन्नू तुमने। विकसित भारत का सपना सिर्फ सरकार की योजना से पूरा नहीं होगा, इसके लिए हर युवा को आगे आना होगा और इसकी शुरुआत ही होती है सोच से। आज का युवा सिर्फ जॉब सीकर यानी कि नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर यानी कि नौकरी देने वाला बन रहा है।
1: बिल्कुल साक्षी, आज हम सभी स्टार्टअप कल्चर को देख रहे हैं और वो हमारी सबसे बड़ी मजबूती है, चाहे टेक फील्ड हो या एग्री टेक हो, फिर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो। हमारे युवा नए नए आइडियाज के साथ मार्केट में उतर रहे हैं और वह समस्या से कभी घबराते नहीं है लेकिन समस्या को देखकर उनका सॉल्यूशन निकालते हैं, और वही आजकल डिजिटल और इनोवेटिव हल और उनका सॉल्यूशन ढूंढने में बिलीव करते हैं।
0: और निर्मल, बात सिर्फ बिजनेस या फिर टेक्नोलॉजी की नहीं है, सामाजिक बदलाव में भी युवाओं की भूमिका सबसे आगे है। डिजिटल लिटरेसी बढ़ाना हो, एनवायरनमेंट की रक्षा करना हो या फिर अपने आसपास सफाई का ध्यान रखना हो, युवा जो है हर मोर्चे में आगे है।
1: बिल्कुल, और सबसे खूबसूरत बात पता है क्या साक्षी? आज का भारतीय युवा अपनी जड़ों, अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़े रहते हैं, उसके साथ साथ ग्लोबल सोच भी रखते हैं। हम अपनी लोकल चीजों को ग्लोबल पहचान भी दिला रहे हैं, चाहे वो हमारे राजस्थान की हस्तकला हो, देसी खान पान हो या फिर हमारा योग और आयुर्वेद।
0: बिल्कुल सही, लेकिन दोस्तों विकसित भारत का रास्ता आसान भी नहीं है। इसके लिए हमें कुछ चीजें बहुत ध्यान रखनी होगी, जैसे कि सबसे पहला स्किल डेवलपमेंट यानी कि अपने स्किल्स को लगातार अपडेट करना। दूसरा है अनुशासन और नागरिक कर्तव्य यानी कि सिविक सेंस, और तीसरा है मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य।
1: बिल्कुल, क्या बात कही तुमने साक्षी। हम सभी जानते हैं एक स्वस्थ और शिक्षित और स्किल युवा ही देश को आगे ले जा सकता है। दोस्तों, अगर देश का हर युवा अपनी जिम्मेदारी समझे, सही दिशा में कदम बढ़ाए

0: और शॉर्टकट की बजाय मेहनत पे भरोसा रखे तो भारत को दुनिया का सबसे बड़ी ताकत बनने से कोई नहीं रोक सकता।
1: बिल्कुल, तो जितने भी हमारे युवा साथी रेडियो सुन रहे हैं, आपसे बस यही कहना है कि हम युवा भारत का भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान भी हैं। आपकी हर छोटी सी कोशिश देश के बड़े सपनों को साकार करने में योगदान दे रही है।
0: बात तो तुमने दिल को छूने वाली कर दी। देश के विकास का ये सफर हम सबको मिलकर तय करना है, जुनून के साथ, ईमानदारी के साथ और एक दूसरे का हाथ थाम कर।
1: तो चलिए दोस्तों, इसी पॉजिटिव और एनर्जेटिक चर्चा के बाद अब वक्त हो गया है महफिल को थोड़ा संगीत में घोलने का। जब बात देश की नई ऊंचाइयों पर ले जाने की हो ही रही है, हर राह को फतेह करने की हो ही रही है, तो गाना भी कुछ ऐसा होना चाहिए ना मुमल।
0: बिल्कुल, चलिए सुनते हैं।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
1: को स्वागत है। मोबाइल चार्ज करना,
2: दिमाग चार्ज कर अपना।
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
2: देखा
1: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
3: अब क्या करोगे?
1: फ्री वाईफाई है ना?
2: बुद्धू सुधर जा।
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई।
1: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
3: RBI कहता है
4: करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रैया का।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री
2: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
3: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग
2: जी हाँ अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान
3: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से
2: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
3: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक
2: बुक कराइए अपना विज्ञापन पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक
3: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का

0: दोस्तों अब समय हो चुका है आपके फेवरेट सेगमेंट का यानी कि क्वेश्चन का, जिसमें हम आपसे पूछते हैं दो प्रश्न और उसके उत्तर हम आपको कार्यक्रम के अंत में बताते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे। मैं अपना सवाल फिर से दोहराऊंगी, ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते थे। और दोस्तों वही आज का दूसरा सवाल होगा, जुलाई 2026 में राष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन राजस्थान के किस शहर में हुआ है। आज का दूसरा प्रश्न फिर से सुनिए, जुलाई 2026 में राष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन राजस्थान के किस शहर में हुआ है। दोस्तों इनके जवाब आप सोच के रखिए, हम कार्यक्रम के अंत में जरूर बताएंगे। साक्षी, आज जब मैंने अखबार पढ़ा और मैं पढ़ते पढ़ते एक ऐसे पेज पर नजर गई जहां मैंने इतिहास के बारे में लिखा था और वह हमें इतिहास की याद दिलाता था। हम सोचते हैं कि हमें आजादी मिली और इतनी आसान लगती है, लेकिन जब आजादी की नींव रखी गई उस नींव में कितने महान विचारकों और नेताओं का योगदान रहा है, इसके बारे में हम भूल चुके हैं ऐसा लगता है।
1: बिल्कुल भूल चुके हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एक भारत के ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर वकील और जिन्हें लॉयन ऑफ बॉम्बे के नाम से भी जाना जाता है, जो कि है फिरोज शाह मेहता, और उनकी जयंती के बारे में आज हम बात करने वाले हैं।
0: फिरोज शाह मेहता जी, जिन्हें बॉम्बे का बेताज बादशाह कहा जाता है। साक्षी, आज हम हमारे जो युवा साथी हैं उनका जीवन एक खुली किताब की तरह है और इन्होंने हमेशा युवाओं को इंस्पायर किया है। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापकों में से एक रहे हैं।
1: बिल्कुल मोमल, 4 अगस्त 1845 में जन्मे फिरोज शाह जी ने उस दौर में अंग्रेजों की नीतियों

0: के खिलाफ निडर होकर आवाज उठाई थी, जब बोलना भी आसान नहीं था। वो एक लॉयर थे और उनका मानना था कि न्याय और आजादी के लिए तर्क और कानून की समझ होना बहुत जरूरी है।
1: और साक्षी युवाओं के लिए खास बात यह है कि उन्होंने अपनी बात को आजादी से जनता तक पहुंचाने के लिए द बॉम्बे क्रॉनिकल अखबार की शुरुआत की थी, जिसे आजादी के आंदोलन में युवाओं की आवाज को बुलंद भी किया।
0: सच में मुमल, आज जब हम युवा में लीडरशिप और ये नागरिक कर्तव्य की बात करते हैं ना, तो फिरोज शाह मेहता जी का जीवन हमें सिखाता है कि ईमानदारी, निडरता और अपने समाज के प्रति जिम्मेदारी ही असली हमारा नेतृत्व है।
1: तो दोस्तों, इन महान नायक की जयंती पर हम सभी एक संकल्प लें, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, कि हम हमारे देश और समाज को विकास करेंगे, उनको विकसित बनाने में मदद करेंगे और एक दूसरे का हाथ पकड़कर डट कर खड़े रहेंगे, ताकि हमारा देश आगे बढ़े और हम सब एक साथ मिलकर अपने देश को एक नई जगह पहुंचा पाएं।

0: दोस्तों, हमने कार्यक्रम में बहुत सारी विषयों पर बातचीत की, लेकिन अब सुनेंगे हम कहानी जिसका शीर्षक है पुन्याई। कार्यकार है श्रीमती आरती छंगाई और प्रस्तुति है श्री रेवंत राम लेगा जी की, संयोजन है श्री अमित सिंह जी की। चलिए सुनते हैं।
1: नमस्कार श्रोताओं, कहानी रो शीर्षक है पुन्याई। राकेश आपली माँ बापू जी री पोछड़ी संतान हो, वो जस्सु जन्म लेर धरती माथे आयो उन दिना सु आपने कंधे माथे घनी सारी जिम्मेदारियां ले री आयो। गांव रे माए दो कमियारी रसोई पनिंडर अलावा खुली बाखर रो घर बाखर रे चारों मेड़ बांध करियो री ही। मगन काका खुद गांव में एक छोटी परचूनी दुकान माथे नौकरी करन वाला ईमानदार आदमी हा। आपरे काम सुकाम मतलब राखता, गांव में किंसु भी उना कदे ऊंची आवाज में बात नहीं करी। सीधा सादा और बिना दड़क भड़क रहे आपरी गृहस्थी गाड़ी चला रिया हा। उमारे चार बेटियां रे बाद राकेश जन्म, पर वारे मगन काका उन गांव

बापूजी री पोछड़ी संतान हो। वो जस्सू जन्म लेर धरती माथे आयो उन दिना सु आपने कंधे माथे घनी सारी जिम्मेदारियां लेर ही आयो। गांव रे माई दो कमियारी रसोई पनिंडर अलावा खुली बाखड़ रो घर बाखड़ रे चारों मेड़ बांध करोड़ी ही। मगन काका खुद गांव में एक छोटी परचून की दुकान माथे नौकरी करने वाला ईमानदार आदमी हाँ। आपरे काम सुकाम मतलब राखता गांव में किन सुबी उना कदे ऊंची आवाज में बात नहीं करी। सीधा सादा और बिना दड़क भड़क रहे आपरी गृहस्थी गाड़ी चला रिया हाँ। उमारे चार बेटियां रे बाद राकेश जन्म पर वारे मगन काका उन गांव जिसे मोहल में जद बेटियां हुई तो भी उत्सव मनायो रूढ़िवादिता माथे चोट करियो। बो ही जद राकेश हुयो तो भी उहां बेटियां सु ज्यादा नी करियो। भले ही मगन काका कम पड़ियोड़ा हा पण बे आपरे विवेक रे बल माथे आवे गांव में एक नवी मिसाल राख दी। भगत पर भगत बीती राकेश आपने घर रे आंगण बालपणे री मस्ती सु आपरे परिवार रे बड़ा बुजुर्गा बीच शांति दौड़ कर ली। एक थेलो थेले माया पार्टी भरतो लेर राकेश जा स्कूल जावन लाग्यो। राकेश री माँ सूरज देवी बहुत ही सुलझोनी धीजो राखनाली और समाज परिवार में भेड़प राखनाली मर्दानी लुगाई ही। बिया आपरे राकेश ने हमेशा सच रो मारग और आपने काम में लगन इन दो बाता राकेश रे हिये कूट कूट भर दी। राकेश समय रे साथे कुमार अवस्था माया कदम धरियो ही हो उन भगत घरी माड़ी हालत देख बो पढ़ाई रे साथे कोई काम देखन री कोशिश करी पण उनरे माँ बाप रे नी जची। चार बेणिया री रिश्ते री और हाथ पीड़ा करने री चिंता मगन काका ने लागोड़ी रहती। बड़ी दो बेणिया दो बेटियां रो ब्याह आपने बूथे सूबी भड्र पराई कर दी। गांव सु 30-40 किलोमीटर दूर गांव में आछे घरा माई दोनों बेटियां आपरे सुख सु रेवन लागी। समय रो खेल निरालो है आदमी सोचे काई हुए काई राकेश अब आपनी जिम्मेदारियां ने कांधे लेवन री शुरुआत करी। बो घर रे काम और पढ़ाई रे साथे साथे ट्यूशन पढ़ाने रो काम भी शुरू कर दियो। बो आपरी आखे गांव माया आभारी पहचान वे पकड़ बना ली। चलती गाड़ी माया ज्या ब्रेक लाग जावे नी पिया ही राकेश री माता जी जका ने सांस री बीमारी लागी ही। दवाया सू बरसो काम चलाण आली बा माँ छेकड़ माया हार मान गई। बीरे संसार सू विदा होते ही बात तो राकेश एक बार सकते माया आ गयो पण उन भगत माँ रे देवड़ी सीख काना माया गूंजरी ही कि बेटा हिम्मत नी हारनो आगे बदनो। मगन काका भी उमर री पड़ाव माथे दो बैणा रो जकारो ब्याह करनो बाकी हूँ। निहारी भी सूरज देवी रो लाडलो गांव सु महानगर माए जार आपरी बुद्धि रो हुनर दिखानो शुरू करियो। बो बुद्धिमान ज्योतिष रो जानकार बंड महानगर माए ढंगरी मजूरी करन लाग्यो। समय पाछी करवटली मगन काका रे माथे परिवारी जिम्मेदारियां निभाते दो पिसा गांव रे सेठरा माथे भी हो गया हा। सबसु पहला राकेश आपरे पिताजी ने कर्ज मुक्त करायो। मगन काका जका हमेशा छाने छाने सबसु निजरा बचार आँख्या सु पानी काड लेवता आज उनरी आँख्या डबडबार रही ही सीनो चोड़ो हो रियो हो। बे आबे खानी देख बिना बोलिया हाथ जोड़ खड़ा रह गया। धन्यवाद है राकेश जेड़ा बेटा ने जका आपरी जिम्मेदारियां माई कदे पग पाछा नी मेले। मगन काकारी भी उमर आएगी ही राकेश चाहतो की यारे सामे ही दोनों बेणा ने कोई आछो सो ठिकानो देख हाथ पीड़ा कर दूं पण ऊपर आड़े रे ज्या लिखोड़ो हुए है नी भी मैं ना तो तिल बड़े और ना ही राई घटे। मगन काका भी आपरी माया समेट ली। अबे राकेश अकेलो पड़ गयो पण जोश जुनून जिगरो आड़ो गुणा माए बो अपने आप ने संभाल सक्रिय हो गयो। बीरी चारू बैणा भी

0: राकेश ने कदई अकेलो को नहीं छोड़ियो। हर मोड़ माथे सात देवती और ढाल बन रहे अगाड़ी रहती। जिम्मेदारियां पर जिम्मेदारियां निभाने दी खेचल माया राकेश खुद भरपूर जवानी माया आग्यो हो। राकेश री बैना रण मिल छोटे भाई रे रिश्ते री बात बढ़ाई। राकेश जी से छोरे वास्ते कुण सी छोरियां री कमी ही। शहर में ही आछो घर घराने माया राकेशो रिश्तो ते हुयो। राकेश आपरे रिश्ते माया भी समाज री रीति रिवाज माए कोई अनुती कुरीतियां ही उना पर भी खुल चोट करी। छोटे मोटे विरोधा रे बिना परवाह करे भी समाज माया संदेश भी दियो कि इन अनुते कुरीति रिवाज पर कमान कसने री जरूरत है। घर माई ब्याह री तैयारियां खूब जोरो शोरों सु चाल री ही पण भाग्य ने कई औरी मंजूर हो। राकेश री बड़ी बहन उषा रे घरवाला गोविंद जी रो आकस्मिक स्वर्गवास हो गयो। राकेश रे जीवन में एक और दुखारो पहाड़ पड़ गयो। आपने आपने संभाल उषा बहन और 2 साल रे भाणजे ने छाती चेप ढाढस बांधियो। जठे लोग जूनी व्यवस्था ने थोपण रो प्यास शुरू करियो बठे राकेश अपनी विचारधारा ने समाज सु मानिसता घनु काका रे आगे राखी। घनु काका बोलिया, नी राकेश इया कदे होयो कोनी। राकेश बोलियो, नी काका मैं तुम्हारी उषा बहन खातिर कोई दूजो लड़को ढूंढ दूजो ब्याह कर देसु। काका बोलिया, टाबर सुधी बिननी कुण लेसी गली ग्वाड़ सब हसी उड़ासी। पण राकेश डटियो नी बी भगत बीती आछो घराणो देख एक पढ़ियो लिखियो युवा राजेंद्र जको महानगर माए व्यापारी हो उल्टे हालात माए राकेश आ बात स्पष्ट राख बहन रो दूजी बार घर बसाना दियो। ओ अपने आप में अड़ाईदो उदाहरण हो। समाज रा मानिसता लोगा री उपस्थिति माए समाज रे अखबारा माए समाज री बे पोथिया माए भी राकेश रे इन कदम पर जमकर छाप्यो। विवारो फोटो सहित समाज री पहली पहल और समाज पर समाज रा मानिसता लेखक आपरो सांत्रो आलेख लिख भूरी भूरी प्रशंसा करी। समाज रे बड़ा बड़ा मंचा माथे युवा राजेंद्र रे टाबर सहित उषा ने अपनी धर्म पत्नी बनावण री हो माए गोल्ड मेडल सु आके समाज रे बीच सम्मान करियो। राकेश कदे भी नी रुकन आलो बो झुंझारू युवा हो जको आपने यार मित्रा में भी पकड़ राखतो। छेकड़ माई बा भगत आई बैना भाई ने लाडे गोडे घोड़ी पर सवार भाई ने बीन बनार परना लाई। कदे आंख्या माई पानी नी लावन आलो राकेश बाको फाड़ फाड़ रोवण ठुगो। बाबीरी बरसान बरस दबोड़ी गमारी चिंगारी ही जको ज्वालामुखी बन फाटगी। बैणारे समझाने पर राकेश पाछे अपने आप ने अपनी हद माया राख संभल क्यों कहवे है नी ऊपर आड़ो करे है नी वो एकदम ठीक करे। राकेश रे ब्याह सु पहला आ चिंता रहती कि बीनणी किसी आसी पन पासो उल्टो ही पड़ गयो। बीनणी घर घराने री ही घर ने संभालनो घरे आवड़ा मेहमाना ने आदर देवनो बहन बेटियां रो एडो टाकड़ो आछे सुकड़नो हो हर काम माया आगड़ी रहनो सुख दुख माया हाथ बटावनो। साची कहूँ तो ऐसा भाई भोजाई किस्मत रे धनिया ने ही मिले। राकेश आपनी जोड़ायत रो और रुख देख आनंदित होर आबे खानी देख हाथ जोड़ बिना शब्द हुई गयो।
1: दोस्तों अभी हम सुन रहे थे कहानी पुण्याई। कहानीकार थी श्रीमती आरती चंगा।
2: अरे मुमल आज तो तुम्हारे चेहरे पर अलग ही चमक है, क्या बात है, कहीं घूमकर आई हो क्या?
1: अरे हाँ, अभी 2 दिन पहले ही भरतपुर के केवला देव राष्ट्रीय उद्यान से लौटी हूँ साक्षी। यकीन मानो ऐसा लगा जैसे कुछ घंटों के लिए नहीं बल्कि पूरी तरह प्रकृति की गोद में पहुंच गई।
2: वाह, मैं तो काफी समय से ही सोच रही हूँ आ जाने का। सबसे पहले तो ये बताओ मुमल कि सबसे पहले वहाँ पे तुमने जाके क्या किया और क्या देखा?
1: साक्षी जैसे ही अंदर गई चारों तरफ हरियाली, झीलों का शांत पानी और पेड़ों पर बैठे सैकड़ों पक्षियों की आवाज, ऐसा

0: लग रहा था कि जैसे कोई संगीत बज रहा हो, शहर का शोर तो पलभर के लिए मैं भूल ही गई थी।
1: सच, तस्वीरों में तो बहुत खूबसूरत लगता है मुमल, लेकिन असल में तो शायद उससे भी ज्यादा होगा, है ना?
0: तस्वीरें उसकी खूबसूरती का आधा हिस्सा भी नहीं दिखा पाती। जब अचानक आसमान में पक्षियों का बड़ा सा झुंड उड़ता है तो दोस्तों नजरें वहीं की वहीं टिक जाती है।
1: वैसे इसे पक्षियों का स्वर्ग क्यों कहा जाता है?
0: क्योंकि साक्षी यहाँ पे देश विदेश के सैकड़ों प्रजातियों के पक्षी आते हैं।
1: अच्छा?
0: खासकर सर्दियों में साइबेरिया और दूसरे देशों के प्रवासी पक्षी हजार किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ पर पहुंचते हैं।
1: इतनी लंबी यात्रा, ये तो सचमुच प्रकृति का ही चमत्कार है। कौन कौन से पक्षी देखने को मिले तुम्हें?
0: पेडेंट स्टार्क, स्पूनबिल, किंगफिशर, पेलिकन, बतके और न जाने कितने। हर दूरी पर कोई नया पक्षी दिखाई दे रहा था।
1: सिर्फ पक्षी ही थे या कोई दूसरे जानवर भी?
0: नहीं नहीं, दूसरे जानवर भी थे, जैसे कि नील गाय, सांबर, जंगली सुअर, कछुए और अजगर भी देखने को मिले। पूरा उद्यान जैव विविधता का एक शानदार उदाहरण था।
1: अच्छा मुमल, वहाँ घूमने के लिए क्या करना पड़ता है? गाड़ी अंदर जाती है या फिर?
0: नहीं नहीं साक्षी, गाड़ी नहीं, ज्यादातर लोग साइकिल से जाते हैं, पैदल जाते हैं या फिर साइकिल रिक्शा से घूमते हैं। मैंने वहाँ पे साइकिल ली थी, आराम आराम से धीरे धीरे पूरा उद्यान देखा। रास्ते में कई ऐसी जगह भी थी जहाँ पे रुक कर पक्षियों को देखने का भी मौका मिला।
1: अच्छा, वैसे तुम्हें कितना समय लगा पूरा घूमने में?
0: लगभग 4-5 घंटे, लेकिन सच कहूँ समय का पता ही नहीं चला। हर मोड़ पर कुछ नया दिखने को मिला।
1: अच्छा, मैंने सुना है कि यहाँ पे इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर भी कहा जाता है।
0: इसकी प्राकृतिक संपदा और पक्षियों के संरक्षण को देखते हुए इसे विश्व धरोहर का दर्जा मिला है, और यही वजह है कि ये देश विदेश के पर्यटक और शोधकर्ता भी यहाँ पे आते हैं।
1: अच्छा, तो अगर हमारे श्रोताओं को वहाँ जाना है तो कौन सा मौसम ऐसा होगा जो सबसे अच्छा है?
0: साक्षी, वहाँ पे जाने के लिए तो हर दिन बहुत अच्छा है, लेकिन अगर तुम मौसम की बात कहो तो नवंबर से फरवरी तक का जो महीने का मौसम होता है वो बहुत सुहाना होता है, और वहाँ के जो प्रवासी पक्षी हैं उनकी संख्या भी उस समय सबसे ज़्यादा होती है।
1: अच्छा, तुम्हारी बातें सुनकर तो मेरा मन अभी कर रहा है कि मैं अभी वहां चली जाऊं।
0: जरूर जाना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना आप सभी दोस्तों, प्रकृति का आनंद तभी तक है जब तक हम उसकी रक्षा करें, वहां गंदगी ना फैलाएं, प्लास्टिक का उपयोग ना करें और सबसे जरूरी पक्षियों को परेशान ना करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने, प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, इसलिए उसकी सुरक्षा करना भी तो हमारी ड्यूटी है।
0: और अगर कभी भरतपुर जाएं आप सभी तो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान देखे बिना वापस मत आइएगा। और दोस्तों, कहा जाता है ना, जहां केवला देव उद्यान प्रकृति की शान है, वहीं कैलाश खेर की आवाज भारत की आत्मा है और भारतीय सेना उसका अटूट स्वाभिमान।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम, और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: कृपया ध्यान दें, पता है जन विश्वास अधिनियम 2026 के द्वारा रेलवे अधिनियम 1989 की कई धाराओं में बदलाव किया गया है।
1: हाँ, अब ट्रेन में बिना टिकट या अनाधिकृत टिकट धूम्रपान जैसे अपराधों पर जुर्माना राशि बढ़ाई गई है।
0: अब रेल परिसर या ट्रेन में धूम्रपान करते पाए जाने पर नए अधिनियम में 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
1: जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसके द्वारा 2000 से 5000 रुपए तक का आर्थिक दंड दिया जा सकता है।
0: ये जन विश्वास अधिनियम ट्रेन में यात्रियों को सुरक्षित, संरक्षित और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने और रेल प्रशासन पर आपका भरोसा कायम रखने के लिए बनाया गया है।
1: उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: जब सुन रहा

0: माह के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: कृपया ध्यान दें, पता है जन विश्वास अधिनियम 2026 के द्वारा रेलवे अधिनियम 1989 की कई धाराओं में बदलाव किया गया है।
2: हाँ, अब ट्रेन में बिना टिकट या अनाधिकृत टिकट धूम्रपान जैसे अपराधों पर जुर्माना राशि बढ़ाई गई है।
1: अब रेल परिसर या ट्रेन में धूम्रपान करते पाए जाने पर नए अधिनियम में 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
2: जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसके द्वारा 2000 से 5000 रुपए तक का आर्थिक दंड दिया जा सकता है।
1: ये जन विश्वास अधिनियम ट्रेन में यात्रियों को सुरक्षित, संरक्षित और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने और रेल प्रशासन पर आपका भरोसा कायम रखने के लिए बनाया गया है।
2: उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: प्रत्येक मंगलवार

0: गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: मुमल, सावन का महीना जब से शुरू हुआ है ना, तब से बस आसमान में घने बादल अक्सर छाए हुए रहते हैं, ठंडी हवा चलती रहती है और ऐसा लगता है कि बस कुछ ही देर में बारिश शुरू ही होने वाली है। उस बस इसी खूबसूरत मौसम को देखकर मेरे मन में एक सवाल उठता है कि आखिर हर साल मानसून भारत तक आता कैसे है।
2: साक्षी, तुम्हारा सवाल तो बहुत इंटरेस्टिंग है। हम सभी बारिश का आनंद लेते हैं, लेकिन उसके पीछे की पूरी प्रक्रिया बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे लोगों को या दोस्तों को कि मानसून कैसे बनता है, भारत तक वो कैसे पहुंचता है और हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है।
1: सबसे पहले तो ये बताओ कि मानसून की शुरुआत जो है कहाँ से होती है, क्या बारिश केवल बादलों से ही होती है या इसके पीछे कोई बड़ी प्राकृतिक प्रक्रिया भी काम करती है।
2: नहीं नहीं, बारिश केवल बादलों से नहीं होती, इसके पीछे एक प्रक्रिया है। जब मानसून की शुरुआत गर्मियों से होती है, तेज धूप के कारण भारत की जो ज़मीन है बहुत गर्म हो जाती है और गर्म हवा ऊपर उठती है और वहाँ कम वायु दाब बन जाता है, यही पूरी प्रक्रिया का सबसे पहला कदम होता है।
1: जब जमीन पर कम वायु दाब बन जाता है तब समुद्र की हवाएं भारत की ओर आती है ना। और अपने साथ नमी कैसे लेकर आती है ये?
2: साक्षी, नमी हिंद महासागर, अरब महासागर और बंगाल की खाड़ी से ठंडी और नमी वाली हवाएं इस कम दाब वाले क्षेत्र की ओर बढ़ती हैं और इन हवाओं में जल वाष्प होता है और यही आगे चलकर बादल बनने में मदद करती है।
1: अच्छा मुमल, फिर ये नमी वाली हवाएं बारिश जो है वो कैसे करवाती है, क्या पहाड़ों का भी इसमें कोई रोल है?
2: बिल्कुल, जब ये हवाएं पहाड़ों और ठंडी हवाओं से टकराती हैं तो ऊपर उठ जाती हैं, ऊपर का तापमान कम होने की वजह से ये जल वाष्प ठंडी होकर बादल में कन्वर्ट हो जाती है और बादलों में पानी भर जाता है, उन्हीं वजह से ये वर्षा होने लगती है।
1: अच्छा मुमल, वैसे मैंने सुना है कि अक्सर मॉनसून की जो है वो दो शाखाएं होती है, क्या वो बताओगी तुम हमारे दोस्तों को?
2: मॉनसून की दो मुख्य शाखाएं हैं दोस्तों, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। अरब सागर शाखा पहले केरल पहुंचती है जबकि बंगाल की खाड़ी शाखा पूर्वोत्तर भारत से आगे बढ़ती है और यही दोनों मिलकर पूरे देश में वर्षा करती है।
1: मुमल, भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए मॉनसून का महत्व कितना है, क्या इसका असर केवल जो है वो खेती पर ही पड़ता है या फिर हमारे दैनिक जीवन पर भी?
2: मानसून का मौसम तो हम सबको बहुत पसंद है और ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है। इससे खेती के लिए पानी मिलता है, नदियां तालाब और बांध भरते हैं और पीने का पानी की उपलब्धता भी बढ़ती है, बिजली उत्पादन, पर्यावरण का संतुलन में भी अच्छी वर्षा बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, लेकिन अगर बारिश बहुत कम हो या बहुत ज्यादा हो जाए तो उसके क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं?
2: साक्षी, हम जानते हैं कि कम बारिश होने से सूखे की स्थिति बढ़ जाती है, यानी कि वहाँ पे सूखा पड़ने लगता है, फसलें भी खराब हो जाती है। वहीं बहुत अधिक बारिश होने पे बाढ़ आ जाती है, जल भराव बढ़ जाता है और जनधन की हानि भी हो जाती है, जैसे अभी आसाम में हुआ था, उसका खतरा बढ़ जाता है। लेकिन संतुलित वर्षा सबसे अधिक लाभदायक रहती है, हर चीज में बैलेंस बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, आज की इस चर्चा में हमें मॉनसून की पूरी प्रक्रिया बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गई है। अब जब भी बारिश होगी तो उसके पीछे ये विज्ञान हमें जरूर याद रहेगा।
2: विज्ञान तो बहुत जरूरी है, हमारी हर चीज की शुरुआत विज्ञान से ही होती है। दोस्तों, वर्षा का हर कतरा प्रकृति का अनमोल उपहार है, इसीलिए हम कहते हैं कि हमें इसका संरक्षण करना चाहिए, तभी नीले नीले अंबर की छांव में लहराते खेत, चहचहाते पक्षी और हरी भरी धरती हमारी जिम्मेदारी, जागरूकता की एक सच्ची पहचान बनेगी।

0: साक्षी, आज जब मैं स्टूडियो आ रही थी तो मैंने सोचा रोज तो हम स्कूटी से जाते हैं, आज थोड़ा पैदल चल के जाया जाए। तुम्हें पता है क्या हुआ?
1: क्या?
0: थोड़ी सी दूर चलने पे मेरी सांस फूलने लगी। मुझे लगा अभी तो मेरी इतनी कम उम्र है फिर भी मेरी सांस फूलने लगी, इसका मतलब मेरा स्टेमिना बहुत वीक हो गया है।
1: अरे मुमल, तुम अकेली नहीं हो। आजकल हमारे ज्यादातर युवा साथी का अक्सर यही हाल होता है। दिन भर बस स्क्रीन के सामने बैठकर रील्स स्क्रॉल करना, देर रात तक जागना और जंक फूड खाना। एक्सरसाइज के नाम पर तो हम सिर्फ अपने फोन की स्क्रीन पर उंगलियां ही चलाते हैं।
0: तभी तो आज हमारा टॉपिक बहुत जरूरी है सभी युवाओं के लिए, युवा अवस्था में फिटनेस का महत्व।
1: मुमल, अक्सर लोग सोचते हैं कि घंटों जिम में पसीना बहाना या डोले शोले बनाना ही फिटनेस है, लेकिन असल में फिटनेस का मतलब है शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से एक्टिव और स्ट्रांग रहना। युवावस्था वो दौर है जहां हमारी शरीर में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है और इस उम्र में रखी अच्छी सेहत की नींव जीवन भर काम आती है।
0: तभी तो आजकल हम जब देखते हैं, हम खुद को भी अगर आकलन करें तो हम सभी थोड़ा सा चलने से कतराते हैं, हम जल्दी थक जाते हैं क्योंकि हम फिजिकली फिट नहीं हैं। जबकि हमें रनिंग, योग, साइकिलिंग और कोई भी अगर हम स्पोर्ट्स खेलें तो हमारा शरीर ही केवल फिट नहीं रहता बल्कि हमारा जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस हार्मोन भी गायब हो जाता है। पढ़ाई का प्रेशर हो या करियर की चिंता, वर्कआउट करते दिमाग एकदम फ्रेश फील करता है।
1: और इसके लिए कोई बहुत मुश्किल रूटीन बनाना जरूरी नहीं है। बस दिन में 30 से 40 मिनट खुद को देना, घर का पौष्टिक बना खाना खाना और 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेना।
0: तो दोस्तों, आप सभी भी अपना आलस की जो चादर है अगर उसे ओढ़ के बैठे हैं तो आज ही अपने दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव लाइए और बदलाव के साथ साथ आप खुद को अच्छा बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि बदलाव ही जीवन का सबसे ज़रूरी मकसद है। अपने आप को फिट करने की ट्राई करिए और एनर्जेटिक महसूस करेंगे। तो दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे पूछे थे दो सवाल, अब समय हो चुका है उसका आंसर जानने का। आज का पहला सवाल था, ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? उसका जवाब था
1: 13 स्वर्ण पदक।
0: और आज का दूसरा सवाल था, जुलाई 2026 में राष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन राजस्थान के किस शहर ने किया था?
1: जिसका सही उत्तर है जयपुर।
0: तो दोस्तों, आज हमने युवाणी में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बातचीत करी, योग के बारे में, हेल्थ के बारे में। इसी के साथ हम आपसे विदा चाहेंगे। अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। इस समय संध्या के 5:55 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण।

अब से कुछ देर बाद यानी संध्या 6:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे एक ही संगीतकार के संगीतबद्ध फिल्मी गीत। आज के संगीतकार होंगे नौशाद।

संध्या 7 बजे आप सुनेंगे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जयपुर के आमेर चैनल से रिले करेंगे।

ग्रामीण भाई सुनेंगे कार्यक्रम ग्रामीण जगत संध्या 7:30 पर। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे संसद समीक्षा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

हमारे श्रोता फिल्म संगीत सुनेंगे रात्रि 8:15 पर। लोक संगीत आप सुन सकते हैं रात्रि 8:30 पर।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 6 बजने को है। अब आप समाचार सुनेंगे, समाचार हिंदी में होंगे।

0: पीठ की शायद जरूरत ना पड़े।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को पूरी तरह से दिखावा करार दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये खोखले प्रयास वास्तविकता को छिपा नहीं सकते।
2: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग भी मारे गए हैं और कई एक अन्य घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
1: संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इसी राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है और ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 19 लाख से अधिक परिवारों का बिजली बिल अब शून्य हो गया है। उन्होंने कहा कि ये योजना लोगों को सशक्त बना रही है। ये योजना भारत को स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने में गति प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि 25,000 से अधिक केंद्रीय सरकारी भवन और 81,000 से अधिक राज्य सरकारी भवन अब छतों पर लगे सौर पैनल से संचालित हो रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के बावजूद भारत में ईंधन की कमी या आपूर्ति में कोई व्यवधान नहीं आया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पर्याप्त मात्रा में ईंधन भंडार को बनाए रखा है। इस दौरान घरेलू उपयोग के लिए एलपीजी और एलएनजी की 100% उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। सरकार परीक्षण अवसंरचना को और बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का इस्तेमाल शुरू करेगी। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे ने नई दिल्ली में कहा कि ऐसी अवसंरचना से नमूनों के परीक्षण की लागत और कम होगी। इससे सटीकता और पता लगाने की क्षमता में भी वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्व राज्यपाल डीवाई पाटिल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री पाटिल समाज सेवा में विशेष रूप से परोपकार और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहे। श्री मोदी ने कहा कि पूर्व राज्यपाल ने हमेशा दूसरों, विशेषकर गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम किया। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 210 अंक कम होकर 78,429 पर बंद हुआ। निफ्टी 159 अंक गिरकर 24,615 दर्ज हुआ। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने थाईलैंड के वोर्रापोल थोंगसा नला और चालो एम्पोन चारोएन कितामोर्न को हराया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारो चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 6:05 हुए हैं। एक ही संगीतकार, आइए सुनते हैं फिल्म गीतों का यह कार्यक्रम। आज के संगीतकार हैं नौशाद। नौशाद का संगीतबद्ध यह पहला गीत सुनिए। आवाज लता मंगेशकर की है और फिल्म का नाम है मदर इंडिया।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3: एक ही संगीतकार कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं संगीतकार नौशाद का संगीतबद्ध एक और गीत। आवाज मुकेश की है, फिल्म का नाम है अंदाज़।

ये गीत हमने लिया था फिल्म धरती से, क्षमा करें, ये गीत हमने लिया था फिल्म सन ऑफ इंडिया से। स्वर मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का था। इन्हीं आवाज़ों में आइए सुनते हैं एक और गीत, फिल्म का नाम है धरती।

0: बाधित। गृह मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 5 सालों में 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत राजस्थान में अब तक 2,55,00,000 से अधिक छोटे उद्यमी लाभान्वित और उत्तरी पूर्वी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में चक्रवाती परिसंचरण तंत्र सक्रिय। अगले 2 दिन भरतपुर, बीकानेर और जयपुर संभाग में हल्की से मध्यम बारिश के आसार। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर शोर शराबा किया। राज्यसभा के सभापति सीबी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच शून्यकाल शुरू किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
1: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन करके जो जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: लोकसभा में भी हंगामे की स्थिति देखने को मिली। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, किंतु विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठा लिया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
2: लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सब की जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी सहमति असहमति व्यक्त करें, लेकिन सदन चर्चाओं के लिए ही चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। मैं सबको पर्याप्त अवसर दूंगा।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसमें टैक्स, डिजिटल भुगतान और निपटान प्रणाली के नियमों को सरल बनाने का प्रस्ताव है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए एकीकृत खुफिया आधारित प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित किया है। मंत्रालय ने बताया कि 2021 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया गया है। सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। 2014 से पहले भारत के केवल 37 देशों के साथ प्रत्यर्पण समझौते थे और आर्थिक भगोड़ों से निपटने या उनकी संपत्ति जब्त करने के लिए कोई कानून भी नहीं था। मंत्रालय ने बताया कि 2004 से 2013 के बीच भारत औसतन हर साल केवल 4 भगोड़ों का प्रत्यर्पण कर सका, जबकि 110 प्रत्यर्पण अनुरोध लंबित रहे। पिछले 3 वर्षों में इंटरपोल की ओर से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने में काफी बढ़ोतरी हुई है और 401 भगोड़े अपराधियों के खिलाफ नोटिस जारी किए गए हैं। सरकार ने भारत पोल की शुरुआत की, जिसके माध्यम से 1400 से अधिक एजेंसियों को इंटरपोल से जोड़ा गया। इससे सूचना साझा करने में लगने वाला समय घटकर 3 से 10 दिन हो गया। गृह मंत्री अमित शाह ने भगोड़े अपराधियों के मुद्दे को देश की संप्रभुता, आर्थिक स्थिरता, कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ बताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 16 अगस्त को अलवर आने का कार्यक्रम है। अपने इस दौरे में श्री शाह करीब 250 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सरस डेयरी प्लांट का शिलान्यास करेंगे। वे अलवर मेडिकल कॉलेज के नए भवन का भी उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर आज वन मंत्री संजय शर्मा की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक हुई। बैठक में जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला, सरस डेयरी चेयरमैन नितिन सांगवान और पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे की तैयारियों को लेकर चर्चा की।

0: यह आवाज थी यशुदास और साथियों की। फिल्म का नाम था चश्मे बद्दूर। इसके साथ ही एक ही संगीतकार कार्यक्रम समाप्त हुआ। आज आपने संगीतकार नौशाद के संगीतबद्ध फिल्मी गीत सुने। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारो चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 6:30 हुए हैं। अब हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण कई बार

0: केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 19 लाख से ज्यादा परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज उन्होंने कहा कि यह योजना नागरिकों को सशक्त बना रही है, इससे स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ने में गति मिली है। उन्होंने बताया कि 25,000 से ज्यादा केंद्रीय और 81,000 से अधिक राज्य सरकारी इमारतों की छतों पर सोलर सिस्टम लगाए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत राजस्थान में अब तक 2,55,00,000 से अधिक लाभार्थियों को लगभग 2,18,000 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया है। इस योजना के माध्यम से छोटे उद्योगों, रेहड़ी पटरी पर सामान बेचने वालों, दुकानदारों, कारीगरों और उद्यमियों को बिना गारंटी संस्थागत वित्त पोषण उपलब्ध कराया जा रहा है। लगभग 60% हिस्सेदारी के साथ इस योजना में महिलाओं की बढ़ चढ़ कर भागीदारी रही है। अब तक 1,54,00,000 से अधिक महिलाओं को 67,982 करोड़ से अधिक का ऋण मिला है। देश भर में इस साल जून महीने तक योजना के तहत 59 करोड़ से ज्यादा लोगों के ऋण मंजूर किए गए हैं। गौरतलब है कि यह योजना साल 2015 में शुरू की गई थी। इसमें लघु उद्यमों को 20 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। इससे स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिला है। भौगोलिक संकेत यानी GI टैग स्थानीय समुदायों के लिए आर्थिक अवसर पैदा करते हुए सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए एक मजबूत माध्यम के रूप में उभरा है। उत्पादों को उनके मूल स्थान से जोड़कर GI टैग पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करते हैं, दुरुपयोग को रोकते हैं और उपभोक्ता के विश्वास को बढ़ाते हैं। राजस्थान में 24 विभिन्न उत्पादों को GI टैग्स मिल चुके हैं। पेश है न्यूज डेस्क से हमारी सहयोगी डॉक्टर सालेया गाजी की एक रिपोर्ट।
1: GI टैग कारीगरों, बुनकरों, किसानों और उत्पादक समूहों को बेहतर बाजार पहचान हासिल करने और प्रीमियम बाजारों तक पहुंच बनाने में मदद करते हैं। जोधपुरी मोजड़ी, नागौरी अश्वगंधा, कैर सांगरी, बीकानेरी भुजिया, ब्लू पॉटरी, कठपुतली और कोटा डोरिया सहित राजस्थान के कई ऐसे उत्पाद हैं जिन्हें GI टैग मिल चुका है। GI टैग प्रोडक्ट की पहचान को मजबूती देता है, साथ ही कानूनी सुरक्षा देता है और ये भी बताता है कि उसकी खासियत मूल इलाके से जुड़ी है। सरकार की पहल, वित्तीय सहायता, निर्यात संवर्धन, पर्यटन एकीकरण और समर्पित विपणन प्लेटफॉर्म के माध्यम से इनका इकोसिस्टम मजबूत हो रहा है। ये प्रयास GI टैग उत्पादों को ग्रामीण विकास, सांस्कृतिक संरक्षण और निर्यात आधारित विकास के वाहकों के रूप में बदल रहे हैं।
0: और अब मौसम। राज्य के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र अब उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर परिसंचरण तंत्र में बदल गया है। इससे अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का अलग अलग रूप देखने को मिल सकता है। कहीं मध्यम से तेज बारिश के आसार हैं तो कहीं उमस भरी गर्मी लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पूर्वी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में चक्रवाती परिसंचरण तंत्र सक्रिय है। इसके असर से भरतपुर, बीकानेर और जयपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। भरतपुर संभाग में कुछ स्थानों पर गरज और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश भी दर्ज की जा सकती है। वहीं 6 से 8 अगस्त के दौरान पूर्वी राजस्थान में नए परिसंचरण तंत्र के सक्रिय होने से मध्यम से तेज बरसात के आसार हैं। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा और फलौदी में बारिश की गतिविधियों में कमी के आसार, इससे उमस भरी गर्मी बनी रह सकती है।
2: 6-7 अगस्त को एक नया परिसंचरण तंत्र पूर्वी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर बनने की संभावना है। इस पे एक नया बारिश का स्पेल जो है वो 7-8 अगस्त से पूर्वी राजस्थान में फिर से शुरू होगा। 7-10 अगस्त के दौरान पूर्वी राजस्थान की तरह जयपुर के अलावा अजमेर और कोटा संभाग के कुछ भागों में मध्यम से कहीं भारी और एक स्थानों पर अति भारी बारिश होने की संभावना है। फिलहाल तो परिस्थितियां हैं इसके अनुसार आगामी दिनों में

0: पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में एक बार फिर मानसून सक्रिय होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में आगामी 3-4 दिन बारिश की गतिविधियों में कमी रहेगी। केवल कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना।
1: हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पाली के भावरी गांव के खेल मैदान में सघन पौधारोपण किया गया है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे गए हैं और उनके संरक्षण का संकल्प लिया गया है। उधर जैसलमेर को हरा भरा बनाने के मकसद से नाचना ग्राम पंचायत में हरियाला सावन अभियान का शुभारम्भ किया गया। इसके तहत अब तक 1,000 पौधे लगाए गए हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे ईंधन में मिलावट के दावों का खंडन किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये स्पष्ट किया है कि तेल विपणन कंपनियां नियमित रूप से ईंधन की गुणवत्ता की निगरानी करती हैं। मंत्रालय ने कहा कि पहले से लागू उन्नत और विस्तृत परीक्षण प्रोटोकॉल के अतिरिक्त 87,000 से अधिक आउटलेट्स में दिन में लगभग 8 से 12 बार जल रिसाव परीक्षण सहित अतिरिक्त जाँच शुरू की गई है। मंत्रालय ने बताया क्लोराइड और सल्फाइड के लिए 2,000 से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया है, जिनमें से अब तक पूरे देश में केवल 2 मामलों में क्लोराइड मिलावट पाई गई है और उन पंपों से बिक्री तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दी गई है। मंत्रालय ने कहा कि किसी भी खुदरा आउटलेट में संदूषण या मिलावट पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्रालय ने यह भी बताया कि OMC को पूरी ईंधन आपूर्ति श्रृंखला में किसी भी संभावित मिलावट का पता लगाने के लिए सक्रिय कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण कई बार बाधित। गृह मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 5 सालों में 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत राजस्थान में अब तक 2,55,00,000 से अधिक छोटे उद्यमी लाभान्वित और उत्तरी पूर्वी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में चक्रवाती परिसंचरण तंत्र सक्रिय। अगले 2 दिन भरतपुर, बीकानेर और जयपुर संभाग में हल्की से मध्यम बारिश के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से चूरू जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख श्रवण कुमार शर्मा ने तैयार किया है। समूचा जिला इन दिनों धार्मिक रंग में रंगा हुआ है। श्रावण मास के दौरान जिले के शिवालयों में श्रद्धालुओं की विशेष आस्था देखने को मिल रही है। सुबह से देर शाम तक मंदिरों में पूजा अर्चना, रुद्राभिषेक और भजन कीर्तन के कार्यक्रम हो रहे हैं। श्रद्धालु भगवान शिव का अभिषेक कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। घरों और प्रतिष्ठानों में भी धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जा रहे हैं। इस बीच मॉनसून की बेरुखी और कम सक्रियता किसानों की चिंता का कारण बनी हुई है। पिछले दिनों हुई हल्की बारिश के बाद किसानों ने खरीफ फसलों की बुवाई तो कर दी है, लेकिन अभी भी अच्छी वर्षा का इंतजार है। कृषि विभाग भी मौसम की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और किसानों को आवश्यक सलाह दे रहा है। आकाशवाणी बीकानेर क्लस्टर के उप महानिदेशक RL असवाल ने आकाशवाणी चूरू केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने केंद्र पर किए जा रहे नवाचारों की सराहना करते हुए कहा कि डिजिटल और सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग से आकाशवाणी के कार्यक्रमों को अधिक से अधिक श्रोताओं तक पहुंचाया जा सकता है। इस अवसर पर आकाशवाणी चूरू के कार्यक्रमों और नई योजनाओं की जानकारी दी गई। परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया गया तथा नव निर्मित वॉलीबॉल कोर्ट का शुभारंभ भी हुआ। जिला मुख्यालय स्थित टाउन हॉल में रोजगार विभाग की ओर से युवा संबल रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में 727 युवाओं का पंजीयन हुआ, जिनमें से 541 युवाओं ने विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों को साक्षात्कार दिया। चयन प्रक्रिया के बाद 283 युवाओं का रोजगार के लिए चयन किया गया। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने मेले का उद्घाटन करते हुए युवाओं से उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने का आह्वान किया। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत उद्यान विभाग जिले में फलोद्यान विकसित करने के लिए किसानों को अनुदान उपलब्ध करा रहा है। जिले के अनेक किसान इस योजना का लाभ लेकर पारंपरिक खेती के साथ फल बगीचे विकसित कर रहे हैं। विशेष रूप से तारानगर क्षेत्र के किसानों को इससे आय बढ़ाने में मदद मिली है। विभाग किसानों को आधुनिक बागवानी तकनीकों के बारे में भी जानकारी दे रहा है। उधर कृषि क्षेत्र में नई तक

0: तकनीकों की जानकारी देने के उद्देश्य से जिले के 50 किसानों का दल गुजरात के कृषि विज्ञान केंद्रों और कृषि विश्वविद्यालयों के अध्ययन भ्रमण पर रवाना किया गया है। किसान वहां आधुनिक खेती, जल प्रबंधन और कृषि नवाचारों की जानकारी लेकर जिले में नई तकनीकों को अपनाने का प्रयास करेंगे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने चूरू में गंग नहर स्थापना के शताब्दी वर्ष समारोह में भाग लिया। उन्होंने कहा कि गंग नहर केवल सिंचाई परियोजना नहीं बल्कि पश्चिमी राजस्थान के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विकास का आधार रही है। उन्होंने जल संरक्षण और पर्यावरण संतुलन पर भी बल दिया। समारोह में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और नागरिक उपस्थित रहे। जिला जन अभियोग और सतर्कता समिति की बैठक हाल ही में जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े जनहित के मामलों पर सुनवाई की गई। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन से जुड़े प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। बैठक में प्राप्त अधिकांश मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया जिससे परिवादियों को राहत मिली। करगिल विजय दिवस पर जिले में विभिन्न स्थानों पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। चूरू मुख्यालय के शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की गई जबकि सादुलपुर में भूतपूर्व सैनिक संघ की ओर से वीरांगनाओं और पूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया। सादुलपुर क्षेत्र के मुंदीताल गांव में धानक समाज ने सामाजिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। समाज ने मृत्यु भोज की परंपरा बंद करने का संकल्प लिया है। समाज के लोगों ने इस निर्णय को सामाजिक जागरूकता और अनावश्यक खर्च रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया है। जिले के लंबोर खेड़ी गांव के निवासी और जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स में अरुणाचल प्रदेश में तैनात जवान का ड्यूटी के दौरान हादसे में निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। गांव में इस अवसर पर तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। इसी के साथ चूरू जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर पेश है संजय भगतरा प्रादेशिक समाचार। पहली खास समाचार, संसद रा दोनों सदन री कार्यवाही न्यारा न्यारा मुद्दा माथे विपक्ष रा सदस्य रा हंगामा रे कारण कई दफा रोकी जी। गृह मंत्रालय कयो लारला 5 साल में 36 देशों 274 भगोड़ा अपराधिया ने पाछा लाई जिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना रे तहत प्रदेश में अजय ताई 2,55,00,000 बत्ती छोटा उद्यम ने फायदो मिलियो और उत्तरी अगुणी राजस्थान एर आर एस आर रा हल्का माए चक्रवाती परिसंचरण तंत्र सक्रिय। आवता 2 दिन भरतपुर, बीकानेर और जयपुर संभाग माए हल्काऊ मजला दर्जारी बिरखारा आसार। समाचार रे साथ है मैं शंभु सिंह और अब समाचार विगतवार। संसद रा दोनों सदनारी कार्यवाही विपक्ष रा हंगामा रे कारण रोकी जी। विपक्ष रा दला नीट मुद्दा माथे पढ़ेसरा रा विरोध प्रदर्शन रे दौरान पुलिस री कथित कार्यवाही समेत कई मुद्दा माथे शोर शराबो करियो। राज्यसभा रा सभापति सीपी राधाकृष्णन विपक्ष रा हंगामा रे बीच शून्यकाल शुरू करियो। विपक्ष रा नेता मल्लिकार्जुन खड़गे अयोध्या राम मंदिर रो कथित चढ़ावा चोरी रो मुद्दो उठायो। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कहो कि अयोध्या में राम मंदिर की खिलाफत करण वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अभय चंदा री कथित चोरी ने लेर नाटक करने जनता ने गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
2: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन करके जो जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एनओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
1: लोकसभा में हंगामारी हालत देखने मिली। सवारा सदन री कार्यवाही शुरू होने माथे अध्यक्ष ओम बिरला प्रश्नकाल शुरू करने री कोशिश करी पर विपक्ष रा सदस्य पढ़ेसरा रा विरोध प्रदर्शन रे दौरान पुलिस री कथित कार्रवाई रो मुद्दो उठा दियो। विपक्ष रा सदस्य ई मुद्दा माथे गृह मंत्री अमित शाह रा बयान री मांग कर रिया हा। श्री बिरला सगला सदस्यों सदन ने सुचारू चलावण माए मदद करने री अर्ज करी।
2: लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सब की

0: जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी सहमति असहमति व्यक्त करें, लेकिन सदन चर्चाओं के लिए ही चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। मैं सबको पर्याप्त अवसर दूंगा।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में कराधान और दूजा कानून संशोधन विधेयक 2026 पेश करया। इनमें टैक्स, डिजिटल भुगतान और निपटान प्रणाली रा नियमा ने सरल बनावन रो प्रस्ताव है। गृह मंत्रालय कहो है कि भारत भगोड़ा अपराधियों निपटन सारू खुफिया आधारित प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित करियो है। मंत्रालय बतायो कि साल 2021 और 2026 रे बीच 36 देशों भगोड़ा अपराधियों ने पाछा लाई जिया है। सरकार साल 2018 भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू करियो है। साल 2014 पहला भारत रो फगत 37 देशों रे साथ प्रत्यर्पण समझौतो हो और आर्थिक भगोड़ाओं निपटन और वारी जायदाद जब्त करण सारू कोई कानून नहीं हो। मंत्रालय बतायो के साल 2004-2013 रे बीच भारत औसतन हर साल फगत 4 भगोड़ा रो प्रत्यर्पण कर सक्यो, जबकि 110 प्रत्यर्पण अनुरोध विचारू रिया। लाडला 3 साल माए इंटरपोल कानियों रेड कॉर्नर नोटिस काढ़न माए घनी बदवारवी है और 401 भगोड़ा अपराधियों रे खिलाफ नोटिस जारी करी जिया है। सरकार भारत पोदरी शुरुआत करी है, जिनरी मार्फत 1432 एजेंसियां ने इंटरपोल जोड़ी जिया है, जिनु जानकारी साझा करण माए लागण वालों भगत 3-10 दिन रोवे गयो है। गृह मंत्री अमित शाह भगोड़ा अपराधियों रा मुद्दा ने देश री संप्रभुता, आर्थिक स्थिरता, कानून बंदोबस्त और राष्ट्रीय हिफाजत रा रूप में जोड़ियो बतायो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रो 16 अगस्त ने अलवर आउन रो कार्यक्रम है। आपरा ई दौरा माए श्री शाह कोई 250 करोड़ रुपया री लागतों बनन वाला सरस डेयरी प्लांट री नींव धरेला। वे अलवर मेडिकल कॉलेज रा नुआ भवन रो ही उद्घाटन करेला। गृह मंत्री रा प्रस्तावित दौरा ने लेर आज वन मंत्री संजय शर्मा री सदारत में एक समीक्षा मीटिंग हुई। मीटिंग में जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला, सरस डेयरी चेयरमैन नितिन सांगवान और पुलिस प्रशासन राठावा एहलकारा केंद्रीय गृहमंत्री रा दौरा री तैयारियां ने लेर बतल करी। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी कहो है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 19,32,000 परिवारों रो बिजली बिल शून्य वे गयो है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज वणा कहो कि आ योजना नागरिका ने मजबूत बना रही है, इनु स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य कानी बधन में गति मिल रही है। वणा बतायो कि 25,032 केंद्रीय और 81,032 राज्य सरकार री इमारतों री छत माथे सोलर सिस्टम लगाई गया है। यह समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर में प्रसारित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत राजस्थान में अजे ताई 2,55,32,000 लाभार्थियों ने कोई 2,18,000 करोड़ रुपया रा कर्ज मंजूर कर लिया है। ये योजना री मार्फत छोटा उद्योगां, रेहड़ी पटरी माथे सामान बेचने वाला दुकानदारां, कारीगरां और कारोबारियों ने बिना गारंटी संस्थागत रोकड़ मदद मुहैया कराई जावे। कोई 60% हिस्सेदारी रे साथ ये योजना में महिलाओं री बढ़ चढ़ ने भागीदारी री है। अजे ताई 1,54,32,000 महिलाओं ने 67,982 करोड़ का कर्ज मिला है। देश भर में इस साल जून महीना ताई योजना के तहत 59,32,000 लोगों ने कर्ज मंजूर करी दिया है। ध्यान जोग है कि आ योजना साल 2015 में शुरू करी जी ही। इनमें लघु उद्यमा ने 20,00,000 रुपया ताई रा कर्ज दिया जावे है। इनु स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता ने बढ़ावा मिलो है। भौगोलिक संकेत जीआई टैग स्थानीय समुदाय सारू माली हालात पैदा करण रा मौका देवता सांस्कृतिक विरासतरी रक्षा सारू एक मजबूत जरिया रा रूप में उभरियो है। उत्पादन ने वारा मूल ठोड़ू जोड़ ने जीआई टैग पारंपरिक ज्ञान ने संरक्षित करे है, दुरुपयोग ने रोके है और उपभोक्ताओं रा भरोसा ने बढ़ावे है। राजस्थान में 24 न्यारा उत्पादन ने जीआई टैग मिल चुको है। पेश है न्यूज डेस्क को हमारी सहयोगी डॉक्टर सालिहा गाजीरी रिपोर्ट।
2: जीआई टेक कारीगरा बुनकरा काश्तकारा और उत्पादक समूहा ने चोखो बाजार री पिचाण हासिल करण और प्रीमियम बाजारा तक पहुंच बढ़ावण माए मदद करे है। जोधपुरी मोजड़ी नागौर

0: अश्वगंधा, कैर सांगरी, बीकानेरी भुजिया, ब्लू पॉटरी, कठपुतली और कोटा डोरिया समेत राजस्थान रा कई उत्पाद है जिन्हें GI टैग मिल चुक्यो है, जो इंडरी पहचान ने और मजबूती देवे है। GI टैग प्रोडक्ट री पहचान ने कानूनी हिफाजत देवे है और वही बतावे है कि वारी खासियत मूल इलाका से जुड़ी है। सरकार री पहल रोकड़ मदद, निर्यात संवर्धन, पर्यटन एकीकरण और समर्पित विपणन प्लेटफार्म मार्फत इंड्रो आर्थिक सिस्टम मजबूत हो रही है। आकोशिश GI उत्पादा ने ग्रामीण विकास, सांस्कृतिक संरक्षण और निर्यात आधारित विकास रा संचालन रा रूप माए बदल रहा है।
1: जानिया मानिया शिक्षाविद और त्रिपुरा, बिहार और पश्चिम बंगाल रा पहली रा राज्यपाल डॉक्टर DY पाटिल आज देवलोक वे गया। वे 90 साल रहा वणा महाराष्ट्र कोल्हापुर माए आपरा रहवास माथे आखिरी सांस ली। डॉक्टर पाटिल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं रा पसारा सारू महताऊ योगदान दियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वारा देवलोक होण माथे शोक जतावता आपरा संदेश माए लिख्यो के श्री पाटिल ने गरीबा रा जीवन ने अच्छो बनावण सारू काम करियो। गृह मंत्री अमित शाही वारे परिवार जनारे प्रति शोक जतायो है। अठीने राज्यपाल हरिभाव बागड़े वारे देवलोक होण माथे शोक जतायो है। अरब मौसम राज्य रे ऊपर बण्यो कम दबाव रो हल्को, अबे उत्तर अगुणी राजस्थान माए परिसंचरण तंत्र माए बदल गयो है। इणु आवता कुछ दिना ताई प्रदेश रा न्यारा न्यारा हल्का माए मौसम रो न्यारा न्यारा रूप देखण ने मिल सके है। कठई मझलाऊ तेज बिरखारा आसार है और कठई उमस भरी गर्मी लोगारी परेशानी बढ़ा सके है। मौसम महकमा मुजब उत्तर अगुणी राजस्थान और आरे सारे रा हल्का माए चक्रवाती परिसंचरण तंत्र सक्रिय है। इनरा असरों भरतपुर, बीकानेर और जयपुर संभाग माए कठई कठई हल्काऊ मझला दर्जारी बिरखा होण रा आसार है। भरतपुर संभाग माए कुछ थोड़ा गरज और तेज हवा रे साथ है भारी बिरखाई दर्ज वह सके है। वठई 6-8 अगस्त रे बीचे अगुणी राजस्थान माए नुआ परिसंचरण तंत्र रे सक्रिय होवणु मझलाऊ तेज बिरखारी आस है। मौसम केंद्र जयपुर निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो के आथुणी राजस्थान रा बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा और फलोदी माए बिरखारी गतिविधियां माए कमी रा आसार है। इणु उमस भरी गर्मी बनी रह सके है।
2: 6-7 अगस्त को एक नया परिसंचरण तंत्र पूर्वी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर बनने की संभावना है। इससे एक नया बारिश का स्पेल जो है वो 7-8 अगस्त से पूर्वी राजस्थान में फिर से शुरू होगा। 7-10 अगस्त के दौरान पूर्वी राजस्थान की भरतपुर, जयपुर के अलावा अजमेर और कोटा संभाग के कुछ भागों में मध्यम से लेकर भारी और एक स्थानों पर अति भारी बारिश होने की संभावना है। फिलहाल जो परिस्थितियां हैं इसके अनुसार आगामी दिनों में पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में एक बार फिर मानसून सक्रिय होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के सीमा क्षेत्रों में आगामी 3-4 दिन बारिश की गतिविधियों में कमी रहेगी। केवल कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना।
1: हरियाणो राजस्थान अभियान रे तहत पाली जिला रा भावरी गांव रा खेल मैदान माए सघन पौधरोपण करी जियो। सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल माए भांत भांत रा पौधा रोपी जा है और वारा संरक्षण रो संकल्प ली रिजियो। जैसलमेर ने हरो भरो बनावण रा मकसदू नाचना गांव पंचायत माए हरियाणो सावण अभियान शुरू हुयो। इन रे तहत अजे ताई 1000 पौधा लगाई जा है। न अबे आखिर माए खास समाचार आप एक कर फेरों सुन ली रहो। संसद रा दोनों सदना री कार्यवाही न्यारा न्यारा मुद्दा माथे विपक्ष रा सदस्या रा हंगामा रे कारण कई दफा रोकी जी। गृह मंत्रालय कयो लारला 5 साल माए 36 देशों 274 भगोड़ा अपराधियां ने पाछा लाई जिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना रे तहत प्रदेश माए अजे ताई 2,55,00,000 32 छोटा उद्यमियों ने फायदो मिलियो। और उत्तरी अगुणी राजस्थान और आरे सारे रा हल्का माए चक्रवाती परिसंचरण तंत्र सक्रिय। आवता 2 दिन भरतपुर, बीकानेर और जयपुर संभाग माए हल्काऊं मजदा दर्जारी बिरखारा आसार। नईंडर साथे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भी हो। मारो आगलो समाचार बुलेटिन सवारा 9 बजा हिंदी माए प्रसारित करियो जाएला। नमस्कार।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 7 बजे हैं। किसान वाणी ये प्रायोजित कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी जयपुर के आमेर चैनल से रिले होगा।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी,
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: मैली धोती खुली चकाया, करे जो मेहनत कदे लालच में न आया, बे टूटिया छप्पर में भी होवे कोनी परेशान, अन्नदाता कहलावे है ये आपना किसान। किसान वाणी कार्यक्रम सुनबाड़ा सगला काश्तकार भाया ने बैणा ने चंचलो ने भरियो मीठो मीठो राम राम, और सगला बड़ा बूढ़ा दादा दादी नाना नानी चाचा चाची ताऊ ताई मामा मौसी बहन भुआ भाईली सब ने ढोगर जैसा, और महेश भाई आपने भी घने मानू राम राम सा।
7: राम राम चंचल बहन आपने, और जो अपना काश्तकार भाई लोग कार्यक्रम सुन रहे हैं बाने भी घनी मोकली राम राम सा।
6: देखो रामा श्यामा आपा करा हाँ ढोक देवा हाँ, और आपा जाना हाँ कि अपना जो श्रोता है अपना जो काश्तकार भाई बहन है वह बहुत ही मुस्तैदी से इंतजार कर रहे हैं अपना कार्यक्रम रो, क्योंकि आपा न सिर्फ खेती बाड़ी की बात करा हाँ बल्कि खेती बाड़ी से जुड़ोड़ा जो नवाचार है जो जानकारियां हैं वहां तक पुगावा हाँ, और कोशिश करा हाँ कि ज्यादा से ज्यादा अपना जो काश्तकार है वे जागरूक हो सके।
7: बिल्कुल, देखो जो एक परंपरागत खेती है बतो किसान भाई बहुत समस्याओं करता आ रहे हैं, पर नवाचार इसी चीज़ें जिन्हें अपना के देखो एक नए तरीके से खेती करा, एक वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है बिना अपना के और खेती कमाए, कौन कौन सा जगह नया प्रयोग हो रहे हैं, कौन कौन सी जगह खामे ही माने दूर करके अपना किसान भाई आगे बढ़े।
6: खामिया की जब आप बात करो महेश भाई, एक खामी जो नजर आवे बा है खेती कर ली फसल मिल गई बी के पाछे कहीं जो फसल का अवशेष बच जावे है वह एक सिरदर्दी बन जावे है। बाड़ा तो भाई जो अपनी वायु है प्रदूषित हो जावे, अठीने बठीने फेंका तो भी कचरो फैले, तो करा काई
7: भाई। देखो किसान भाई जका फसल कटाई के बाद में जका फसल अवशेष बच जाए ही तो इसे हम देखें कि भी एक तो देखो मजदूरी महंगी होगी समय के साथ और ट्रैक्टर को खर्चो भी ज्यादा, तो फसल अवशेष ने निकालना थोड़ा महंगो लगा है, तो यह सोचा कि भी अब अगली फसल की बुआई करनी है तो लो भी फसल अवशेष ने जड़ा देवा, पर फसल अवशेष जी आप जड़ावा तो धुओं धप्पड़ हो है, और जो को जकी गैस ही जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड है जकी जहरीली गैस ही वह वायुमंडल में मिल जाए और वायुमंडल प्रदूषित हो है, और जका श्वसन संबंधी रोग ही वह आप देख रहे हैं कि जका शहरा कमाए कतरा ज्यादा बढ़ता जा रही जका संपर्क में आवे जी अपने फसल अवशेष जड़ाने से
6: जी। अब इमें आपा काई कर सका हाँ कि आपा जो फसल अवशेष है जो बचोड़ी आपने कचरो जी ने आपा समझा बीसों भी आमदनी कर सका हाँ।
7: अच्छा
6: अशा अशा नवाचार हो गया, जी पराली की बात करा इन्हें आप मशीना के द्वारा एकटो करो हो दबाओ हो और बिने छोटो कर लियो हो अभी के बाद में बन जावे एक केक जैसी आकृति। अब वह काम में आवे है आपके मशरूम उत्पादन में एक बेड की तरह, तो हो गया ना कि जो आपा सोच रहा है कि यह तो कोई काम की चीज को नहीं बेकार है बीसू भी आपा बेचर आमदनी कमा सका हाँ।
7: बिल्कुल, और फसल अवशेष कमाए जी आपा देखा हाँ कि जब फसल अवशेष बच जाए ही तो जकी केंचुआ की खाद है यानी कि वर्मी कंपोस्ट बहुत ही फसल के लिए उपयोगी खाद है, तो फसल अवशेष कमाए जब आपा

0: गोबर के साथ में केंचुआ छोड़ देवा तो जकी वर्मी कंपोस्ट खाद है बिने केंचुआ तैयार कर दी और अतरी चोकी खाद है जकी फसल ने पोषण देवे और किसान भाई के लिए लाभकारी यह भी बन सके है।
1: और जी आप बात करा केला की फसल कई लोग उद्यानिकी में लेवे है, अब केड़ो तो एक बार फसल देवे है फल दिया बेकार, अब कहीं करा काट और बिने फेंक दिया, पर अगर आप इन्हें अइया ही फेंक दो ला तो आप नुकसान उठा जाओ ला, क्योंकि केला का जो तना है जैविक खाद लिक्विड तरल खाद और बहुत सारा ऐसा उत्पाद बना के काम में आवे है। केला का तना से निकल वालो जो रेशो है एक मजबूत धागा का रूप में काम में आवे है, केला का पत्ता पैकिंग करवा के काम में आवे है और कई तरीका के जो भोज्य पदार्थ है कि टोकरियां बने हैं जो भाप पर रखी जावे बी में भी यो काम में आवे और औषधीय गुण तो इका है ही है साहब।
0: और देखो एक जकी किसान भाइयों के लिए एक चारे की समस्या है कि गर्मियां के माए तो को हरे चारे की समस्या आवे पण अबार हरे चारे खूब जाए पण पशु ने हरे और सूखो दोनों प्रकार को चारो चाहिए पौष्टिक आहार के रूप में
1: जी।
0: तो अबार क्योंकि देखो ज्वार बाजरे की कड़वी के साथ में आपा जिया की गेहूं को भूसो बच रहे धान की पराली बच रही है तो बिना बरसीम के साथ में मिला के पशुओं ने खिलावा तो बहुत ही चोखो आहार बने मिल सके।
1: बिल्कुल
0: ज्वार बाजरे की कड़वी और गेहूं को भूसो धान की पराली ने बरसीम के साथ में मिला के खिलास का।
1: बिल्कुल और अब बाता चीता तो बहुत होगी अपना पावना भी आवाड़ा है बांसू भी बाता चीता आपा कर शाह पर जब तक वे आवे है बाकी अगुवाई में ही सही एक गीत सुना दो सा।
0: बिल्कुल सुनाओ सा।

0: वाह महेश भाई, गीत तो बहुत चोखो संजोड़ ले आया। अब जी हाँ, गीत आप ले रहा है भैया, जानकारियां की तरफ भी माने ले चलो साहब।
1: किसान वाणी सुनवाड़ा साहब साथे ने राम राम। किसान माया अपना बीच आज मौजूद है डॉक्टर कैलाश चंद शर्मा, पूर्व निदेशक छात्र कल्याण श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर से आप आए हैं और आपसे आज मैं बातचीत कर सया कृषि उत्पादन का माय ड्रोन की उपयोगिता के बारे में। तो डॉक्टर कैलाश चंद शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको कार्यक्रम में। राम राम।
2: राम राम।
1: डॉक्टर कैलाश चंद शर्मा जी, कृषि उत्पादन का माय ड्रोन की काई उपयोगिता है, इस विषय पर आपसे बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहली तो माका जगह किसान भाई ही बने यही बताओ कि ड्रोन हो काई है।
2: ड्रोन एक मानव रहित हवाई यान होता है जिसे रिमोट कंट्रोल की सहायता से उड़ाया जाता है। कृषि में उपयोग होने वाले ड्रोन को खास तौर पर खेतों में छिड़काव और निगरानी के लिए डिजाइन किया जाता है। इसमें एक टैंक होता है जिसकी क्षमता 10 से 30 लीटर होती है, बैटरी सिस्टम होता है, जीपीएस और ऑटो पायलट सिस्टम होता है, स्प्रे नोजल होता है तथा कंट्रोल इसमें होते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, आप कृषि में ड्रोन की उपयोगिता की बात कर रहे हैं, तो खेती के माय जो ड्रोन है बीको कई उपयोग है, किस प्रकार से यो काम आ सके?
2: किसान भाई खास तौर से ड्रोन का उपयोग फसल छिड़काव पर के लिए करते हैं। कृषि ड्रोन का उपयोग उर्वरक छिड़काव, कीटनाशी एवं फफूंदनाशी रसायनों के छिड़काव एवं अन्य अनुमोदित रसायनों के छिड़काव हेतु किया जाता है। इसमें समय की बचत होती है। इसके साथ ही फसल के स्वास्थ्य की जांच, मिट्टी एवं खेतों में लगाई गई फसलों के स्वास्थ्य की जानकारी के लिए लगातार सर्वेक्षण आवश्यक है। मानव श्रम से इस कार्य में कई दिन लग सकते हैं, फिर भी मानवीय त्रुटि की संभावना रहती है, तो ड्रोन वही काम कुछ ही समय में कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, मौसम संबंधी जानकारी या मृदा को विश्लेषण इका माय जो ड्रोन है वो किस प्रकार से सहायता करे आपने?
2: मौसम का बेहतर पूर्वानुमान लगाने के लिए ड्रोन का उपयोग करते हैं। इस जानकारी का उपयोग किसान भाई अपनी फसलों की बेहतर तैयारी के लिए कर सकते हैं। तूफान, बारिश या जलवायु संबंधी अन्य अवस्थाओं में कमी की पूर्व सूचना का उपयोग उस फसल की योजना बनाने के लिए किया जा सकता है जो मौसम के लिए सबसे उपयुक्त होगी।
1: जी और डॉक्टर साहब, यदि अपना जगह किसान भाई वह खेत का माय कुछ पेड़ पौधा लगाना चाहे या पशुओं को प्रबंधन करना चाहे, तो इक माय जो ड्रोन है वो कहीं उपयोगी साबित हो सके के?
2: हाँ, ड्रोन जो है पेड़ और फसलें लगाने में मदद करते हैं। इससे श्रम तथा ईंधन दोनों की बचत होती है, साथ ही इसमें बजट भी ड्रोन के उपयोग करने पर कम आता है। इससे पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलती है। इसके साथ साथ ही ड्रोन का उपयोग सर्वेक्षण के लिए किसान भाई न केवल अपनी फसलों पर नजर रख सकते हैं बल्कि अपने मवेशियों की गतिविधियों पर भी नजर रख सकते हैं ड्रोन के माध्यम से, क्योंकि ड्रोन में थर्मल सेंसर तकनीक लगी होती है, उसके द्वारा वो जानवरों को खोजने में मदद करती है।
1: डॉक्टर साहब, कृषि के माय ड्रोन की बात करें हाँ, तो इसमें ड्रोन का कई कई लाभ ही कृषि के माय?
2: ड्रोन से खेती बाड़ी में बहुत से लाभ होते हैं। खास तौर से ड्रोन मैनुअल जो है छिड़काव की तुलना में 50 से 60 गुना तेजी से कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव कर सकता है। दूसरा, ड्रोन से तकरीबन 15 से 20 मिनट में ही एक एकड़ में छिड़काव किया जा सकता है। इसके अलावा ड्रोन एक दिन में 30 से 40 एकड़ में कीटनाशक छिड़काव कर सकता है और एक बार में 15 से 20 लीटर कीटनाशक एवं

0: अब नाजक आदि को लेकर उड़ने में सक्षम है। इसी के साथ साथ ड्रोन के उपयोग से 90% तक पानी और 40% तक कीटनाशक एवं फफूंदनाशक की बचत की जा सकती है।
1: जी डॉक्टर साहब, ड्रोन का फायदा तो आप बता रहे हो, किसान भाई ने काफी मदद भी मिला है खेती के काम में, पर किसान भाई सोच रहे हैं कि भी ड्रोन की जो कीमत है वह कतरी हो है लगभग और कतरे पिसा कमाए आ जाए।
0: ड्रोन जो है अलग अलग तरह के बाजार में मिलते हैं, खास तौर से 10 लीटर की क्षमता वाला ड्रोन जो है वो 3 से 4 लाख रुपए में आता है। इसके अलावा 20 लीटर क्षमता वाला ड्रोन 5 से 7 लाख रुपए उसकी कीमत होती है और 30 लीटर वाले बड़े ड्रोन की कीमत 7 से 10 लाख रुपए तक होती है।
1: जी डॉक्टर साहब, जो का कृषि उपकरण हुए वहाँ पर सरकार सब्सिडी देवे है, किसान भाई ने सहायता देवे, तो ड्रोन यदि किसान भाई खरीदना चाहे तो कहीं ई पर भी कुछ सरकार सब्सिडी देवे?
0: हाँ, भारत सरकार जो है कृषि ड्रोन को खरीदने पे सब्सिडी देती है। किसानों को 40 से 50% तक सब्सिडी मिलती है। कृषक उत्पाद समूह और कृषि संस्थाओं को भी अधिक लाभ मिलता है। इसके अलावा कस्टम हायरिंग सेंटर्स को भी सहायता दी जाती है, इससे छोटे किसान भाई ड्रोन की सेवाएं ले सकते हैं।
1: जी और डॉक्टर साहब, हर किसान भाई कन देखो ड्रोन उपलब्ध कोनी होगा कई बार, पर यदि कोई सक्षम किसान भाई ड्रोन ले आके यदि दूसरे किसान भाई ने उपलब्ध कराना चाहे तो इस प्रकार को जो व्यवसाय है बिना की प्रकार से कर सके?
0: किसान भाई अपनी क्षमता के अनुसार ड्रोन को खरीद कर इसका व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। अगर आप किसान भाई कृषि ड्रोन से बिजनेस करना चाहते हैं तो उनको डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से प्रशिक्षण लेना होगा। इसके साथ ही ड्रोन खरीदना होगा, गांव में अपनी सेवा का प्रचार प्रसार करना होगा और ड्रोन सेवा शुल्क प्रति एकड़ ₹300 से लेकर ₹600 तक ले सकते हैं। इससे सीजन में अच्छी कमाई संभव है। एक ड्रोन से महीने में 1-2 लाख रुपए तक कमाई संभव है। ये सीजन पर निर्भर करती है। अनुमानित है जो ड्रोन होता है वो एक दिन में 20 एकड़ क्षेत्र में छिड़काव कर सकता है और उसकी कीमत ₹400 प्रति एकड़ होती है छिड़काव की, और साथ ही कुल जो है ₹8,000 प्रतिदिन उससे हम कमा सकते हैं। सीजन में पूरे महीने में ड्रोन जो है 20 दिन काम में लिया जा सकता है, जिससे ₹1,60,000 प्रति माह की इनकम किसान भाई कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, जो अपना किसान भाई ड्रोन को उपयोग कर रहे हैं और कृषि कार्य कर रहे हैं खेत कमाए, तो कौन कौन सी सावधानियां हैं, कौन कौन सी जरूरी बातें हैं जो कि ड्रोन के इस्तेमाल में किसान भाई ने ध्यान रखनी चाहिए?
0: किसान भाइयों का को ड्रोन का प्रयोग करते समय बहुत सी सावधानियां रखना जरूरी है, खास तौर से जब तेज हवा चल रही हो, बारिश आ रही हो या तूफानी मौसम हो रहा हो, उस समय ड्रोन की उड़ान नहीं करें। बैटरी जो है पूर्व में चार्ज रखें। इसके अलावा सही मात्रा में दवा का घोल बनाएं उसमें, और सुरक्षा उपकरण पहने तथा स्थानीय प्रशासन की अनुमति लेवें। हमेशा प्रमाणित ड्रोन एवं प्रशिक्षित पायलट का उपयोग करें। खेत का पहले निरीक्षण करें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। साथ ही ड्रोन की नियमित मेंटेनेंस भी करवाते रहें।
1: जी डॉक्टर साहब, जो अपना किसान भाई ड्रोन से कीटनाशी रसायन को स्प्रे करें खेत का माए, तो स्प्रे करवा को सही समय का ही है की टाइम करना चाहिए?
0: किसान भाइयों को ड्रोन से स्प्रे करते समय खास तौर से सुबह के समय 6 से 10 बजे का समय और शाम के समय 4 से 7 बजे तक का समय बहुत ही उपयुक्त रहता है, क्योंकि इस समय में हवा की गति जो है बहुत कम होती है और दवा का प्रभाव जो है बेहतर तरीके से होता है।
1: जी डॉक्टर साहब, आप ड्रोन का बहुत सारा फायदा बताया, और ड्रोन जो है किसान भाई को खेती में समय भी बचावा है, बिना कई प्रकार से सहायता भी मिले है, और तकनीक जो है धीरे धीरे बदलती जा रही है, किसान भाई भी नवाचार कर रहे हैं तकनीक के माध्यम से जो है खेती के माय आगे बढ़ता जा रहे हैं, तो ड्रोन का भविष्य ने आप की प्रकार से देखो वो कई संभावना ही?
0: किसान भाइयों, ड्रोन का आगे भविष्य बहुत उज्जवल है। भारत में जो कृषि है वो तेजी से डिजिटल होती जा रही है। ड्रोन तकनीक आगे चलकर इन क्षेत्रों में भी उपयोगी होगी, जैसे फसल में लगे रोग की पहचान करने के लिए, मिट्टी का विश्लेषण करने के लिए, सटीक पोषण प्रबंधन करने के लिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित फार्म ऑटोमेशन के लिए, जलवायु आधारित खेती करने के लिए जो है ड्रोन का उपयोग बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। और भविष्य में ड्रोन केवल स्प्रे तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह स्मार्ट फार्मिंग सिस्टम का हिस्सा बनेगा। अतः ड्रोन का भविष्य जो है बहुत ही उज्जवल है।
1: जी डॉक्टर साहब, आपा स्प्रे की तो बात करिया, पर ड्रोन का माध्यम से जगह दानेदार उर्वरक हो वहाँ को भी छिड़काव किया जा सके?
0: हाँ, दानेदार उर्वरकों का भी छिड़काव किया जा सकता है ड्रोन के माध्यम से। कुछ विशेष प्रकार के मॉडल्स आते हैं जिनमें ड्रोन के जिनमें ग्रेनुल स्प्रेडर अटैचमेंट होता है, लेकिन अधिकतर ड्रोन तरल उर्वरक और कीटनाशक के लिए ही उपयोग किए जाते हैं। तो किसान भाइयों से ये मेरी सलाह है कि वो अपना अगर वो दानेदार उर्वरक छिड़कना चाहते हैं तो विशेष प्रकार का मॉडल ही काम में लेवें उसके छिड़काव के लिए।
1: जी। और डॉक्टर साहब कौन कौन

0: सी इसी फसला है जहाँ का मैं ड्रोन ज्यादा उपयोगी साबित हुए।
1: खास तौर से ड्रोन का उपयोग किसान भाई धान की फसल में, गेहूं में, कपास में, मक्का में, गन्ना में, सोयाबीन में, सब्जियों में कर सकते हैं। विशेष रूप से बड़े खेतों में जहाँ पर फसल की जो क्षेत्रफल ज्यादा होता है और फसल बड़ी होती है, उनके लिए जो है किसान भाई ड्रोन का उपयोग बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं और फायदे के साथ कर सकते हैं।
0: और अब चलता चलता जगह मक्का किसान भाई ने ड्रोन के बारे में यदि और कोई जानकारी या कोई जरूरी बात आप बताना चाहो तो आप बता सकते।
1: देखो किसान भाइयों, आजकल जो है मशीनी युग का जमाना है और खास तौर से कृत्रिम बुद्धिमत्ता में विशेष जोर दिया जा रहा है, तो आप लोग जो है ड्रोन के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त करें और उसका प्रयोग जो है आवश्यकता अनुसार करते रहें, और आप ड्रोन के माध्यम से अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप ड्रोन खरीद कर अन्य किसान भाइयों को उसको किराए पर दे सकते हैं और उससे अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं।
0: तो किसान भैया, यही जानकारी कृषि उत्पादन का मैं ड्रोन की उपयोगिता के बारे में, और यह जानकारी आपने दी डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा, पूर्व निदेशक छात्र कल्याण श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर से आप आया और किसान भैया ने अतिरिक्त चौकी और उपयोगी जानकारी दी। इसके वास्ते डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।
1: राम राम।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है इधर इधर इधर? हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे?
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब?
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
3: पर हम तो सब यही डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच
2: है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूँगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
5: भाई महेश भाई, बहुत सांतरी जानकारी दिला दिया आप तो, और जो अपना कैलाश चंद शर्मा जी पावना आया भाई, बहुत चौकी जानकारी दिया भी।
0: किसान भाई सुनिया और बहुत आनंद भी लियो जानकारी को।
5: और देखो नवाचारा की आप बात करी रहा है, और नवाचारी एक जो ड्रोन प्रक्रिया है वाकई काम आवेली और काम आ रही है, बहुत सा काश्तकार काम में ले भी रहा है, और जिका नहीं जान रहा अच्छा भाई आज कार्यक्रम सुन जाने गया वेला, तो आप दोनों ही बधाई का और धन्यवाद का पात्र हो। और चूंकि धन्यवाद को रोको नहीं देवा, तो मुझे चौपाल की रीत सुना दिया था ने गीत।
0: बिल्कुल सुना सा।

0: हाँ तो चंचल बेन
1: जी,
0: देखो पहली तो आप सुने काले बैल किनारे चले छोटू राम पार्टी की आवाज में लोकगीत,
1: बिल्कुल।
0: और अब आप सुने महाराज छेल भंवर का अलगोजा आलीजा की आवाज में चोखो सो लोकगीत आप सुनाया, बहुत ही चोखो लगे।
1: बिल्कुल। और जब सुनबा सुनावा की बात आवे है तो अब थोड़ी सी आपने मंडी भाव की तरफ भी आपा चाला और सुना दिया का ही मंडी को भाव रहे हो आज को।
0: बिल्कुल।
1: तो साहब सेऊ पहली बात करा सरसियों की, डीक की मंडी में सरसों रो भाव रहे हो 8,140 रुपया प्रति क्विंटल, जयपुर की मंडी में सरसों को भाव 8,500 रुपया, भरतपुर की

0: जा आली जा की आवाज में चोखो सो लोकगीत आप सुनाया, बहुत ही चोखो लगे।
1: बिल्कुल, और जब सुनबा सुनावा की बात आवे है तो अब थोड़ी सी आपने मंडी भाव की तरफ भी आपा चाला और सुना दिया काई मंडी को भाव रहे हो आज को।
0: बिल्कुल,
1: तो साहब से पहली बात करा सरसों की। डीक की मंडी में सरसों रो भाव रहे हो 8,140 रुपया प्रति क्विंटल। जयपुर की मंडी में सरसों को भाव 8,500 रुपया। भरतपुर की मंडी में सरसों को भाव 8,000 रुपया। खैरतलरी मंडी में सरसों को भाव रहे हो 8,000 रुपया। और सीकरी डीक की मंडी में सरसों को भाव रहे हो 7,620 रुपया प्रति क्विंटल। बठई बात करा गेहूं की, तो श्री डूंगरगढ़ की मंडी में गेहूं को भाव 2,575 रुपया। कपासन की मंडी में गेहूं को भाव 2,600 रुपया। बस्सी की मंडी में गेहूं को भाव 2,600 रुपया। और ओसियन मथनिया की मंडी में गेहूं को भाव रहे हो 2,500 रुपया प्रति क्विंटल। जठेताणी बात है तारामीरा की, डेगाना की मंडी में तारामीरा रो भाव 6,000 रुपया प्रति क्विंटल। मेड़दा की मंडी में तारामीरा रो भाव रहे हो 5,250 रुपया प्रति क्विंटल। सादलपुर की मंडी में ग्वार की अगर बात करा तो भाव रहे हो 5,500 रुपया प्रति क्विंटल। ग्वार को भाव दौसा की मंडी में 5,640 रुपया प्रति क्विंटल को रहे हो साहब।
0: और चलता चलता जयपुर के मौसम को हाल भी बता देवा।
1: बिल्कुल साहब, गजब ही कर रहे हो मौसम।
0: पिछला 24 घंटा का मैं जयपुर को न्यूनतम तापमान रहे हो 27 डिग्री, अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस। अगला 24 घंटा का मैं जयपुर को न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा की, और मेछाट हो सका है क्योंकि बरसात को समय, तो यह है मौसम की संभावना।
1: बिल्कुल साहब, और अब संभावना यह है कि घड़ी आंखियां काडर कह रही है बहुत होगी बातचीत, आप चालो पिटारी ने समेट लो किसान वाणी सु ले लो आज्ञा और करो राम राम सा।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
3: प्रधानमंत्री किसान मान

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: श्रोताओं अभी आप
1: सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी और ये कार्यक्रम आकाशवाणी जयपुर का है चैनल से ले किया। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलो मारो चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 7:30 हुए हैं। अब ग्रामीण भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत।

बात करांगा। तो किसान भाया, मूंग रीज की फसल है बादहलन दहनली फसल में एक मानी जाया करे है, और आप प्रोटीन विटामिन और खनिज तत्वासु भरपूर होया करे है, जिके आपने स्वास्थ्य रे वास्ते घनी लाभकारी हुए है। मूंग री खेती कम समय रे मायने तैयार हो जाया करे है, और इन वास्ते इन्हें खरीफ जायद रवि रे बाद भी फसल के रूप में भी आप उगा सका हम। जटे मूंग रे जिकी घनी तरह की भी में खासियत होया करे है, जैकि वो प्रोटीन रो बहुत चोखो खजानो है, कम अवधि में तैयार आप बिन कर सका हाँ। पशुआ के लिए पौष्टिक चारों भी सु मिले हैं, फसल चक्र में भी महत्वपूर्ण स्थान रखे करे है। और जटे जलवायु री बात है, तो बटे मूंग री खेती रे वास्ते 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त मानो जाया करे है, और चोखी जल निकासी वाली दोमट और बालू मिट्टी भी इनमें सर्वोत्तम मानी जाया करे है। और अठे उन्नत किस्म की बात है, तो इनमें पूसा विशाल, पूसा रत्ना, सम्राट, SML 668, IPM 0203 और RMG 344 सिंगी उन्नत किस्म होया करे है। और किसान भाया, खेत की तैयारी रहते है कि आपने 2 से 3 बार गहरी जुताई करनी है, पाटो लगा खेत समतल करना है, खेत में जल निकासी भी उचित व्यवस्था भी करनी है, और प्रति हेक्टर 5 से 10 टन सड़ी हुई गोबरी खाद आपने बीज अंदर मिलानी है। इनके सागे सागे आपने बीज उपचारण भी करना है, जिसमें के आपने फायदो मिल सी। इन वास्ते राइजोबियम और PSB जिको कल्चर उपयोग आप कर सका हाँ, और जैविक खेती में ट्राइकोरमानो भी उपचार घणो लाभकारी हुए हैं। और किसान भाया, इंगे जिको बुवाई रो समय है वो जून रे अंतिम सप्ताह से जुलाई रे मध्य तक उचित मानो जाया करे है। और इन अलावा बीज री जिकी मात्रा है बा है कि 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टर सु आपा ले सका हाँ। कतार सु कतार री दूरी है 30 से 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, पौधे सु पौधे री दूरी 10 सेंटीमीटर, और जिकी बुआई गहराई है 4 से 5 सेंटीमीटर चौकी मानी जाया करे है। किसान भाया, चौकी फसल रहवासे सिंचाई रो भी प्रबंधन होनो घणो जरूरी है, तो वर्षा आधारित खेती में अतिरिक्त सिंचाई की आवश्यकता थोड़ी कम होया करे है। और इन अलावा जब फूल आने और फली बनने की अवस्था में आप सिंचाई कर सका हाँ, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाने से भी जल्दी बचत होया करे है। और बुआई रे 20 से 25 दिन रे बाद निराई गुड़ाई करनी चाहिए, आवश्यकता अनुसार अपने दूसरी निराई भी कर देनी चाहिए। और इन अलावा कीट प्रबंधन भी घणो जरूरी होया करे है, ताकि अपनी फसल अपने सही रूप से मिल जावे। तो इन वास्ते अपन कही है कि में किसा किसा रोग पनपे करे है, जी हाँ, पीला मोजिक रोग है, पत्ती धब्बा रोग है, और फफूंद रोग भी इनमें लाग जाया करे है। नियंत्रण रे वास्ते अपने रोग प्रतिरोधी किस्म रो चयन करना है, समय माथे कीटनाशक और जैविक नियंत्रण उपाय भी अपनाना है, पौधे ने स्टिकी टेप उपयोग कर सका हाँ, संतुलित पोषण एवं खेती नियमित निगरानी भी घनी जरूरी हुए है। और इरे वास्ते अलग बात करा के अनेक तरह की आधुनिक तकनीका है, ड्रोन द्वारा फसल की निगरानी रख सका हाँ, मृदा स्वास्थ्य कार्ड अनुसार पोषण प्रबंधन कर सका हाँ, मौसम आधारित कृषि सलाह भी ले सका हाँ, और इन अलावा सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली भी चौकी मानी जाया करे है। तो किसान भाया, ऐ सगली आपा मूंग उत्पादन में उन्नत तकनीका उपयोग कर वर्तमान समय की आवश्यकता है, और वैज्ञानिक खेती, उन्नत बीज, संतुलित पोषक, सूक्ष्म सिंचाई और स्मैकिट कीट प्रबंधन अपरा किसान भाई लोग कम लागत में अधिक उत्पादन ले सके हैं। और इस उकाई है कि देश में दलहन उत्पादन बढ़ सी, पोषण सुरक्षा मजबूत हो सी, और किसान रीस आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। तो किसान भाया, आप ही जानकारी रो फायदो लियोगा, और अब प्रोग्राम में सुना मीठो सो गीतड़ लो।

ग्रामीण जगत कार्यक्रम सुनणिया सगला किसान बहन भाई ने आपरी बहन मुक्ता जैंडा घणा घणा राम राम। किसान भाया देखा कि बरसात रो मौसम शुरू हो चुके है, वही समय है मूंग री उन्नत खेती अपनाने रो। यदि किसान भाई बहन इन मौसम में वैज्ञानिक तकनीका रो उपयोग करे तो कम लागत में अधिक उत्पादन और बेहतर गुणवत्ता प्राप्त कर सके है। आज इस विशेष कार्यक्रम में आपा जानांगा मूंग री उन्नत तकनीकी, उन्नत किस्म, बीज उपचार, बुआई की सही विधि, खाद और उर्वरक का प्रबंधन, सिंचाई और रोग कीट नियंत्रण के बारे में भी आपा

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: तो किसान भाई सीमा मिश्रा की आवाज में आपने तो स्वगीत सुनो। और देखो आप एक बहुत घनी जरूरी बात करा कि आज धरती मारो जो तापमान है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और पेड़ कटन से बरसात भी कम हो रही है। और अगर आज आप पौधा नहीं लगावांगा तो आवन वाली पीढ़ी रे समय आपने शुद्ध हवा नहीं मिलसी। तो आपना सगलारो फर्ज है कि आप एक एक घर आगे एक एक पौधो जरूर लगावा, चाहे नीम पीपल बड़ खेजरी अरसीसम जेड़ा जिका भी देसी रुख है वह आपने लगावना है। पौधो लगावो काफी कोनी हुआ है, इन्हें सागा सागा भी देखभाल भी करनी जरूरी होया करे। आपने नियम लेना है कि रोज आप में पानी डालसा बिना जानवर से बचा वाला। और रुख जिका वह वे धरती माता रो सिंगार होया करे है और इन सागा सागा अपने जीवन रो आधार भी होया करे है। रुख लगाने से अपने ऑक्सीजन मिले है, छाव मिले है, पर्यावरण सुरक्षित रहे है और अपने जिको गांव है वो हरियो भरियो हरियाली रहे है। और हर शुभ मौके पे अपने एक शपथ लेनी है कि अपने कोई जन्मदिन है कि वो घर में कोई सालगिरह है तो अपने पौधा जरूर लगाना है। और इसके अलावा आप देखा कि धरती माने हरियाली ओढ़ नहीं उड़ाने से अपने फर्ज है। आज वो एक जिको पौधो लगा से बोकाल रो मजबूत जीवन बनसी और एक फलो फूलो पेड़ बनसी। इसो पर्यावरण भी बचसी, अपना जिका जी जानवर है वह भी सुरक्षित रहती, बने घर मिलसी। एक व्यक्ति एक पौधो लगावे तो वो जिको सरकार एक अभियान चलाए वो भी सफल बनेला। और इसो अपने राजस्थान हरियो भरियो रहसी, स्वच्छ रहसी, अपनी सगला रिया जिम्मेवारी है तो अपने पौधा जरूर लगावना है। इनमें कही है कि जन जागरण की भी आवश्यकता है। पौधा लगाने वास्ते अपने जो स्कूल है, विद्यालय महाविद्यालय है, पंचायत समिति है और भी अनेक संस्थान है बठे भी जागरूकता फैलानी है और सगला लोगों ने मिल परा वो पेड़ लगाना रूप में आगे बढ़ाना है। तो किसान भाई ऐ सगला जिकी जानकारी है आप और भी सुनागा। अब कार्यक्रम में सुना एक और मीठो सो गीतड़ लो।

0: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
1: जलवायु साझेदारी, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सभी देशों का मिलकर काम करना जरूरी है। जिन देशों से ज्यादा प्रदूषण होता है उन्हें आगे बढ़कर समाधान की दिशा में काम करना चाहिए और गरीब और कमजोर देशों को पैसा, तकनीक और जरूरी मदद देनी चाहिए। UNFCCC जैसे ढांचों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई के समन्वय में यूनाइटेड नेशंस एक केंद्र

0: ये भूमिका निभाता है। अब वादा करने का नहीं, काम करने का समय है। साथ मिलकर हमें कम कार्बन वाले एक सुदृढ़ भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए। क्या आप जानते हैं 2020 में दुनिया के सिर्फ 5 सबसे ज्यादा प्रदूषण करने वाले देश मिलकर लगभग 60% कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन कर रहे थे।
1: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
2: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
1: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
2: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
1: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
2: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
1: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
2: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
1: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
2: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

0: माह के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: तो अभी आप रागिनी गिरी आवाज में तणिया रेशम भी मिठो सो गीतों लो सुनियो। किसान भैया भारत एक जी को देश है वो कृषि प्रधान है और 18 जी की जनसंख्या है वह खेती बाड़ी पर निर्भर है। कृषि उत्पादन सो सबसे मोटो आधार सिंचाई होया करे है। जलवायु परिवर्तन एवं अनियमित वर्षा के कारण किसानों ने अनेक तरह की कठिनाई सामना करना पड़े है। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जी की अपनी सरकार है बाद 2015 महीने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रारंभ करी ही और इन योजनाओं का उद्देश्य है वो है प्रत्येक खेत तक पानी पहुंचानो और जल रो अधिकतम दक्षता के साथ उपयोग सुनिश्चित करनो। ये योजना का उद्देश्य यही रहा है कि हर खेत में पानी देनो, प्रति बूंद अधिक फसल, जल संरक्षण, सिंचाई की क्षमता रो विस्तार, सूक्ष्म सिंचाई ने बढ़ावा देनो, कृषि उत्पादकता में वृद्धि करनी और इन वास्ते नहरारो विस्तार करियो गयो है। तालाब एवं जलाशय का निर्माण हुआ है, भूजल पुनर्वरण की व्यवस्था हुई है और इरे सागे सागे खेत और तालाब भी बनया है। और आपा अगर बात करा तो जिकी प्रति बूंद अधिक फसल की बात है तो ड्रिप सिंचाई सु स्प्रिंकलर सिंचाई पाइपलाइन सिंचाई और जल्दी बचत रा भी साधन अपनाया गया है और इसु कही है कि किसानों ने अनेक तरह का फायदा भी मिले है जिकी सिंचाई की लागत में कमी आई है, उत्पादन में वृद्धि हुई है, जल्दी बचत हुई है, बिजली की बचत भी हुई है और इन्हें सागे सागे अनेक तरह की जी की आधुनिक तकनीका है बारो उपयोग करो गयो है। जिया की पानी सीधा जड़ा तक पहुंचाणो, 40 से 60 तक जल की बचत करनी, उर्वरकारो सावरसर उपयोग करनो और स्प्रिंकलर सिंचाई की व्यवस्था सु अपने वर्षा जेड़ी सिंचाई मिले है हल्की एवं रेतीली भूमि के लिए भी आ उपयुक्त मानी जाया करे है। और इनके अलावा जिया की आप बात करा के इन्हें किसानों ने जो प्रशिक्षण दिया करे है, सरकारी अनुसंधान भी मिले है, कृषि विज्ञान केंद्रों को सहयोग भी इनमें रहे है। तो कुल मिलाकर किसान भैया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जल संरक्षण और कृषि विकास की दिशा में एक बहुत ही फूटो सो पहल करी है। यदि किसान आधुनिक सिंचाई तकनीक रो अपनासी और सरकार वैज्ञानिक और समाज मूल कार्य करसी तो जल संकट कम होसी और इसो किसान भी आय में बढ़ोतरी होसी। तो किसान भैया अब आपा एक हर्जस सुना

0: तो किसान भाई आप फूटरो सो हरजस सुनो और किसान भाई देखा कि जिका घर गांव आसपास साफ सुथरो हुए है बुरा लोगा ने बीमारी कम लगे है। स्वच्छता केवल सफाई रो नाम ही कोनी एक अच्छी आदत भी हुआ करे है। अपने रोज सवेरे उठ दांत साफ करा नावा साफ कपड़ा पहरा हर हाथा ने साबुन सु धोनो जरूरी है। खानो खावन सु पहला हर सोच जावन रे पछे भी अपने हाथ धोना जरूरी होया करे है। घर रो कचरो आपा डस्टबिन में घाला पानी में इकट्ठी जमा नहीं होण देवा और जिसु का ये कि अगर पानी इकट्ठो हो जावे बटे मच्छर पैदा हो जाए बिसु अनेक तरह की जिकी बीमारियां है घातक वे भी फैले है। और साफ पानी पीनो ताजो पौष्टिक भोजन खावनो फल सब्जियां दूर काम में लेनी प्लास्टिक रो उपयोग कम करनो और आस पास रे वातावरण साफ रखनो भी चौकी आदत है। गांव स्कूल एर कार्यालय सार्वजनिक स्थाना पर भी सफाई राखनी अपा सबरी जिम्मेवारी है। स्वच्छता राखण वालो समाज ही स्वच्छ और खुशहाल होसी। तो अपा आज मिल पड़ा एक संकल्प लेवा कि मैं खुद भी स्वच्छ रहांगा और मेरा आपरे घर में गांव रे पूरे वातावरण में साफ रखने में योगदान देसिया। तो याद रखनो है कि स्वच्छता है तो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य है तो सुखी जीवन है। तो किसान भैया ऐसे अगली बातों आपा ने ध्यान रखनो है। अब प्रोग्राम में वक्त हो रहे पूरो आज्ञा लेवासा आपसु और आपकी बहन मुक्ता जैन आज्ञा दिलाऊसा घना घना राम राम।
1: अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलो मारो चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे अगला कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से होगा।
2: ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण बैठक बार बार बाधित हुई। हंगामे के बीच जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण से जुड़े एक महत्वपूर्ण विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। उच्च सदन की सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए नकदी और कीमती सामान की चोरी का मुद्दा उठाया, जिसका सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जोरदार विरोध किया और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से अपनी बात रखने के लिए कहा। खड़गे ने राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा गठित ट्रस्ट के कुछ सदस्यों पर चढ़ावे की कथित चोरी का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियां श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों पर लगे आरोपों की जांच क्यों नहीं कर रही हैं। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सभापति की अनुमति से बोलते हुए कहा कि विपक्ष जिन मुद्दों को बार बार उठाने की कोशिश कर रहा है उसे सदन में उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने हमेशा भगवान राम का अपमान किया और राम मंदिर निर्माण का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अब ये दल चंदा चोरी के मुद्दे पर नाटक कर रहे हैं। इस बीच द्रविड़ मुनेत्र कशगम के सदस्य तिरुचि शिवा ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन को हिरासत में ले जाने का मुद्दा उठाने का प्रयास किया, लेकिन सभापति ने इसकी अनुमति नहीं दी। हंगामे के बीच शून्यकाल में दो सदस्यों ने लोक महत्व के मुद्दे उठाए। भाजपा की सीमा द्विवेदी ने देश में परिवहन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए परिवहन आयोग के गठन की मांग की। उन्होंने कहा कि परिवहन व्यवस्था को अधिक प्रभावी, सुरक्षित और आधुनिक बनाने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन समय की आवश्यकता है। भाजपा की ही गीता उर्फ चंद्रप्रभा ने उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में कौशल विकास केंद्र खोलने की मांग करते हुए कहा कि जिले में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं तथा शिक्षा, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि औरैया में बड़ी संख्या में युवा तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक हैं। इस बीच सदन में हंगामा जारी रहने के कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी था। हंगामे के बीच ही सभापति राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू कराया। कुछ सदस्यों ने पूरक प्रश्न भी पूछे और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने उनके जवाब भी दिए। प्रश्नकाल के दौरान लगातार नारेबाजी और शोर शराबे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश की अनुमति से गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया, किंतु सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रही। हंगामे के बीच विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा में भाजपा की दर्शना सिंह, विश्वजीत सिन्हा, साधना सिंह, तृणमूल की ममता ठाकुर, द्रमुक के तिरुचि शिवा, बीजू जनता दल के संतृप्त मिश्रा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के मेदा रघुनाथ रेड्डी, अन्ना द्रमुक के एम थंबीदुरई, एम धनपाल, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, माकपा के वी शिवदासान, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो और शिवसेना की ज्योति नागनाथ वाघमारे ने हिस्सा लिया। चर्चा में अधिकतर सदस्यों ने माना कि देश में जन्म और मृत्यु पंजीकरण नागरिकों का एक महत्वपूर्ण दायित्व है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संबंधी कानून को ठीक से लागू नहीं कर देश और लोकतंत्र के साथ धोखा करने का आरोप लगाया तथा दावा किया कि वर्तमान सरकार इन दोनों के सार्वभौमिक पंजीकरण के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि विलंब से जन्म और मृत्यु पंजीकरण कराने से होने वाले दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें कई प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां चाहती हैं कि जिन बच्चों का जन्म किसी अन्य देश में हुआ है ऐसे बच्चों का भी जन्म भारत में दिखाया जाए और इसके लिए कानून की खामियों का फायदा उठाया जाता है। उन्होंने आगाह किया कि अब ऐसा नहीं हो पाएगा। मंत्री ने स्पष्ट किया कि इसमें किसी भी सही व्यक्ति के लिए कोई रोक नहीं है तथा इस प्रक्रिया का डिजिटलीकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि देश में 3.5 लाख से अधिक पंजीकरण केंद्र हैं। उन्होंने सदन को सूचित किया कि देश में जन्म पंजीकरण स्तर 2014 में 86.6% था जो 2024 में बढ़कर 99.8% हो गया है। उन्होंने कहा कि मृत्यु के मामले में यह आंकड़ा क्रमशः 72.5% था जो बढ़कर 99.4% हो गया है। राय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के माध्यम से देश और लोकतंत्र के साथ धोखा किया था। मंत्री ने कहा कि सरकार जन्म और मृत्यु के सार्वभौमिक लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जन्म या मृत्यु होने के 2 वर्ष के बाद यदि सूचना दी जाती है तो ऐसे मामलों में केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही रजिस्ट्रार पंजीकरण करेंगे। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में जन्म और मृत्यु के 2 वर्ष के भीतर सूचना देने वाले मामलों में जो पुराने प्रावधान लागू हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उन्होंने 2 साल से अधिक की अवधि वाले मामलों के लिए प्रावधानों में

बदलाव करने का कारण स्पष्ट करते हुए कहा कि देश चाहता है कि भारत माता की गोद में पैदा होने वाली हर संतान का रजिस्ट्रेशन हो, ये मोदी सरकार का संकल्प है। साथ ही जिसकी मृत्यु हो जाती है और वो भूत बनकर तुष्टीकरण करने वाली पार्टियों का मतदाता बना रहता है, ऐसे भूतों से देश छुटकारा चाह रहा है। राय ने कहा कि इसलिए समय से मृत्यु का पंजीकरण भी अत्यंत आवश्यक है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 को संशोधित कर विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को कड़ा बनाना है। उच्च सदन में ये विधेयक पारित होने के बाद विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रही। हंगामा थमते न देख उपसभापति हरिवंश ने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारुल हक। लोकसभा ने आज विनियोग संख्यांक 3 विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। हालांकि विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण विधेयक पर चर्चा नहीं हो सकी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने शोर शराबे के बीच ही सदन में कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 भी पेश किया। अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों पर कई विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण आज भी लोकसभा में गतिरोध बरकरार रहा। सदन की कार्रवाई एक बार के स्थगन के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के कारण पिछले कई दिनों की तरह आज भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके। सदन की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा तो विपक्षी के सदस्य हंगामा करने लगे। वे अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि मैं आप सभी को बोलने का अवसर दूंगा, लेकिन प्रश्नकाल में केवल प्रश्न उत्तर होते हैं और सभी से अनुरोध है कि कार्यवाही चलाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि मैंने कल भी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सभी दलों से ये अनुरोध किया था। संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है और चर्चा एवं संवाद के लिए है। ये नारेबाजी करने और तख्तियां लेकर आने का मंच नहीं है। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने सदन की बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद बैठक 2 बजे शुरू हुई तो पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखवाए। इस दौरान विपक्षी सदस्य पहले की तरह ही शोर शराबा कर रहे थे। सैकिया ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीट पर जाकर बैठने का आग्रह करते हुए कहा कि यह महत्वपूर्ण विधेयक है और सभी को इसमें सहयोग करना चाहिए। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विनियोग संख्यांक 3 विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विपक्ष के हंगामे के बीच सदन ने इस विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विपक्ष के जिन सदस्यों ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को पेश किए जाने के विरोध में बोलने के लिए नोटिस दिया था, उन्होंने आसन द्वारा नाम पुकारे जाने के बावजूद ऐसा नहीं किया। इस विधेयक का उद्देश्य संदाय एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करते हुए उन्हें सरल, स्पष्ट और अधिक प्रभावी बनाना है। ये मुख्य रूप से कर प्रशासन को सुव्यवस्थित करने तथा आयकर कानूनों में आवश्यक बदलाव करने के लिए लाया गया है। आयकर अधिनियम 2025 तथा आयकर अधिनियम 1961 में कई तकनीकी और प्रक्रियात्मक संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। इसके तहत कर निर्धारण, अपील, दंड और अभियोजन से संबंधित प्रावधानों को अधिक स्पष्ट और सरल बनाया गया है। कुछ मामलों में दंड की राशि बढ़ाने तथा कुछ मामलों में कर की दरों का युक्तिकरण करने का प्रस्ताव है। स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए कुछ परिस्थितियों में दंड एवं अभियोजन से राहत का दायरा बढ़ाया गया है। लोकसभा में प्रश्नकाल भले ही नहीं चल सका, लेकिन सरकार ने कई लिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने वर्ष 2024 से अब तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामलों में 254 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने जानकारी दी कि इन लोगों के कब्जे से 40 करोड़ रूपये से अधिक मूल्य के मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं। मंत्री के अनुसार 103 विदेशी नागरिक अनिवार्य किराएदार सत्यापन के बिना किराए के मकानों में रह रहे थे। इस मामले में 63 मकान मालिकों के

0: के खिलाफ कार्रवाई की गई है। एक अन्य लिखित उत्तर में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का उल्लेख करते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एनक्रिप्टेड संचार एप्लीकेशन तथा डार्कनेट के माध्यम से संचालित मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क की पहचान कर उन्हें ध्वस्त करने के लिए खुफिया जानकारी आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित रणनीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि डार्कनेट आधारित मादक पदार्थ तस्करी तथा क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से होने वाले लेन देन की जांच के लिए साइबर विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया है। मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल संबंधी विजन डॉक्यूमेंट के अंतर्गत सभी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स में समर्पित डार्कनेट और क्रिप्टो करेंसी सेल स्थापित करने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित विश्लेषण, उन्नत तकनीकों तथा विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से साइबर सक्षम संगठित मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क को समाप्त करने की परिकल्पना की गई है। राय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि देशभर में इस वर्ष 1 मार्च से अब तक लू के कारण 20 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 4,853 मामले दर्ज किए गए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में लू से सबसे अधिक मौतें हुई हैं, जबकि तेलंगाना में सबसे अधिक मामले सामने आए। राय ने बताया कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर गृह मंत्रालय ने 2026-31 अवधि के लिए राज्य आपदा मोचन कोष SDRF तथा राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष NDRF के संचालन संबंधी दिशा निर्देशों के अंतर्गत लू और आकाशीय बिजली को अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि अब SDRF और NDRF के माध्यम से राहत सहायता प्रदान करने के लिए एक स्पष्ट नीतिगत ढांचा लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही लू से बचाव और उसके प्रभाव को कम करने से संबंधित परियोजनाओं को भी आपदा न्यूनीकरण निधियों के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए पात्र बनाया गया है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में हालिया गिरावट का मुख्य कारण भारत द्वारा विदेशों में बढ़ते निवेश तथा विदेशी निवेशकों द्वारा निवेश की वृद्धि है। उनके अनुसार शुद्ध FDI वर्ष 2024-25 में घटकर 1 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया, जबकि ये 2023-24 में 10.2 अरब डॉलर तथा 2022-23 में 28 अरब डॉलर था। जितिन प्रसाद ने कहा कि शुद्ध FDI प्रवाह में हालिया रुझान भारत द्वारा विदेशों में बढ़ते निवेश तथा विदेशी निवेश की बढ़ती वापसी से जुड़ा हुआ है। जितिन प्रसाद ने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में बताया कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों SEZ से देश का निर्यात 2025-26 में 11.8% बढ़कर 16,36,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। उन्होंने कहा कि SEZ की क्षमता का बेहतर उपयोग करने, निवेश आकर्षित करने तथा उन्हें घरेलू आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के लिए सरकार समय समय पर विभिन्न कदम उठाती रहती है, ताकि इन निर्यात क्षेत्रों की परिचालन दक्षता में वृद्धि हो सके। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण लगातार 12वें दिन आज भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8:15 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत। फिल्म का नाम है लोफर।

0: माह के पहले और चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत। फिल्म का नाम है पाकीज़ा।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी बीकानेर की ढोला मारो चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत कार्यक्रम में। आइए सबसे पहले सुनते हैं बाबू खां बागड़वा की आवाज में ये लोकगीत।

0: सीमा मिश्रा के गाए इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का एक कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब समाचार होंगे, समाचार पहले हिंदी में तत्पश्चात अंग्रेजी में होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। ये विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और सख्त बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय के अनुसार 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को

0: समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या डीएम द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं।
2: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन करके जो जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा है। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार करने के कई निर्देश भी जारी किए गए हैं। भारत 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। भारत ने भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए एक एकीकृत, खुफिया आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित किया है। मंत्रालय ने कहा कि 2014 से पहले भारत के केवल 37 देशों के साथ प्रत्यर्पण समझौते थे और आर्थिक भगोड़ों से निपटने या उनकी संपत्ति जब्त करने के लिए कोई समर्पित कानून भी नहीं था। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को पूरी तरह दिखावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि इस तरह के खोखले प्रयास वास्तविकता को छिपा नहीं सकते।
3: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
1: सितंबर महीने में दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के निमंत्रण पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को इस साल फरवरी में पदभार ग्रहण करने पर भारत की द्विपक्षीय यात्रा का औपचारिक निमंत्रण दिया गया था। उन्होंने बताया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संबंध में भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को बिम्स्टेक के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के जनसंपर्क सत्र में शामिल होने के लिए

0: अलग से निमंत्रण दिया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाताओं से संवाद पर प्रवक्ता ने कहा कि यह संवाद एक निजी मीडिया संस्था ने आयोजित किया है।
1: वो एक प्राइवेट मीडिया संस्थान उसका आयोजन कर रहा है। भारत सरकार का इस आयोजन से कोई लेना देना नहीं है और साथ ही साथ वहाँ पर इस मंच से उठाए गए विषय या उस मंच से बोले गए शब्दों का कोई समर्थन हम नहीं करते हैं, ना हमारा कोई उससे कोई रिश्ता नहीं है।
0: पंजाब पुलिस ने ISI समर्थित दो सीमा पार आतंकी मॉड्यूल के 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सुरक्षा प्रतिष्ठानों की निगरानी में भी शामिल थे। उन्होंने रेलवे ट्रैक के पास निगरानी कैमरे लगाए थे और फुटेज विदेशी एजेंटों के साथ साझा कर रहे थे। जांच जारी है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली और महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम को 17 अगस्त तक बढ़ा दिया है। मतदाता सूची का मसौदा 24 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची अब 27 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। आयोग ने बताया कि नागरिक 24 अगस्त से 23 सितंबर तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने शुक्रवार को झारखंड विधानसभा तक मार्च निकालने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति को गठित करने का निर्देश दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले की CBI जांच की मांग की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भर्ती आयोगों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप लगाया है।
2: झारखंड में हजारों लाखों छात्र किस प्रकार से आंदोलन में हैं? कांग्रेस पार्टी एक शब्द झारखंड में आंदोलन में बैठे छात्रों के पक्ष में बोलते नजर नहीं आ रही है, पार्लियामेंट में उस विषय को उठाते नजर नहीं आ, क्योंकि ये सिलेक्टिव आउटरेज है और इसके पीछे केवल राजनीतिक रोटी सेकने की चेष्टा कांग्रेस पार्टी की है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप NewsOnAIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत देशभर में 50 लाख से ज्यादा परिवारों को छतों पर सौर पैनल लगवाने का फायदा मिला है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये योजना नागरिकों को सशक्त बना रही है, ये भारत को स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने में गति प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि 19 लाख से ज्यादा परिवारों का बिजली का बिल अब शून्य हो गया है। अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में ग्लाव झील को भारत का 101वां रामसर स्थल घोषित कर दिया गया है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे जैव विविधता संरक्षण, जल और जलवायु सुरक्षा तथा सतत आजीविका के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि पूर्वी हिमालय में स्थित ये कमलांग बाघ अभयारण्य और वन्य जीव अभयारण्य के भीतर बसा हुआ स्वच्छ मीठे पानी की झील जैव विविधता का एक प्रमुख केंद्र है। UPI ने पिछले महीने 236.60 करोड़ रुपए का लेन देन किया है। वित्त मंत्रालय ने डिजिटल भुगतान को अपनाने और इसको आगे बढ़ाने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया है। मंत्रालय ने लोगों से देश में लेन देन के तरीके को बदलने की इस यात्रा को जारी रखने का आह्वान किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 210 अंक घटकर 78,429 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक नीचे आकर 24,615 पर दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 4 पैसे कमजोर होकर 95.38 रुपए पर बंद हुआ।
0: खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वर्ण पदक विजेताओं को 30 लाख, रजत पदक विजेताओं को 20 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए के पुरस्कार प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि 36,000 करोड़ रुपए की संशोधित खेलो इंडिया योजना से भविष्य में खेलों के विकास में

0: निरंतर निवेश सुनिश्चित होगा।
1: सरकार ने खेलो इंडिया स्कीम लाया, स्पोर्ट्स के लिए सारी फैसिलिटी व्यवस्था खड़ी करी, लास्ट वीक में 36,000 करोड़ रुपया दिया जो आपके लिए यूज करा जाए। सरकार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी नहीं चलाएगी। आप जैसे जो एथलीट रिटायर करेंगे, जो स्पोर्ट्स को जीते हैं, मैं आपको कहूंगा कि आप चलाओ, पैसा हम देंगे। देश की आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षा है। हमें हर बार नए लक्ष्य को तय करना है और लक्ष्य को अचीव करने के लिए प्रयास करना।
0: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। उन्होंने थाईलैंड के वोरापोल थोंगसानगा और चालो एम्पोन चारोएन कितामोर्न को हराया। फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-2379 में उड़ान के दौरान अत्यधिक ऊंचाई पर विमान में कुछ समय के लिए झटके महसूस किए गए, जिसके कारण विमान के सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को नई दिल्ली में सुरक्षित उतारा गया। विमान में 137 यात्री और 8 चालक दल के सदस्य सवार थे। 13 यात्रियों और 4 चालक दल के सदस्यों को मामूली चोटें आईं। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दिन में 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश की संभावना है। केरलम, माहे, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर प्रदेश में भी अगले 2 से 3 दिनों में ऐसी ही स्थिति रह सकती है। सुरों के जादूगर किशोर कुमार की जयंती पर उनकी जन्मस्थली खंडवा में पूरे दिन उत्साह का माहौल रहा। देशभर से पहुंचे हजारों प्रशंसकों ने उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी। समाधि परिसर में दिन भर किशोर कुमार के सदाबहार गीत गूंजते रहे। बड़ी संख्या में संगीत प्रेमियों ने बॉम्बे बाजार स्थित उनके पैतृक निवास का भी भ्रमण किया। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। ये विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और सख्त बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Parliament passes registration of births and deaths amendment bill to make delayed registration more stringent. Supreme Court directs Reserve Bank of India to prepare and circulate a SOP for dealing with mule accounts and bank accounts linked to cyber fraud. 274 fugitive criminals brought back to India from 36 countries between 2019 and 2026, says Home Ministry. New Delhi terms so-called local elections in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir as complete farce. Sports Minister Dr. Mansukh Mandavia felicitates Indian medal winners after a successful Glasgow Commonwealth Games campaign. And in badminton, Indian pair of Krishna Prasad Garaga and Prithvi Krishnamurthy Roy advances to the men's doubles second round at Korea Masters Tournament in Assam. The Parliament has passed the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it today. Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Home Nityananda Rai moved the bill in the upper house, which aims to amend the Registration of Births and Deaths Act 1969. Following the passage of the bill, the Rajya Sabha was adjourned for the day. We have more from a correspondent.
3: The objective of this bill is to prevent delays in the registration of births and deaths and to encourage people to register in a timely manner. The bill provides that if a birth or death is reported to the registrar more than 1 year but within 2 years, it may be registered only with the approval of the district magistrate, sub-divisional magistrate or an executive magistrate. The bill further states

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय रात्रि के 9:15 हुए हैं। लीजिए आप सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं फिल्म चश्मे बद्दूर का ये गीत। स्वर हेमंत शुक्ला और यशुदास का है।

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में अंत में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज़ में ये गीत। फिल्म का नाम है उसने कहा।

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में अंत में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज़ में ये गीत। फिल्म का नाम है उसने कहा।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 9:30 हुए हैं। लीजिए आप सुनिए सुगम संगीत। इस प्रोग्राम में आइए सबसे पहले सुनते हैं मेहदी हसन की आवाज़ में ये गज़ल।

नए बहलाओं के साथ कोशिश करूंगा मैं, जो कि कोशिश करूंगा जो अलग होंगे, जो आप लोगों की टेपों में नहीं हो शायद।

सुगम संगीत के अंतर्गत आज आप सुन रहे थे गैर फिल्मी गजलें। हम आकाशवाणी बीकानेर की ढोली मारू चैनल से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए आप सुनिए अपने पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हर के सुतार का प्यार भरा नमस्कार। आइए सबसे पहले सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गीत। फिल्म का नाम है लम्हे और गीत को स्वर दिया है लता मंगेशकर ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म लम्हे का ये गीत। गीत को सुनना चाहते थे आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही महराज जहां। प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा राजू भाई माया वर्मा शोभा वर्मा राहुल ज्योति अतुल प्रियांश वर्मा। इसी गीत को सुनना चाहते थे अमर सिंहपुरा बीकानेर से सिकंदर अली खान रामपुरा बस्ती बीकानेर से रमजान अली लखारा आशा लखारा अमीर रहीमन फूसा राम लखारा और गोमती देवी छबीला। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गीत। फिल्म का नाम है स्वयंवर। स्वर मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का है और इस गीत को सुनना चाहते हैं बठिंडा रोड डब्बाली से राजेंद्र नारंग अंजू नारंग मोहित नारंग कमला कॉलोनी बीकानेर से सुभाष खत्री तरुण खत्री वर्षा खत्री और जॉय खत्री पटेल नगर मलौट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया गीता रानी जाजोरिया गगनदीप जाजोरिया बेबी आरजू और रेलवे कॉलोनी बठिंडा से जगमाल सिंह डागला हैप्पी डागला जेएस नायक और शोभा नायक। आप सब सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म स्वयंवर का ये गीत।

इस गीत को सुनना चाहते थे फाजिल्का पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल, टिवांशी, शालिनी, आरबी खेड़ा, लाडी, जीवन सिंह और खेड़ा परिवार। आदर्श नगर मलौट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार के मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पला, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। और लालगढ़ बीकानेर से असगर अली पंजाबगीर, अनवर अली पंजाबगीर, मुमताज, सोनू, टीना, वहीदा, सहीदा, जाहिरा, एम ए पवार, खातून बेगम और जोया। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं अगला गीत। सुनना चाहते हैं मोहम्मद सरबाज से डूंगरगढ़ से मोहम्मद असगर पवार, मोहम्मद अकबर पवार, राबिया, मुनी, बरकत, हाजन, गुलजार, अजीज और अस्कर। इसी गीत को सुनना चाहते हैं बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक, चेतन, दीक्षा और परी। ये पत्र आया है बहुत दूर से, थोड़ा साफ नहीं लिखा है। सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े, आकाश कुमार, प्रदीप अंचरवाड़कर और आसिफ पेंटर। आप सब सुनना चाहते हैं फिल्म शोर का ये गीत, स्वर लता मंगेशकर और मुकेश का है।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को आपने सुना, फिल्म का नाम था भीगी पलकें। इस गीत को सुनना चाहते थे इंदिरा विहार रायगढ़ से अकरम नूरजहां, डब्ल्यू नूरजहां, सईद नूरजहां, वसीम नूरजहां, वलीउल्लाह नूरजहां, बुलंदशहर से बदरू वली अंसारी, फर्जू वली अंसारी, फर्जी वली अंसारी, लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत अदिम्बा कौर, कस्बा बराड़ जिला अम्बाला से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, ज्योति आकृति और जय राहुल, चौटाला रोड डब्वाली से अंग्रेज सग्गू, सुखविंद्र कौर, रॉबिन और डिम्पल। प्रोग्राम में आइए सुनते हैं अगला गीत। इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं गुरु नानक नगर मलौट पंजाब से राजीव सेतिया, रजनी सेतिया, आरती सेतिया, तनिष सेतिया, ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र चंसालिया, आदर्श सार्थक, अलौक

एक और आराध्य सागर रेडियो श्रोता संघ शिवाजी नगर वडाली देशमुख से राजेश खोबरखेड़े शिवसागर खोबरखेड़े सभा के कांक्षिणी इंदिराबाई खोबरखेड़े सुनैना खोबरखेड़े खांडवी जलगांव जामोद से रामधाड़े दीपाली धाड़े स्वराज धाड़े शिलौरी अमरावती से सुनाईना पवन भांडे।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म गोरा और काला का ये गीत स्वर, मुकेश और लता मंगेशकर का था। इस गीत को सुनना चाहते थे ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रयांश और गुड़िया ठाकुर। बाबा कोटी उफरापाटन से प्रेम साहू और यमुना साहू। हनुमानगढ़ टाउन से रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खां और इरफान खां। महेश नगर औरंगाबाद से रमेश देशपांडे, नीलिमा देशपांडे। कोटगेट बीकानेर से शंकर पटवा, सरोज पटवा, रुचि, गौरव और शानू पटवा। बीकानेर से राजेंद्र कुमार पांडे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, ये बहुत ही खूबसूरत चित्रकारी करके ये पत्र भेजा है प्रियदर्शनी आकाशवाणी श्रोता संघ

बहादुरपुर रथ चौक जिला जलगांव से सुनना चाहते हैं संतोष कुमार सोनार, नरेंद्र दंडगवाल, रविंद्र सोनार, सन्नी मुन्ना और बंडू दादा। भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा। आदर्श नगर बठिंडा से अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, नीति, पवनीत, विक्रमजीत ग्रोवर। और असलतपुरा मुरादाबाद से मोहम्मद फरीद अंसारी, मोहम्मद बिलाल अंसारी और मोहम्मद जुबैर अंसारी। आप सब सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया फिल्म शर्मिली का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे एसपी बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत। सुनना चाहते थे फिल्म हम आपके हैं कौन के इस गीत को गांव दौलतपुरा श्री गंगानगर से शिवलाल बेनीवाल, शांति बेनीवाल, मंजू, मोहित और हेमंत, सुरणामाला बीकानेर से नरेंद्र सुराणा, कांतिलाल सुराणा, शरद सुराणा, मयंक सुराणा, विमल अभाणी, लालेंद्र, होलेंद्र आचार्य और रोशन ले मिस्त्री, डूंगरगढ़ से अशोक शर्मा, ललित शर्मा, कौशल्या, अमित शर्मा, रतनगढ़ से पूनम शर्मा, अमित शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा। इसी गीत को सुनना चाहते थे अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, गव्या और जयपाल यादव। सेक्टर

67 मोहाली चंडीगढ़ से इस गीत को सुनना चाहते थे टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मलित्रा, प्रतीक नवनीत, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज, करनाल से जग्गी दुआ और शीतला गेट बीकानेर से मोहम्मद सफी खींची, मोहम्मद शरीफ खींची, सुजैन खींची, मोहम्मद आजम खींची, अकमल हुसैन बिहानी और अमजद अली खींची। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गीत। सुनना चाहते हैं डबवाली हरियाणा से जेके बाकोलिया, सुनीता बाकोलिया, संजय, अनिल, मीनू बाकोलिया, कपड़ा बाजार डबवाली से विजय बंसल, उषा बंसल, दीपू और मोहित बंसल, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोत, निखिल कांगड़ा, अंकित कांगड़ा, साहिल कांगड़ा, अलीका डबवाली से बसंत सिंह चंद, राजकुमार, सुनीता, कुलदीप गांधी, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, रिंगनी से दिनेश वर्मा और दतरंगी से भागवत वर्मा। आप सब सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म बेताब का ये गीत, आवाज़ें लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की हैं।

अभी आपने सुना मुकेश की आवाज़ में ये गीत। सुनना चाहते थे गांव फरासी से राजकुमार डोडी, सरजीत सिंह डोडी, प्रमोद कुमार डोडी, हांसी से राजू मिगलानी, बबीता सुभाष, योगी बब्बू और डब्बू, कासम कॉलोनी सनावत मध्य प्रदेश से यूनुस खत्री, शफी खत्री, इदरीस खत्री, नूर मीना, इरफान मीना और कासिफ मीना, बीकानेर से अलसी सहजादा, कमला देवी पवार, राजकुमार पवार, गीता रानी, मयंक, सत्यनारायण, लालचंद और अनन्या, शाहदुल शहर से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान, हनुमानगढ़ टाउन से सुल्तान सिंह तरड़, कृष्णा, मुकेश, रामचंद्र, कपिल देव, कांता चौधरी, बैरवाला खुर्द से बलवंत जाखड़, ममता, प्रिया, नईमा और हिमानी जाखड़। प्रोग्राम के आखिर में सुनते हैं आइए अगला गीत। सुनना चाहते हैं बीकानेर से डॉक्टर अशोक कुमार शाही, संतोष शाही, राजश्री और गौरव शाही। इसी गीत को सुनना चाहते हैं ब्रह्मपुरी चौक बीकानेर से जीपी दवे, सुरेश दवे, गोपाल दवे, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, प्रमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित, कोटवा नारायणपुर से बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित कुमार और हैप्पी राय, दुविहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय, अजीत नगर मलौट पंजाब से छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत सिंह, सी एस बेगाना, मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना से विनोद पुरी, वी पी रंजू, अशोक, सुशील, नीलम, बी के पुरी, कैलाश, रमा और आर एस पुरी, और पवनपुरी बीकानेर से भंवर लाल सोनगरा, गीतारिणी सोनगरा, मनोहर लाल सोनगरा और पूरा सोनगरा परिवार, बसंत जी हजारे, इचलक करंजी कोल्हापुर से, राइटिंग साफ नहीं, बहुत साफ साफ लिखे हैं भाई साहब, ये है मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, भाई साहब साफ साफ लिखा करें ताकि पढ़ने में आसानी हो, गांव भड़भोजी जिला आगरा मध्य प्रदेश से रघुनाथ मालवीय, रीना मालवीय, सुषमा, दुर्गा, परी, सुभाष कपूर और सुषमा कपूर, मधुबाला, मिलन और ओम प्रकाश, दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा, कासिम अली, नदीम अली, जुनेद अब्बासी और गांव गोविंदगढ़ माजीवाला श्री करणपुर से राजू टुटेजा, खुशदिल, उर्मिला, गुड्डू, जिन्नू, मन्नू, आदित्य, गुरजिंद्र, अमृत बड़वाल, मंगल और इस्माइल टुटेजा, और बीकानेर से अनिल कुमार, लता बोहरा, विशाल बोहरा, सरस रौनक, विशाल भंडारा और विष्णु कुमार। आप सब सुनिए अपनी पसंद पर प्रोग्राम का आखिरी गीत। फिल्म का नाम है रामपुर का लक्ष्मण, आवाज़ें की

0: किशोर कुमार और लता मंगेशकर की हैं।
1: क्या कहा?

0: देखो
1: आगे।
0: सोचा है एक दिन।
2: इस गीत के साथ ही आपके पसंद प्रोग्राम समाप्त हुआ। आज ये कार्यक्रम आपकी सेवा में आर के सुतार ने पेश किया। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय रात्रि के 11 बजने को हैं। अब समाचार होंगे। समाचार पहले हिंदी में तत्पश्चात अंग्रेजी में होंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है।
4: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या डीएम द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय के बाद जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
5: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एनओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
3: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि एथेनॉल कृषि क्षेत्र के लिए बड़ा अवसर है, बशर्ते इसकी नीति किसान केंद्र

0: हो और फसल का उचित मूल्य सीधे किसानों तक पहुंचे। नई दिल्ली में आज अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में श्री चौहान ने किसान नेताओं के सुझाव सुने और भरोसा दिलाया कि सरकार इथेनॉल से जुड़े उनके सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा है। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार करने के लिए कई निर्देश भी जारी किए। भारत 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। भारत ने भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए एक एकीकृत खुफिया आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित किया है। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने पुरुष डबल्स प्री क्वार्टर में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Reshma Tiwari. The Parliament has passed the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it today. Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Home, Nityanand Rai, moved the bill in the upper house, which aims to amend the Registration of Births and Deaths Act 1969. Following the passage of the bill, the Rajya Sabha was adjourned for the day. The Lok Sabha has passed the Appropriation No. 3 Bill 2026 today. Following the passage of the bill, the lower house was also adjourned for the day. Earlier, Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026. The lower house witnessed repeated disruptions by opposition members over several issues, including alleged police action against students during the protest over the NEET paper leak issue. The Supreme Court today directed the Reserve Bank of India to prepare and circulate a Standard Operating Procedure, SOP, for dealing with mule accounts and bank accounts linked to cyber fraud. The court also issued a series of directions to states, union territories, law enforcement agencies and banks to strengthen grievance redressal, speed up the restoration of defrauded money and improve the handling of digital fraud cases. India has brought back 274 fugitive criminals from 36 countries between 2019 and 2026. The Ministry of Home Affairs said that to strengthen action against fugitives, the government enacted the Fugitive Economic Offenders Act in 2018. It added that India has developed an integrated intelligence-led and technology-driven model to combat fugitive criminals. India has condemned the attack on the Indian-flagged commercial vessel that sank in the Red Sea off the coast of Yemen today. In a statement, Ministry of External Affairs said, all 13 Indian nationals have been rescued. It said the Indian embassy in Riyadh is closely monitoring the situation and proactively coordinating with the Yemeni authorities for the safety and security of the crew. The ministry thanked the Yemeni authorities for their support. It said the continuing incidents of attacks on commercial shipping in the region are deeply worrisome. An Air India flight AI-2379, operating from Phuket to Delhi today, experienced a brief in-flight turbulence related event during cruise, resulting in a momentary change in altitude. The aircraft landed safely in Delhi and all passengers and crew have safely disembarked. The aircraft was carrying 137 passengers and 8 crew members. Air India said that of these, 13 passengers and 4 crew members sustained injuries and were taken to hospital for medical evaluation. It also confirmed that there have been no serious injuries as of now.